मेरे वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 31वीं तिथि तदनुसार 22 सितंबर सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृह मंत्री अमित शाह आज

0: नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस देशगान से।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अब लीजिए प्रस्तुत है हनुमान अष्टक, पंडित जसराज, सुरेश वाडकर और रविंद्र साठे के स्वरों में।

वीणा सहस्त्रबुद्धि के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: लता मंगेशकर के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। इसमें जाने श्री सुभाष चंद्र अरोरा के विचार।
1: भारतीय जननायक राम की गाथा देश के कोने कोने में हर वर्ष होने वाली रामलीलाओं में दोहराई जाती है। समाज की पथ प्रदर्शक इस गाथा से दर्शक अपने अपने अनुकूल आदर्श सबक लेते हैं। मानव हृदय पर इसका परोक्ष व अपरोक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। आओ हम सब इस विषय पर जरा सूक्ष्मता से विचार करें। सीता हरण उपरांत राम की मानसिक स्थिति की कल्पना मात्र से हम सब दुखों से भर जाते हैं। ऐसे में राम स्वयं को सब्र से संभाले संभाले लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में जुट जाते हैं। जंगल में संसाधन विहीन वनवासी राम धैर्य और विवेक से वानर सेना का सहयोग अर्जित कर समुद्र बांध लंकेश रावण को युद्ध में परास्त कर अपनी पत्नी सीता को वापस लाते हैं। हर वर्ष विजयदशमी के दिन बुराई के पर्याय रावण का विशाल पुतला फूंका जाता है। हम अच्छाई रूपी राम की विजय का पर्व मनाते हैं। राम गाथा जीवन में सब्र से कामयाबी की अद्भुत मिसाल है। धैर्य विवेक और संकट का गंभीरता से सामना करने की सीख हर रामलीला दर्शक को सहज ही मिल जाती है। सितारों को सब्र सिखाने वाली स्वाति नक्षत्र की नारद गाथा भी भारतीय मानस में रची बसी है। स्वाति नक्षत्र दौरान आकाश की आभा निहारते बनती है। नारद सभी सितारों को समझाते हैं संसार में उसी की ख्याति होती है जिसमें धैर्य होता है। सब्र और निरंतर प्रयास सफलता का मार्ग बताने वाली ऐसी ही एक कहानी किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर शायद सबने बचपन में अवश्य पढ़ी होगी। किंग ब्रूस बार बार की अपनी शिकस्त से निराश होकर जब गुफा में जाकर छिपता है तो गुफा में उसे एक स्पाइडर अथवा मकड़ी दिखाई देती है जो बार बार गिरते और हर बार उठकर अपने काम को पूरा करने में जुटते और अंत में कामयाब होते दिखाई देती है। और इस कामयाबी से प्रेरित होकर किंग ब्रूस अपनी नए सिर से तैयारी करता है और पुनः युद्ध के लिए अपना प्रयास करता है और अपना राज्य पाने में कामयाब होता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। दरअसल जीवन में आकांक्षाओं व प्राप्ति के बीच की खाई को सब्र से पाटने वाला ही सुखी रह सकता है। कुछ न कर पाने अथवा धीरे धीरे आगे बढ़ने की स्थिति में सब्र अवलंब का काम करता है। अवरोधों का निराकरण मनुष्य को सब्र से काम लेना सिखाता है। उतावले को सब्र विलोमानुपाती प्रतीत होता है, परंतु हकीकत में ठीक इसके उल्ट सब्र उतावले जुझारूपन को संयमित कर अनर्थ होने से रोकता है और सही कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार सब्र सफलता की संभावनाओं में वृद्धि कारक सिद्ध होता है। अपात्र मन वांछित लक्ष्य अर्जित करने के लिए तरह तरह के प्रपंच और छल कपट का मार्ग अपनाता है। वह स्वार्थ सिद्धि के लिए अनुनय विनय साम दाम दंड भेद आजमाने से भी बाज नहीं आता। बहुत हाथ पैर मारकर थोड़ा बहुत पा जाने पर भी वह अपनी उपादेयता सिद्ध करने में असफल ही रहता है। वहीं सुपात्र जो अपने सहज कर्म और धैर्य से बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को अर्जित कर लेता है। धैर्यवान विवेकी को हमेशा सब्र का मीठा फल नसीब होता है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। विषय था सब्र का फल। इस पर आपने जाने श्री सुभाष चंद्र अरोरा के विचार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण, इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हरवेंद्र सिंह।
1: खेतों में फसल के साथ साथ अपने आप उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं तथा ये बोईगी फसल के साथ काफी स्पर्धा करते हैं और उनकी जल के साथ साथ खाद आदि का शोषण करते हैं और ये काफी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और विशेष रूप से खरीफ फसलों में खरपतवारों के लिए उचित माध्यम होता है और अधिक बर्बाद कर लेते हैं। इसमें कई कारण हो सकते हैं, या तो फसल का समय से न बोया जाना, या कर्षण क्रियाएं शस्य क्रियाएं तरीके से नहीं होना, और इसके साथ ही खरपतवारों द्वारा काफ़ी फसलों के उत्पादन में काफ़ी मात्रा में क्षति पहुंचती है। साधारणतः सिंचित अवस्था में खरपतवार एक हेक्टर से कम 30-40 किलोग्राम नाइट्रोजन व 10 से 15 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 से 40 किलोग्राम पोटास अवशोषित कर लेते हैं। मुख्य रूप से जो हमारे क्षेत्र में फसलें इस समय पर लगाई जाती हैं उनमें धान है, तो धान में 50-60% नुकसान होता है। मक्का में 20-30% पैदावार में नुकसान की संभावना रहती है। ऐसे ही बाजरा, मूंग, उर्द, इन सभी में 15-20% का नुकसान इनकी उत्पादन पर पड़ता है। किसान भाई धान की फसल को दो प्रकार से बुवाई करते हैं, एक तो सीधी बुवाई करते हैं तथा एक रोपित धान जिनकी रोपाई करते हैं। तो जो सीधी बुवाई करते हैं उनमें काफी हद तक खरपतवारों से नुकसान होता है, और जो रोपित धान होते हैं उसमें खरपतवारों के नुकसान की संभावना कम रहती है। तो इस प्रकार जब रोपित धान है, अगर उनमें हम समय पर पानी भरे रखें और थोड़ा बहुत खरपतवार होने पर निराई तो नहीं कर सकते, वो घास को उखाड़ करके उसका उपचार कर सकते हैं और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्यूटा क्लोर एक दवा आती है, इसकी मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर बुवाई के 7 दिन के भीतर या रोपाई के 7 दिन के भीतर छिड़काव करने से मुख्यतः घास कुल के खरपतवारों से छुटकारा पाया जा सकता है। तथा धान में रासायनिक नियंत्रण के लिए ब्यूटा क्लोर मचेटी, जो दानेदार व तरल रूप में मिलता है, ब्यूटा क्लोर मचेटी 50 cc की 5 किलोग्राम मात्रा 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, अथवा 10% दानेदार मचरी की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर सीधे बुवाई की गई धान की बोनी के तुरंत बाद अंकुरण या रोपा लगाने के तुरंत बाद खेत में बिखेर दें, तो इस प्रकार से धान में घास और खरपतवारों से नियंत्रण पाया जा सकता। वैसे तो खरीफ फसलों में सभी फसलों में निराई का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है और निराई से फसलों का उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ता है, उत्पादन भी बढ़ता है, साथ ही खरपतवार तो नष्ट होते ही हैं। निराई न संभव हो तो इसमें पैरासूट एक दवा आती है जिसे इमेजाथापर भी कहते हैं, 100 ग्राम दवा प्रति हेक्टर 700 लीटर पानी में बुवाई के 20-25 दिन बाद 1 हेक्टर के लिए छिड़काव करें, तो इसे खरपतवारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अथवा बासालीन आती है जो 2 किलोग्राम दवा ये बुवाई से पूर्व 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त होती है। इसके अलावा पेंडी मिथिलीन दवा होती है जो बुवाई के तुरंत बाद एवं अंकुरण से पूर्व इस दवा को लगाना चाहिए, जो 1.5 किलो दवा प्रति हेक्टर के हिसाब से पर्याप्त रहती है। बाजरा की फसल में निराई 20-25 दिन बाद करनी ही चाहिए, अगर समय मिलता है तो इस देसी हल चलाकर इसकी गुर्र करने से, गुर्र को क्रप भी कहते हैं, तो गुर्र करने से भी काफी हद तक खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है, साथ ही बाजरा की उत्पादन पर भी काफी असर आता है। और इसमें एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं जिसके लिए 2,4-D 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से बोनी के 20-25 दिन बाद करें, छिड़काव करने से इसके रोकथाम की जा सकती है। उर्द, तिल, मूंग, ये जो इनके पौधे 6-7 इंच के हों तब एक बार इनके निराई की आवश्यकता होती है, और निराई करने से इसके निरा नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही इसमें फ्लूक्लोरोनिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर के उपयोग से बोनी से पूर्व किया जा सकता है, तथा बोनी के तुरंत बाद एलाक्लोर 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर, जिसे लासु कहते हैं, 2 लीटर, या दाएदार 5% को 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर मात्रा को प्रयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। मूंग में जब पौधा 6 इंच का हो तब 1 निराई करनी चाहिए, और यदि बोनी से पूर्व खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग नहीं किया गया है तो बोनी के तुरंत बाद व अंकुरण से पहले पेंडी मिथिलीन 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टर, और जिसको स्टाम्प भी कहते हैं, 3 लीटर दवा का प्रयोग किया जा सकता। इस प्रकार से छिड़काव से खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है।
0: खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण, इस संबंध में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हरवेंद्र सिंह, और कार्यक्रम था कृषि चर्चा। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: प्लास्टिक पॉलिथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलिथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलिथीन दूर हटाना है।

पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं। रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
4: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार होंगे।
5: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। भारतीय चलचित्र क्षेत्रे नूतनाध्यायस्य प्रारंभस्य सूचकत्वेन राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य सायंकाले एकता नगरे 270 राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारान् प्रदास्यति। 45-99 वर्षे प्रारब्धाः एते पुरस्काराः भारतस्य सर्वोच्च चलचित्र सम्माननानि सन्ति। चलचित्र संबद्धेषु विभिन्नेषु वर्गेषु कलात्मक प्राविधिक नैपुण्यस्य उत्कृष्टतायै एतानि सम्माननानि प्रदीयन्ते। सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य महत्वपूर्ण नीति सम्बद्धोपक्रमस्य अन्तर्गतं प्रथमवारं राष्ट्रीय राजधानीतः बहिः एषः पुरस्कार समारोहः आयोज्यते। एकता नगरे आयोक्ष्यमानः अयं समारोहः देशस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः चलचित्र क्षेत्रस्य प्रतिभाः एकत्र समानीय एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं इति भावनां साकारयिष्यति। राष्ट्रपतिः 24-20-1900 दादासाहेब फाल्के पुरस्कारेण वरिष्ठाभिनेता अनंत नागमपि सम्मानयिष्यति। विदेशमंत्री एस जयशंकरः न्यूयॉर्क नगरे आयोजितेषु विविधेषु द्विपक्षीयोपवेशनेषु स्वीय समकक्षैः सह क्षेत्रीयान् वैश्विकान् च विषयानाधृत्य विचार विनिमयं कृतवान्। श्री जयशंकरः रविवासरे न्यूयॉर्क नगरं प्राप्तवान्। सः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81 सत्रे भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं कुर्वन् अस्ति। सितंबर मासस्य 26 दिनांके असौ संयुक्त राष्ट्र महासभायाः सामान्य चर्चायां विश्वनेतॄन् सम्बोधयिष्यति। तस्य उपवेशनानाम् आरम्भः फ्रांस देशस्य विदेशमन्त्रिणा जीन नोएल बैरो इत्यनेन सह अभवत्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री जयशंकरेण उक्तं यत् नियमितोपवेशनानि दूरभाष संभाषणानि च उभयोः देशयोः विशेष वैश्विक रणनीतिक सहमति संबंधस्य गतिं निरन्तरं स्थापयितुं साहाय्यं कुर्वन्ति। सः उक्तवान् यत् उपवेशनावधौ क्षेत्रीयाः वैश्विकाश्च विषयाः विशेषतः यूक्रेन संबद्धं विषयमाधृत्य विचार विनिमयः जातः। उभौ नेतारौ बहुपक्षीय विषयेषु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि परिष्कारं समेत्य स्वकीये दृष्टेः परस्परं विनिमयं कृतवन्तौ। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार संधिः अस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 20 दिनांके विजयदशमीतः प्रवर्तिष्यते। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना न्यूजीलैंड देशाय भारतस्य 100% निर्यातेभ्यः सर्वेभ्यः वस्तुभ्यः शुल्कमुक्त प्रवेशस्य सौविध्यं प्रदास्यति। श्री गोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना भारतस्य सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः कृषकेभ्यः हस्तशिल्पेभ्यः तथा हस्ततन्तु शिल्पकारेभ्यश्च महत् लाभं भविष्यति तथा आजीविकायाः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। एशिया क्रीडासु भारतस्य क्रीडकैः ह्यः जापान देशस्य आइची नागोया नगरे 6 पदकानि विजितानि, येषु 4 रजतपदकानि, 2 च कांस्यपदके स्तः। पुरुषाणां 10 मीटर मितायाम् एयर राइफल स्पर्धायां हिमांशु ढिल्लो इत्यनेन रजतपदकं विजितं, रुद्रांक्ष पाटिलेन च कांस्यपदकं प्राप्तम्। अस्याः एव प्रतियोगितायाः पुरुषाणां दलस्पर्धायामपि भारतेन रजतपदकं प्राप्तम्। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इत्यस्यां प्रतिस्पर्धायां सुचिका तारियाल इत्यनया 60 किलोग्राममिते वर्गे कांस्य पदकं विजित्य अस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे पदकं विजेतृषु भारतीय क्रीडिकासु प्रथमा जाता। इति वार्ताः।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुरूप में यह पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
7: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
6: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में 2026 से 2029 के दौरान स्वापक नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। प्रमुख उद्योग सूचकांक ICI में इस वर्ष अगस्त में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई में ये 5% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। इसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इनमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 34 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें 14 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिला प्रशासन में भी बदलाव किया गया है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक के मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत ने एशियाई खेलों में अब तक 4 रजत और 2 कांस्य पदक समेत कुल 6 पदक जीते हैं। इससे पहले भारत ने कल निशानेबाजी में 3 पदक जीते, जबकि सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
8: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है
4: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रातः 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं जहान सिंह कुशवाहा के गाए कुछ लोकगीत। खबरों और नगमों का कार्यक्रम होता है गुड मॉर्निंग ग्वालियर, जिसका समय होता है प्रातः 9:00। प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं सोनल शिवकुमार का गायन राग होगा जौनपुरी। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का आनंद ले सकते हैं। प्रातः 10:05 पर कार्यक्रम होगा व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोता मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11:00 से प्रसारण होता है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 11:00 आप सुन सकते हैं बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम। दोपहर 12:00 फिल्म संगीत का आनंद लीजिए। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम होगा संग्रहालय से। दोपहर 1:00 महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा इंदौर की प्रस्तुति। लोक संगीत कार्यक्रम होगा आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति दोपहर 1:30 पर। दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2:00 और दोपहर 2:30।

अब जान लिया हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को। शाम 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जो कि आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 5:33 पर, 6:30 पर, 8:15 पर। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकता है 6:00। शाम 7:20 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप भंवर सिंह अहिरवार और करण सिंह जाटव के गाए कुछ लोकगीत सुन सकते हैं। उर्दू कार्यक्रम कहकशां सुना जा सकता है 9:30 पर। रात्रि 10:30 का समय होगा कार्यक्रम राग रजनी का।

ये तो था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 7:10 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रदेश में कल से बारिश तेज होने की संभावना, 17 जिलों में भारी बारिश का अनुमान और भोपाल के रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति आज शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है। इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है और उनके विचारों, राष्ट्रवाद तथा सुशासन के मॉडल को अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी प्रतिष्ठान परिसर में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि

0: चौबीस चौबीस दलों को मिलाकर अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं और एक वोट के कारण से भी क्यों न हो। और जो उनका भाषण था कि मैं शुचिता के लिए अगर गलत रास्ते से सत्ता आती तो मैं उसको चीपिए से भी पकड़ना पसंद नहीं करूंगा, ये हमको बताता है कि वो शुचिता की बात न केवल कहते थे बल्कि जीते थे। सच में राजनीति के लिए शुचिता, विचारों में दृढ़ता, व्यवहार में सौम्यता, ये त्रिमूर्ति के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी रहे।
1: इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी सहित जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले फर्जी सिम नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन फास्ट 2.0 के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर फर्जी दस्तावेज, आधार और बायोमेट्रिक के दुरुपयोग से जारी सिम की पहचान कर विभिन्न जिलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ग्वालियर में 9 मामले दर्ज किए गए जिसका करीब 12 करोड़ 20 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड से संबंध सामने आया है। वहीं इंदौर में 151 संदिग्ध सिम 212 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों में पाए गए। वहीं सतना, टीकमगढ़, छतरपुर, कटनी और झाबुआ में भी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के मंत्रालय में हुई बैठक में निर्देश दिए कि 1 नवम्बर को मनाया जाने वाला मध्य प्रदेश स्थापना दिवस इस वर्ष समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की थीम पर कृषि विकास और किसान कल्याण को केंद्र में रखकर मनाया जाए। उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि, प्राकृतिक खेती और कृषि नवाचारों पर प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं तथा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले किसानों, उद्यमियों और युवाओं को सम्मानित किया जाए। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह होगा जबकि जिला मुख्यालयों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय उपलब्धियों और उत्पादों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा एवं समर्पण के 25 वर्षों के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुजरात के वडनगर से शुरू हुई सेवा संकल्प यात्रा का इंदौर जिले के बेटमा में स्वागत किया गया जिसमें 35 युवा बाइक सवार शामिल हैं। वहीं शासकीय ललित कला महाविद्यालय धार में जनभागीदारी अध्यक्ष अतुल कालभवर ने चित्रकला कार्यशाला का शुभारंभ किया। वहीं नीमच के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय CRPF तथा छिंदवाड़ा के विद्या निकेतन हाईस्कूल में विद्यार्थियों के लिए भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं झाबुआ जिले के विकासखंड राणापुर स्थित शासकीय महाविद्यालय में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा BSW और MSW के छात्रों को अभियान की विभिन्न गतिविधियों के प्रति जागरूक किया गया। भोपाल के रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान शहर के करीब 62,500 प्रतिष्ठानों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। इससे पहले 15 सितम्बर को सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। 5 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए थे। अब तक 8,084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए हैं। व्यापारिक संगठनों के विरोध के बाद पिछले 22 दिनों से कार्रवाई रुकी हुई है। आज की सुनवाई में नगर निगम और रहवासी पक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे। प्रदेश में पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत पत्रकार 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में 21 से 70 वर्ष तक की आयु के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे जिसके तहत 4 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अथवा 2 लाख रुपए स्वास्थ्य और 5 लाख रुपए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का विकल्प है। अधिमान्य पत्रकारों की नई पॉलिसी 4 अक्टूबर और गैर अधिमान्य पत्रकारों की पॉलिसी 1 नवम्बर से ही शुरू होगी। पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान या उसके बाद वर्दी में रील, फोटो, वीडियो और ऑडियो क्लिप पोस्ट नहीं कर सकेंगे। सरकारी दस्तावेज, जांच से जुड़ी जानकारी और संवेदनशील मामलों की सामग्री सोशल मीडिया पर साझा करने के साथ ही ऐसी जानकारी को ChatGPT और Gemini AI जैसे टूल्स पर अपलोड करने पर भी रोक रहेगी। पीड़ित, आरोपी और गवाहों से जुड़े फोटो, वीडियो साझा करने के लिए अनुमति जरूरी होगी। सरकार, विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों पर सोशल मीडिया में टिप्पणी तथा निजी प्रचार और व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कल से बारिश का दौर तेज होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसका असर खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों में रहेगा जबकि भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में भी भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कर्नाटक के राज्य

राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत कल आगरमालवा जिले के प्रवास पर रहेंगे, जहां वे नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी के दर्शन करेंगे। पन्ना में जुगल किशोर बाल गणेश समिति द्वारा गणेश प्रतिमा के साथ साथ पंचमुखी हनुमान की अलौकिक प्रतिमा विराजित की गई है। झाबुआ कलेक्टर ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की समीक्षा करते हुए तीर्थयात्रियों को समय पर मेघनगर

पढ़ाने के लिए रैली निकाली जाएगी। अलीराजपुर नगर में तेजादशमी के अवसर पर भगवान रामदेव जी का मेला आयोजित कर डोल यात्रा निकाली गई। शिवपुरी में स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद थीम पर 11वें आयुर्वेद दिवस का जिला स्तरीय आयोजन 23 सितंबर को होगा। डिंडौरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने सागर एवं दमोह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर कटनी मुड़वारा सागर रेलखंड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नीमच जिले के नगर परिषद जीरन में 24 सितंबर को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के चौरा स्थित ग्राम पालादौन में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 23 सितंबर को विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रदेश में कल से बारिश तेज होने की संभावना, 17 जिलों में भारी बारिश का अनुमान और भोपाल के रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

फर्ज फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था और इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने चुना है फिल्म एक महल हो सपनों का से। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि हैं और आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सो योर प्लेस और माइन?
7: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
6: कॉन्डम? लेकिन हम तो
7: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
6: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वरों में भी आप सुन रहे थे फिल्म गंगा जमुना का ये गीत। शकील बदायूनी का लिखा गीत था और संगीत था नौशाद का। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने चुना है फिल्म गंगा की लहरें से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। मसरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है और संगीत है चित्रगुप्त का।

जब जब फूल खिले, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। आनंद बख्शी का लिखा गीत था और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम का अगली प्रस्तुति के रूप में लीजिए सुनिए फिल्म जानवर का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

जीवन मृत्यु। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है और इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ज्वेलथी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत दिया है एसडी परमन ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ परनाखुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
3: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले

0: राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
3: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए PLI योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए PLI योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
4: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के 4 देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित 4 सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल

0: में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
1: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जाँच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
2: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
1: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की है।
3: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
1: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
4: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ो में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत

0: पर मुफ्त सोलर पैनल 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया। 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ। 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य। सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है। हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक। भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Sayura Mujtaba. The headlines. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat this evening. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours, recognising artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The President will also honour the veteran actor Anant Nag with the Dada Saheb Phalke Award for 2024. Our report.
3: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में सुनिए जहान सिंह कुशवाहा के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गणेश वंदना से।

लोक संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी आप जहान सिंह कुशवाहा के गाए कुछ लोकगीत सुन रहे हैं। अब लीजिए, प्रस्तुत है उन्हीं के स्वर में ये निर्गुण भजन।

इस देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में भी आप जहान सिंह कुशवाहा के गाए कुछ लोक गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 9 बजने को हैं। आप लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

खबरों और नगमों का ये कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र हिला आपके साथ। श्रोता मित्रों, आज है टोल ग्यारस। गणेश चतुर्थी से चल रहे भक्ति के ज्वार का ये पर्व अब समापन की ओर चल रहा है। आज 22 सितंबर यानी मंगलवार को डोल ग्यारस है। इस दिन से भगवान गणपति की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला आरंभ होगा, जो कि अब अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। हालांकि कई लोगों ने बप्पा की विदाई शुरू कर दी है। कल भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने गाजे बाजे के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू कर दिया है। इस डोल ग्यारस के मौके पर कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु एक क्षण के लिए जागकर करवट लेते हैं और फिर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवसर पर शोभा यात्राएं भी निकाली जाएंगी और विष्णु मंदिरों पर खास साज सज्जा भी की जाएगी। इसी तरह गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जगह जगह शहर में कुछ इंतजाम किए गए हैं। जैसे सागर ताल के समीप बनाए गए हैं कुछ अस्थायी कुंड, लघु जलाशय, और इसके अलावा गोताखोर, लाइफ जैकेट और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी जगह जगह पर की जाएगी। बहरहाल एक छोटी सी सलाह मैं आपको पर्सनली देना चाहूँगी कि इस मौके पर हो सके तो किसी साफ पवित्र बर्तन में भी आप साफ जल में घर पर ही गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं। बहरहाल चलिए, मौका जब है इस खास बात का तो क्यों न गुनगुना लिया जाए एक प्यारा सा भजन।

0: श्रोता मित्रों, आज V.S. श्रीनिवास शास्त्री जी की जयंती है। एक उदार भारतीय राजनेता और संस्थापक थे श्रीनिवास शास्त्री, इंडियन लिबरल फेडरेशन के सदस्य, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत देश और विदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपनी सेवाएं देश को दी। शास्त्री जी का जन्म आज ही के दिन यानी 22 सितंबर 1869 में चेन्नई में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक स्कूल शिक्षक के रूप में की, लेकिन सार्वजनिक कार्यों में उनकी रुचि और वाक्पटुता ने उन्हें जल्दी ही राष्ट्रीय ख्याति दिला दी। 1907 में वे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के राजनीतिक और सुधारवादी आंदोलनों में शामिल हुए, जिसके वे 1915 में अध्यक्ष बने। वे मद्रास विधान परिषद के सदस्य थे और 1916 में केंद्रीय विधानमंडल के लिए चुने गए। सरकार ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा भेजा ताकि उन देशों में रहने वाले भारतीयों की स्थिति में सुधार किया जा सके। 1926 में उन्हें इसी उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका भेजा गया और 1927 में उन्हें वहां भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। 2 वर्ष बाद उन्हें भारत में श्रम संबंधी शाही आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। भारतीय सरकार ने उन्हें मलाया संघ, ऐतिहासिक राज्य जो कि मलेशिया है, में भारतीय श्रमिकों की स्थिति पर रिपोर्ट देने का कार्य भी सौंपा। 1930-31 के दौरान उन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधारों में प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1935 से 1940 तक उन्होंने मद्रास में अन्नामलाई विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। 17 अप्रैल 1946 में मद्रास में उनकी मृत्यु हुई।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
0: और अब नजर डालते हैं कार्यक्रम की अगली खबर पे। चंबल में डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे दुर्लभ जलीय जीवों की शांति न टूटे, इसीलिए आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर मुरैना में खास 6-लेन साइलेंस केबल ब्रिज बनेगा। 1600 मीटर लंबे इस स्ट्रक्चर की खासियत ये होगी कि नदी के बहते पानी में एक भी पिलर नहीं बनाया जाएगा, पुल किनारों पर बने खम्भों और केबल के सहारे टिका रहेगा। वाहनों का शोर और हेडलाइट की तेज रोशनी नदी तक पहुंचने से रोकने के लिए दोनों ओर विशेष नाइस बैरियर लगाए जाएंगे। चंबल पर कोटा में 6-लेन केबल ब्रिज पहले से है, लेकिन वो राजस्थान की सीमा में है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा में यह अपनी तरह का पहला साइलेंट केबल ब्रिज होगा। है ना अच्छी खबर? और अब एक और अच्छी खबर। ग्वालियर झांसी रेलखंड पर रेल यात्रा अब और अधिक सुरक्षित हो गई है। झांसी मंडल ने 97.1 किलोमीटर लंबे सेक्शन में स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली मानक कवच की कमीशनिंग पूरी कर ली है। लोको पायलट की मानवीय चूक के समय यह प्रणाली ट्रेनों को हादसे से बचाएगी। ग्वालियर और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन को छोड़कर पूरे सेक्शन में यह सिस्टम सक्रिय रहेगा। झांसी मंडल की यह दूसरी मानक कवच कमीशनिंग है। रेलवे अफसरों और तकनीकी टीम के समन्वित प्रयास से इसे तय सुरक्षा मानकों पर पूरा किया गया है। सिस्टम में लगने से इस रूट पर ट्रेन परिचालन की सुरक्षा और विश्वसनीयता में बड़ा इजाफा होगा। कवच प्रणाली से ट्रेन संचालन में विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसकी सफलता ट्रैक पर लगे उपकरणों, ट्रेन के इनबिल्ट सिस्टम और परिचालन की परिस्थितियों की सही तालमेल पर निर्भर करेगी। साथ ही अब यात्रियों का सफर और भी सुरक्षित हो जाएगा। इस खास बात के बाद क्यों ना गुनगुना लिया जाए एक और गीत।

खबरों और नगमों का ये कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर, सुनने के लिए आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ग्वालियर को। और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो मित्रेला आपके साथ। श्रोता मित्रों, यदि आपने जलकर नहीं भरा है तो अब ध्यान रखिए इस बात का, जल्दी से जल्दी भर दीजिए। जलकर जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों के कनेक्शन अब काटे जाएंगे। नगर निगम ने 5,000 से 25,000 रुपये और 25,000 रुपये से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं को वार्डवार सूची तैयार कर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया है। सूची के आधार पर बकाया वसूलने के लिए टीमें क्षेत्र में जाएंगी और भुगतान नहीं करने वालों पर कनेक्शन काटने की कार्यवाही होगी। नेशनल लोक अदालत में जलकर वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं होने के बाद निगम ने इस अभियान को अब तेज कर दिया है। किस क्षेत्र में कितना जल कर वसूला गया है और कितना बकाया है, इसकी जानकारी अब अधिकारियों को देनी होगी। निगम ने बिना अनुमति पानी का इस्तेमाल करने वालों को भी निशाने पर लिया है। ऐसे कनेक्शनों की जांच कर उन्हें हटाया जाएगा। संबंधित उपभोक्ताओं को वैध कनेक्शन लेने के लिए भी कहा जाएगा। इसके साथ ही जिन इलाकों में अवैध कनेक्शन ज़्यादा हैं वहाँ नए वैध कनेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। और अब खबर है MPPSC में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी अब अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकेंगे। आयोग नवंबर 2026 से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 से 2024 तक की उत्तर पुस्तिकाएं अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी अपने लिखे जवाब, प्रत्येक प्रश्न पर मिले अंक और मूल्यांकन की स्थिति को अब स्क्रीन पर देख सकेंगे। आयोग ने ये व्यवस्था मूल्यांकन को लेकर लगातार उठते सवालों और न्यायालय में पहुँच रहे मामलों को देख कर शुरू की है। अब तक परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के सामने ये स्पष्ट नहीं होता था कि किस उत्तर पर उन्हें कितने अंक मिले हैं और किस प्रश्न में अपेक्षित अंक नहीं मिले हैं। उत्तर पुस्तिका देखने की सुविधा शुरू होने के बाद वे अपने उत्तर और मिले हुए अंकों का मिलान कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिका देखने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद आयोग उपलब्ध तारीख और समय के अनुसार अभ्यर्थियों को स्लॉट उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थी उपलब्ध स्लॉट में अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकेंगे। आवेदन शुल्क और अन्य नियमों की विस्तृत जानकारी भी आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। अभ्यर्थी एक से लेकर सभी 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएँ देखने के लिए अपना विकल्प चुन सकेंगे। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार उत्तर पुस्तिका की प्रति कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, यानी अभ्यर्थी अपनी पूरी कॉपी डिजिटल माध्यम से देख सकेंगे। इससे उन्हें अपनी तैयारी और उत्तर लेखन की कमियों का भी आकलन करने में मदद मिलेगी। आयोग का मानना है कि इससे मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मूल्यांकन संबंधी शिकायतों में भी कमी आएगी। तो है ना MPPSC देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर।

इसके साथ ही अब घड़ी का इशारा है कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। तो अब हम समेटते हैं अपने इस कार्यक्रम को, कल फिर नई खबरों और नगमों को लेकर हाजिर होंगे आपके अपने इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए सोनल शिवकुमार का गायन राग जौनपुरी।

0: इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में अभी आप सोनल शिवकुमार के गाय का गायन सुन रहे थे, राग था जौनपुरी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 10 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पाराशर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मालवा अंचल के शाजापुर जिले में इन दिनों धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जनकल्याण से जुड़ी गतिविधियां लगातार हो रही हैं। गणेशोत्सव के चलते नगरों से लेकर गांवों तक उत्साह और श्रद्धा का वातावरण है। वहीं सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जन भागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीते दिनों हिंदी दिवस के अवसर पर शाजापुर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हिंदी पखवाड़े का समापन हुआ। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदी के प्रचार प्रसार और शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता तथा डिजिटल माध्यमों में इसके बढ़ते उपयोग पर चर्चा की गई। पखवाड़े के दौरान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की गईं। इसी क्रम में जिले में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत बीते दिनों आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के साथ हुई। 17 सितंबर को शाजापुर स्थित मां राज राजेश्वरी मंदिर सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर दीप प्रज्वलित किए गए। धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों के साथ हितग्राही परिवारों के घरों में भी दीपक जलाए गए। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में सेवा और जनभागीदारी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के दौरान स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रम भी हुए। शाजापुर जिला चिकित्सालय और शुजालपुर सिविल अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविरों में कुल 158 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिनमें शाजापुर में 51 और शुजालपुर में 107 यूनिट रक्तदान हुआ। जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी 21 से 27 सितंबर तक रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर अभियान के तहत जिले में एक पहल की गई, जिसके तहत लोक निर्माण विभाग ने टुकराना जोड़ पर मियावाकी पद्धति से 2,850 पौधे लगाए। इससे पहले लालघाटी क्षेत्र में 800 पौधे लगाए जा चुके हैं। दोनों स्थानों पर अब तक 3,650 पौधे रोपे गए हैं। यहां विभिन्न प्रजातियों के 72 प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शाजापुर जिले में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा मंदिर प्रकल्प शुरू किया गया है, जिसके तहत जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले में 8 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं और मेरिट के आधार पर 1,751 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इस पहल से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्थानीय स्तर पर अवसर मिलेंगे। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, जिसके तहत महिला स्वसहायता समूहों से जुड़ी युवतियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए शाजापुर में जिला स्तरीय नमो युवा शक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। संगम सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र किला परिसर में हुए इस कार्यक्रम में जिले के चारों विकास खंडों से समूह की सदस्य महिलाओं और उनके परिवारों की युवतियों ने भाग लिया। कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, कुर्सी दौड़ और चम्मच दौड़ सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वहीं स्वास्थ्य और भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूकता के लिए विश्व आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयुर्वेदिक औषधियों और औषधीय पौधों के महत्व की जानकारी भी इस कार्यक्रम में दी गई। वहीं चित्रकला, निबंध और रंगोली प्रतियोगिताओं के साथ निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 262 मरीजों को औषधियां वितरित की गई। वहीं अगर जिले में जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों की बात की जाए तो शुजालपुर के ग्राम जामनेर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का शिविर बीते दिनों आयोजित किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों से प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, पेंशन और नल कनेक्शन तथा नामांतरण सहित विभिन्न योजनाओं और सेवाओं से जुड़े आवेदन प्राप्त किए गए और संबंधित अधिकारियों को इसके निराकरण के निर्देश दिए गए। यातायात और सड़क सुरक्षा को लेकर भी बीते दिनों जांच अभियान जिले में चलाया गया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने स्कूली यात्री तथा अन्य वाहनों की जांच की। परमिट, फिटनेस बीमा, पीयूसी और सुरक्षा उपकरणों सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा गया तथा नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। अब बात करते हैं उद्यमिता की। जिले के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में काला पीपल निवासी आयुष अग्रवाल का स्टार्टअप भी उल्लेखनीय है। ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग से शुरुआत कर उन्होंने इवेंट इंडस्ट्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया। उन्हें स्टार्टअप नीति 2025 के पंजीयन के बाद ईईआर और रेंटल सब्सिडी का लाभ भी मिला है। आयुष अन्य युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। वहीं अब जिले में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में भी तैयारी की जा रही है। बीते सोमवार को काले हिरण और नीलगाय के सुरक्षित स्थानांतरण को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिले में अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर आगामी 9 से 31 अक्टूबर तक बौमा पद्धति से स्थानांतरण अभियान प्रस्तावित है। इससे पहले हुए अभियान में जिले के 846 काले हिरण और 67 नीलगाय का सफल स्थानांतरण

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पाराशर का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

धड़क फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अजय गोगवली की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन श्रोता मित्रों ने। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना। बराड़ा जिला अम्बाह से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल और उनके परिवार के सभी सदस्य। करणवीर हाउस बटिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंदर वरिंदर, कुलदीप दमन, अभिजीत और उनके परिवार के सभी सदस्य। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश। मुक्कम पोस्ट कालेगांव जफाराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सरवद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नाविद हसन अब्बासी, सोहेल हसन अब्बासी, अवन यशफ अब्बासी, रसीद वारसी और उनके परिवार के सभी सदस्य। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान। मुसरत जहानाज, तिलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया और नाजिया नूर, सीतामणि बिहार से। पठान टोली कलेर से निगहत प्रवीण, सफद आरजू और सादिया नसनीम। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा और रॉबिन राणा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना और गुरवंश सिंह जोड़ा। पांडरकड़वा से अनिल बुरांडी, उषा बुरांडी, अनुश्री बुरांडी और धनश्री बुरांडी। बल्हार शाह से सूरज, प्राची और एकलव्य। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है हमारे इन श्रोता मित्रों ने। हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरानानाज, नवाज शेख, दानिश शेख और अमन अफरीदी। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। नेत्राम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि कुमार गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज गोड़िया, अर्चना गोड़िया, आध्या श्रेया और दिव्यांशु न्यू बजरंग कॉलोनी, राजा गैस गोदाम, गोल पहाड़िया, लश्कर ग्वालियर से। दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जय

वीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गोलमाल रिटर्न का ये गीत शेखर और स्नेहा पंत की आवाज़ों में।

जावेद अली की आवाज़ में लीजिए सुनिए गजनी फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अमान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद और पीयूष कुमार। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान,

बेबी शौर्या श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान, किमले गांव पुणे से अंकिता कामले, विजय कामले, बेबी शौर्या और उनके परिवार के सभी सदस्य।

जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, करणवीर हाउस भुचे कनेचिया बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, करणदीप करण, दीपेंदर और उनके परिवार के सभी सदस्य, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तनिया नारंग और उनके परिवार के सभी सदस्य, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन और उनके परिवार के सभी सदस्य, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक और उनके परिवार के सभी सदस्य, मारहरा दरवाज़ा एटा से जुबैर अली खान, सबीहा राशिद वारसी और उनके परिवार के सभी सदस्य, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, फातिमा कॉलोनी से नासिर शेख, साजिद शाहिद और नाजिया नासिर, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, सहेली रेडियो श्रोता संघ बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हालिमा डावर, बेबी जकीरा डावर, परदेसीपुरा खंडवा से शेख सईद राही और अनस भाई, सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और उनके परिवार के सभी सदस्य, गांव पांडर कड़वा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: गुड न्यूज, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत दिलजीत दोसांझ और साथियों की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोता मित्रों ने। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, बक्सर बिहार से शफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मादिबा और दानिश अंसारी, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान, चंडीगढ़ से सतीश जनेजा और विमला, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान, गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली और उनके परिवार के सभी सदस्य, इस्मिता रेडियो रिपोर्टिंग ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, रानू अग्रवाल, अंकिता जोशी, गीता श्रीवास, बेबी वैदेही, बेबी हंसिका जोशी और उनके परिवार के सभी सदस्य,

बार शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर तेजस्वी चौहान बेबी शौर्य श्रेयस अंकिता अनिकेत और उनके परिवार के सभी सदस्य।

फुकरे फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोना महापात्रा की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन श्रोता मित्रों ने, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षित रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्री मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन नैना सत्यनारायण, कपिल शोभा और फुंदी बाई बागरी, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस गवर्णकर, निर्मला गवर्णकर और विशाल गवर्णकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायले, राजकुमार खर्चे और आशीष, कस्बा बराड़ा शहर जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, बक्सर बिहार से शफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, बठिंडा पंजाब से करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर और उनके साथी, गंज डुंडराव से शमसुल कमर राहे, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर शुभ वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बोड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप, जमनी

यहाँ ज़िला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्ट्रा, रोजी डिकोस्ट्रा, पर्ल डिकोस्ट्रा और विलिस डिकोस्ट्रा। कालीगांव जफाराबाद मराठावाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, प्रथमेश सर्वत, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से बिट्ठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी और मायरा सुरेशी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश की है पश्चिम सिंहभूमि चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनेरी, प्रकाश वीर राजपूत और अनुप्रिया चंद्रवंशी। खंडवा से राकेश, पिंकी और दुर्गा। जालंधर से मीना कौर और संदीप कौर। जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, कुमकुम मिश्रा और उनके परिवार के सभी सदस्य। कोरिया से डोनट पावो। छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और उनके परिवार के सभी सदस्य। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गरम मसाला का ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म चमेली से। इस गीत को आवाज़ दी है सुनिधि चौहान ने और सुनना चाहा है हमारे इन श्रोता मित्रों ने दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तनहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुगहत जहानाज, शाजिया और नाजिया, पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा और शिवांश वर्मा, मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव और बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव, बुलडाणा बड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिजा फिल्म का ये गीत सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है संदलपुरात्री से कालीचरण यादव, चांदनी यादव, उर्मिला देवी, सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा और उनके परिवार के सभी सदस्य, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, बरेड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, ऋषभ और उनके परिवार के सभी सदस्य, छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वहीद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, पटेल नगर पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: और कर्मचारियों द्वारा श्रमदान किया जाएगा। एशियाई खेलों के ग्रुप ए के मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जापान के नागोया में आज दक्षिण कोरिया को 63-31 से हरा दिया। ये भारत की लगातार दूसरी जीत है। टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर बनी हुई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, रिश्ते पहली बारिश के बाद मिट्टी से उठती उस पहली खुशबू की तरह होते हैं, जो दिखाई नहीं देती मगर मन में कहीं बहुत गहरे उतर जाती है। रिश्तों को जिंदा रखने के लिए बड़े वादों की जरूरत नहीं होती है, बस कुछ छोटे से प्रयासों की आवश्यकता होती है जो संवेदनाओं से जन्म लेते हैं। कभी अचानक आया कोई फोन, बिना किसी अवसर के भेजा गया कोई संदेश, साथ बैठकर पी गई एक चाय, और कभी सिर्फ इतना कि किसी ने हमारी खामोशी पढ़ ली, या कभी आपने बिना कहे ही किसी का मन समझ लिया। रिश्ते इन्हीं से जिंदा रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी की रफ्तार भले ही तेज होती जा रही हो मगर रिश्ते आज भी ठहर कर ही सांस लेते हैं, क्योंकि अपनापन बड़े आयोजनों में नहीं उन छोटी छोटी बातों में छिपा होता है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर भूल जाते हैं। तो आज बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बात उन्हीं छोटी छोटी आत्मीयताओं की जिनसे रिश्ते हरे रहते हैं। किसी से हमारी मुलाकात रोज हो न हो मगर प्यार की खुशबू बनी रहती है। तो बताइए हमें कि आपकी नजर में वो कौन से प्रयास हैं जिनसे रिश्तों में बची रहती है खुशबू, रिश्तों में बनी रहती है नमी। बताइए कि आपके जीवन में वो कौन सी बात है जो किसी रिश्ते को आज भी महका रही है। बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताएं।
1: जी, मैं ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूं। मैम,
0: विपिन जी कैसे हैं?
1: मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, और आपसे बातें हो रही हैं तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: हम भी बहुत खुश हैं कि बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है। क्या कहेंगे आज के विषय पर?
1: मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात तो सही है कि आजकल रिश्तों में थोड़ी सी दूरियाँ होती जा रही हैं। बहुत सारे कारण हैं, देखे

0: कारणों पे अगर बात करें तो काफी लंबा समय लग सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो त्योहार होते हैं, बहुत सारे त्योहार वो क्यों मनाए जाते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। शायद वो इसीलिए होते हैं कि हमारी ये जो दूरियां हैं वो
1: जी नजदीकी में बदलें। बिल्कुल,
0: अगर हम कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में हैं और कोई त्योहार ऐसे आते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गांव जाएं, अपने दोस्त के से मिलें जुलें, घर जाएं, या फिर रिश्तेदारों को भी आमंत्रण देना चाहिए। ऐसा करने से है क्योंकि हमारा मिलना जुलना भी हो जाता है, उसी बहाने त्योहार भी अच्छे से मना सकते हैं।
1: जी, तो विपिन जी आपने तो बात की कि त्योहारों में हम किस तरह से एक दूसरे से मेल मुलाकात कर सकते हैं, इससे आत्मीयता बढ़ती है। मैं ये जानना चाह रही थी कि रोज की जो हमारी जीवनचर्या है उसमें हर इंसान आत्म केंद्रित होता जा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि रिश्तों को निभाने के लिए अधिक समय देना बहुत जरूरी होता है या मन से निकाला थोड़ा समय भी काम कर जाता है?
0: देखिए, मुझे एक अच्छी चीज याद आई, एक रील बहुत वायरल हुई थी कि एक कमरे में चार लोग बैठे हैं और चारों लोग खुश हैं और एक दूसरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि चारों लोग मोबाइल चला रहे हैं।
1: जी,
0: तो ये है आजकल की लाइफ की, मतलब चारों लोग एक कमरे में हैं और चारों लोग खुश भी हैं, हंस रहे हैं चारों लोग, और लेकिन अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। तो पहली बात तो ये भी एक रीजन है, हम हालांकि सभी लोग जानते हैं तो कि थोड़ा सा इसमें भी दूरियां आ रही हैं, क्योंकि लोग एक तो यही कारण होता है कि जरा सा भी अगर मन उदास हुआ या बुरा लगा तो मोबाइल में उठा लिया और लग गए। तो पहले क्या होता था, आप भी जानती हैं, सभी श्रोता भी जानते हैं कि पहले बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे तो सब लोग मिलजुल के बैठा करते थे, बातें करते थे, साथ में खाना पीना होता था, तो वो एक अलग माहौल रहता था। आजकल ये बात सच है कि लोग उदास नहीं हो रहे, अकेलेपन में भी बहुत खुश रह रहे हैं, जो कि शायद अच्छा नहीं है, हानिकारक है, रिश्तों के लिए हानिकारक है, शायद खुद के लिए उतना ना भी हो। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे से मिलना जुलना होना चाहिए, और अगर मिलना जुलना और संवाद अगर चालू रहेगा तो फिर रिश्ते भी उससे सुधरे रहेंगे।
1: आप जिसकी बात कर रहे हैं उसे हम आभासी दुनिया कहते हैं, है ना, जो वास्तविक दुनिया से अलग है। और जाहिर सी बात है कि आभासी दुनिया से मिलने वाला जो भी आपको रस है वो भी आभासी ही होगा, है ना। अंततः आप ये पाते हैं कि जो वास्तविक दुनिया है अगर उससे आप कट जाते हैं तो खुशी
0: और बड़ी
1: उस तरह से नहीं रहती।
0: बहुत खूब कहा है ना कि रिश्ते और दर्पण दोनों नाजुक होते हैं, फर्क इतना है कि दर्पण गलती से टूटता है और रिश्ते गलत फहमियों से।
1: बिल्कुल, तो गलत फहमियां ना पालें और एक दूसरे को अगर हम समय देते हैं तो रिश्ते बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है।
0: और चलते चलते कुछ और कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश का जो प्रसारण है उससे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये रिश्ता ना टूटेगा जन्मों जन्म तक, जुदाई का साया ना आएगा हम तक, कसम से करेंगे मोहब्बत हम ऐसी, किसी ने किसी से ना की होगी जैसी।
1: क्या बात है। तो ये जो स्नेह है, ये जो प्रेम है, इसको बनाकर रखिए, आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया।

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए।
1: जी मैडम, आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव।
0: संतोष कुमार राव जी, कितने दिन के बाद फोन किया है?
1: आपकी बातें और हमारी बातें हुई थी 8 सितंबर को, और अब जाकर के बातें आपकी गीत हमारे प्रोग्राम्स में फिर से एक बार पुनः आपसे बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें।
0: क्या बात है, बीच में आपने फोन नहीं किया है ना?
1: जी नहीं मैम।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि इस अनुशासन का आप पालन कर रहे हैं। तो संतोष जी क्या कहेंगे आज के विषय पर?
1: जी मैडम, जैसे कि हमारे जो आपस में रिश्ते होते हैं, खास करके पुराने जमाने, मतलब जब पहले की हम बात करते हैं, सब संयुक्त परिवार में रहा करते थे, तो एकत्र परिवार में रहने का एक अलग अनुभव रहा करता था। आज हम लोग थोड़ा सा बदलते रिश्तों में परिवेश ले चुके हैं, एकल परिवार से लेकर के अलग अलग परिवार हो चुके हैं, चाचा चाची अलग रहते हैं, तो दादा दादी नाना नानी को अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा सा रिश्तों में एक सामंजस्य बैठाना पड़ता है मैडम।
0: तो आप क्या सोचते हैं कि आज दादा दादी नाना नानी तो घरों में कम है ही, नहीं रहते, अलग कर दिए जाते हैं, इसके अलावा भी जो लोग घर में हैं, जो जिसे हम परिवार कहते हैं, एकल परिवार, उसमें भी जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके बीच एक दूरी नजर आती है, या दोस्तों की हम बात कर लें, दोस्तों में भी वो आत्मीयता अब नहीं है। हम कहते हैं ना कि वैसे दोस्त जो पहले थे उस तरह के दोस्त अब नहीं होते हैं। तो क्या कारण देखते हैं आप, और किस तरह से इसे बनाया जा सकता है, फिर से हरा किया जा सकता है?
1: जी मैडम, खास करके बताएं, जैसे कि अब जिस जनरेशन में हम लोग हैं, सबसे ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग अधिकतम होने के कारण ही ये सारी दूरियां होती है, और व्यक्ति का जो समय रूटीन होता है, खास करके जैसे मॉर्निंग हो गया, सुबह हम लोग साथ में, जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो हम लोग एकत्रित रहा करते थे दोस्तों के साथ में, और वो यादें हमेशा हमारे जीवन में अभी भी यादगार बनी रहती है। लेकिन आज के जमाने में हम लोग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल से ही बात करते हैं, आपस में साथ में बैठते नहीं हैं, तो ये एक दूरियां यहाँ पे देखने को मिलती है, और परिवार के साथ हम लोग टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से भी दूरियां, थोड़ी सी दूरियां होती ही चली
0: जाती
1: हैं।
0: आपने मोबाइल फोन की बात की है, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यही जो मोबाइल फोन है, यही आपको जोड़ सकता है अगर इसका उपयोग आप सही तरीके से करते हैं। तो यही मोबाइल फोन आपके रिश्तों को और गहरा करने का काम भी कर सकता है ना। आप ये बताएं कि कब आपने अपने किसी भी दोस्त को फोन करके बिना वजह बात की हो?
1: जी मैडम, क्या होता है कि हम लोग, मतलब समय होता ही होता है, लेकिन कई बार ऐसे काम हमारे पास आ जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने दोस्तों को और परिवार के लोगों को कॉल नहीं मिला पाते हैं, लेकिन हाँ, हमारे पास संडे का समय जब रहता है तो उस दिन हम लोग जरूर कॉल मिलाते हैं और बातें करते हैं, और किसी भी शुभ अवसर पर इस समय, जैसे कि गणेश उत्सव चल रहे थे, तो हम लोगों ने सबको शुभकामनाएं अपने दोस्तों को दी हैं, अपने परिवार के लोगों से, बड़े बड़े लोगों का भी आशीर्वाद लिया है, तो ऐसे शुभ अवसरों पर हम लोग एक दूसरे से मिलने का प्रयास करते हैं और फोन कॉल्स भी हमें शुभकामनाएं जरूर देते हैं।
0: तो शुभकामनाएं हम देते हैं फोन के माध्यम से, और अगर हम, जैसे कि आपने कहा कि आपने रविवार का दिन तय किया है कि अपने परिजनों से आप बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो एक समय, एक दिन जब तय कर लेते हैं और उस समय हम सभी एकत्रित होते हैं, तो यही जो नेटवर्क है ये एक छोटे से आंगन में तब्दील हो जाता है ना, हम सब ऐसा लगता है कि एक आंगन में बैठे हुए हम बात कर रहे हैं, तो ये किया जा सकता है ना, रिश्तों की हरारत के लिए इसका भी उपयोग किया जा सकता है। सिर्फ हमारी संवेदना उस तरह से होनी चाहिए, हमारी भावना उस तरह से होनी चाहिए।
1: बिल्कुल मैडम, और खास करके छोटे छोटे बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए, जैसे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको एकत्रित रहने की तरीके हमेशा बचपन से सिखलाएं, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे से मिलाते हैं, हम लोग किसी के परिवार में जब जाते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चे हमेशा देखते रहते हैं, एक टुक निगाहें उनकी ये होती है कि हम लोग किसके घर में जा रहे हैं और उनका आचरण कैसा होता है, तो सब कुछ बच्चे के ऊपर भी प्रभाव करता है, इसलिए बच्चों को अच्छी आदतें डालें और एक दूसरे से मिलने का सौभाग्य जरूर बताते रहें, और बच्चों को मोबाइल से थोड़ी सी दूरी रखें और परिवार जनों से मिलाते रहें, तो बच्चों को में भी अच्छी सी संगति और रंगति दोनों मिलकर के निखर के आएगी।
0: तो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बच्चों को भी इस मिलने मिलाने का महत्व हम समझाएं, है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। तो संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुमत कुमार जैन, शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक हूँ मैडम, पिंडरई जिला मंडला से बोल रहा हूँ मैडम।
0: कैसे हैं सुमत कुमार जी?
1: मैं अभी तक तो अच्छा हूँ मैडम।
0: आगे भी आप अच्छे ही रहेंगे। और गणेश उत्सव किस तरह से चल रहा है?
1: हाँ, गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, और मेरे जैन पर्व दशलाक्षण पर्व चल रहा है, उसकी भी शुभकामनाएं आपको।
0: आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, गणेश उत्सव जब होता है तो घरों से निकलकर लोग एक दूसरे से मिलने मिलाने का काम करते हैं ना, एक मेल मुलाकात का बहाना भी हो जाता है, जो झांकियां लगती हैं सुबह शाम लोग एकत्रित होते हैं। तो आज हम यही बात कर रहे हैं कि रिश्तों में जो एक दूरी आई है इस समय,

0: का क्या कारण आप देखते हैं, और कौन से वो छोटे छोटे प्रयास हो सकते हैं जिनसे अपनापन बना रहे, रिश्ते मजबूत बने रहें?
1: रिश्ते मजबूत बनाने के लिए मैडम हमें मन वचन काया से शुद्ध रहना पड़ेगा, और रिश्तों में जो छोटी मोटी बातों में जो दरार आ जाती है उन्हें भुला करके ही कार्य करना पड़ेगा, तब हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और अपने रिश्ते मजबूत कर पाएंगे। आज का जमाना क्या है, भौतिकवाद का जमाना है मैडम, सब पैसे से दौड़ रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों में, पैसों की लेन देन में, घरों में निश्चित रूप से दरार आ रही है, तो इसे हमें भुला करके एक दूसरे के सहयोग से जीवन जीने की एक कला होना चाहिए, तब हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं मैडम।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। एक बात और मेरे मन में है कि आप ये बताएं कि आपके जीवन में ऐसा कोई रिश्ता जो आपके प्रयास से बहुत गहरा हुआ हो।
1: मेरे तो जितने भी भाई हैं और जितने भी रिश्तेदार हैं मैडम, उनसे सबसे मैं कोई छोटी मोटी बातें अगर वो अपने आवेश में आकर या कोई वातावरण को निर्मित कर देते हैं तो मैं उनसे उत्तम क्षमा कर लेता हूँ मैडम, और किसी प्रकार का उनसे उनको टेंशन देता हूँ ना खुद टेंशन लेता हूँ।
0: ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ी उदारता के साथ जब हम सोचते हैं, उस व्यक्ति के स्थान पर खुद को रख कर जब हम सोचते हैं तो हम समझ पाते हैं।
1: मैडम कोई छोटा नहीं होता
0: जी,
1: ये आपके और हमारे दिल दिमाग में ये बात हमेशा बनी रहनी चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हो गई, रिश्ते में दरार आ रही है या कोई ऐसा वातावरण बन रहा है, तो उससे क्षमा मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता, रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। चार लोग उनके तरफ रहने वाले वो अपने तरफ हो जाते हैं, यही एक कला होना चाहिए कि अपन लोगों को दिल में बैठने के लिए, दिल में उनकी जगह बनाने के लिए हमें अपनी मर्यादा, अपनी भाषा, अपने व्यवहार को अच्छा रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने रिश्तों को सफल और कुशल बना सकते हैं।
0: बहुत ही सुंदर बात आपने कही है कि माफी मांग लेने से, क्षमा मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि मैं तो कहती हूँ बड़ा हो जाता है, है ना? क्योंकि वो ये कहता है कि सारी बातें एक तरफ लेकिन मुझे तुम्हारी कद्र है, वो उस व्यक्ति से यही तो कह रहा होता है ना। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुमित कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे आपकी टीम को धन्यवाद जो बहुत अच्छे विषय रखते हैं, समाज में एक दरार आ रही, रिश्तों में एक दरार आ रही थी, उसके लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा विषय रखा है मैडम। निश्चित रूप से हमारे और आपके विचारों से कुछ लोगों में समझ पैदा होगी और उनमें अपने जीवन जीने की कला आएगी, इसके लिए आप लोगों को पुनः साधुवाद, धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का।
1: हेलो मैम, नमस्कार। सुनीता जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: चौक एवरवाद खोराई जिला सागर मध्य प्रदेश से आपका दोस्त राम सखी परमानंद।
0: राम सखी परमानंद जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है, बढ़िया।
0: अच्छे हैं। और आपके रिश्ते कैसे हैं, यही हमारा विषय है।
1: हमारे रिश्ते बहुत मधुर रिश्ते हैं। हर रिश्तेदार के पास हम जाते हैं, उनके यार के छोटे छोटे कार्यक्रम, जैसे जन्मदिन है, सालगिरह है, शादी सालगिरह है, रक्षा उपहार, कोई अड़ोस पड़ोस में अगर शादी है तो उनको अगर नहीं पहुंच पाते तो उनको पहुंच जाते हैं, तो ठीक है, नहीं पहुंच पाते तो उनको खुशियों में, उनकी खुशियों में शामिल होकर उनको शुभकामनाएं बधाई देते हैं, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। घर में कौन कौन है?
1: घर में मेरी पत्नी है, दो बच्चे हैं।
0: तो कब कब मेल मुलाकात होती है, चारों का मिलना कब होता है, कितने घंटे साथ रहते हैं, कब कब बातें करते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसकी भी चर्चा।
1: बड़े भाई है हमारे 57-58 साल के, उनसे तो हम मिलने हर दिन नहीं तो हफ्ता में 2 दिन तो जाते हैं। तो
0: क्या बात है, अपने भाई से मिलने।
1: हाँ भाई है हमारे अभी बड़े, और हम आपके 60+ हो गए।
0: क्या बात है। ये बताइए कि आपके जो बच्चे हैं उनके साथ आपकी बातचीत प्रतिदिन की होती है, कितना वक्त देते हैं, साथ में खाना खाते हैं?
1: हम लोग खाना खाते समय या चाय पीते समय, सुबह चाय नाश्ता के समय तो बिल्कुल बैठते हैं हम लोग चारों जने।
0: जी राम सखी
1: हमारी मिसेज के नाम पत्नी, और सौरभ गौरव मतलब बच्चे हम लोगों के, हम लोग चारों जने खाना खाते हैं साथ में।
0: तो मतलब ये है कि साथ में खाना खाते हैं, एक दूसरे का हाल लेते हैं, है ना?
1: और अच्छा, और काम में भी जैसे जिसने काम पे नहीं गए या घर में है तो थोड़े बस आपकी सब्जी वगैरह भी काट देते हैं
0: बहुत अच्छी बात है कि घर के कामों में भी आप हाथ बटा देते हैं, वक्त होता है तो।
1: अच्छा, बच्चे भी आपके काम करते हैं
0: तो आप लोगों का मिलना मिलाना बहुत अच्छा है, आपके रिश्ते बहुत मजबूत हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: हमारे यहाँ सब, हमारे घर में साइकिलें हैं, 3 ही साइकिल। अच्छा, राम सखी आंगनबाड़ी

0: कही जाती हैं। आंगनबाड़ी में जान करके 15-16 साल हो गए उनको जाप
1: कर कार्यकर्ता है। ये बताइए कि आपने अपना नाम बताया राम सखी परमानंद, फिर आप
0: नहीं, हमारा नाम है राम सखी, उनका नाम है मैसेज कौर, हमारा नाम है परमानंद जी। मैडम जी है, हमने देखा है आपके जो आप निमंत्रण कार्ड होते हैं
1: जी,
0: ठीक है ना, निमंत्रण कार्ड में अधिकांश आदमी अपनी मैसेज का नाम अच्छा लिखता है आगे, तो हमने आज ये तो कुछ मतलब इसी समय लिख दिया शादी के समय, बाकी तो फिर
1: क्या बात है,
0: उनको मान सम्मान देना
1: जी जी
0: आगे
1: जी
0: करना अच्छा लगता है।
1: हमें बहुत अच्छा लगा और हम बहुत भीतर तक प्रभावित हैं इस बात से राम सखी परमानंद जी। इसके पहले भी आपसे बात हुई है लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि आप अपनी पत्नी का नाम अपने नाम से पहले रखते हैं।
0: कम से कम आपके 20 साल से आगे रख रहे नाम।
1: क्या बात है, मतलब आपके लिए तालियां बजें मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए अक्सर कहा जाता है ना कि भगवान के भी नाम जब हम लेते हैं तो राधा कृष्ण
0: सीताराम
1: है ना, गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण, तो वो जो बात हम कहते हैं उसको अपने जीवन में आपने उतारा है और आपने अपनी पत्नी का नाम अपने नाम से पहले रखा है और आपका नाम हुआ है राम सखी परमानंद।
0: नातेदार घर के पड़ोस के मोहल्ले के सभी लोग जानते राम सखी परमानंद नाम से।
1: क्या बात है,
0: बुलाती भी इसी नाम से राम सखी परमानंद।
1: तो देखिए फिर भला रिश्ता कैसे सूखा हो सकता है, निश्चित तौर पर आपका और आपकी पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा।
0: तो
1: चलिए बहुत अच्छा लगा राम सखी परमानंद जी आपसे बात करके, मुझे लगता है कि आपकी बातों से हमारे जो दूसरे सुनने वाले हैं वो बहुत अधिक प्रेरित होंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया।
0: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नाम बताइए।
1: मैं आरिफ खान मंसूरी बात कर रहा था।
0: आरिफ खान मंसूरी जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं भोपाल कोला रोड से बोल रहा था।
0: अच्छा, क्या कहेंगे आज के विषय पर आरिफ जी?
1: मैम, क्या है रिश्तों में सबसे पहले जरूरी जो है विश्वास जरूरी है। मैम, आज रिश्तों में क्या है विश्वास थोड़ा कम होता जा रहा है।
0: जी जी जी।
1: अगर रिश्तों में विश्वास नहीं होगा तो वो रिश्ते की नींव जो है, बुनियाद जो है, वो मजबूत नहीं रहेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल के रिश्ते बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। पहले जो पारिवारिक और जो मतलब जो परिवार संयुक्त परिवार जो पहले रहता था,
0: जी जी जी,
1: हमारे बुजुर्गों के जमाने में, आज वो परिवार टूटता जा रहा है। सिर्फ दो लोगों तक सीमित रह गया है। और दो लोगों तक सीमित रहने की वजह से आज विश्वास लोगों में कम हो गया है।
0: आपने बहुत अच्छी बात की है कि विश्वास जो है रिश्ते की नींव होती है, इसलिए रिश्तों को आजमाया नहीं जाता। यकीन के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेम के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है ना। और ये भी बात बहुत जरूरी है कि संयुक्त परिवार जब हुआ करता था तो एक दूसरे से मिलना मिलाना, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब संयुक्त परिवार था तो लोगों के पास समय बहुत होता था, क्योंकि सारे काम मिलजुल कर खत्म हो जाते थे और समय होता था। तो एक दूसरे के साथ जब हम बैठते थे, बात करते थे, तो और भी रिश्ते मजबूत होते थे, गहरे होते थे। लेकिन जब
1: कोई मैम अगर कोई परेशानी आती थी तो संयुक्त परिवार में सब मिलकर उसको हल कर दिया करते थे।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी कमियां हुई, और जो एकल परिवार है वो स्वयं जिंदगी की चुनौतियों से जूझता है और एक अलग तरह की दुनिया उसकी बनती है, तो जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। तो आरिफ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोग घर में कौन कौन रहते हैं?
1: मैम, हमारी अम्मी है, अब्बा का तो हमारे इंतकाल हो गया, 8-10 साल हो गए हैं, और हमारी बेगम है, 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की है, हम रहते हैं, और बाकी हमारे 2 भाई हैं, वो भी भोपाल में रहते हैं, हमारे अलग अलग जगह पर रहते हैं।
0: लेकिन मिलना मिलाना होता होगा, है ना?
1: मिलना तो मैम ये समझिए आप 2-4 दिन में मिलना होता है, भाइयों से पास में रहते हैं, 2-2 किलोमीटर दूर पे।
0: जी जी जी जी, कितनी खूबसूरत बात है।
1: वगैरह और भाभी वगैरह हमारी जो है आती जाती रहती हैं, और फोन पे हमारा संपर्क होता रहता है मैम।
0: जी जी, तो बहुत सुंदर बात है, और आपका जो ये पारिवारिक प्रेम है ये बना रहे, ये हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते मैम।
0: कौन बोल रहे हैं
1: जी? ग्राम बनेका, तहसील बंदा, जिला सागर से महेंद्र सेन बात कर रहे हैं मैम।
0: महेंद्र सेन जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है मैम।
0: और क्या कहेंगे रिश्तों पर?
1: रिश्ते मैम आज ऐसा है कि मैम जैसे अपन एक दूसरे के लाने पूछो तभी रिश्ते चल रहे हैं मैम। जैसे कि अपन कोई खिलाने कॉल करें या फिर चिट्ठी के माध्यम से पहले होती थी बातचीत, और आज के समय में चला था फोन से मैम बात, तो रिश्ते बने हैं, मिठास है रिश्तों में।
0: हाँ, तो आपका कहना है कि फोन है तो हम कभी भी बात कर लेते हैं, तो रिश्तों में एक मिठास है।
1: आज सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहा है।
0: हाँ।
1: पहले जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता तो वो चिट्ठी के माध्यम से बात करते थे
0: जी,
1: और हाल चाल पूछते थे एक दूसरों का।
0: जी जी, तो एक जुड़ाव का माध्यम भले ही बदल गया, जुड़ने का माध्यम बदल गया है, लेकिन अगर भावनाएं हमारी उसी तरह से गहरी होती हैं और पवित्र होती हैं तो फिर रिश्ते कभी खराब नहीं होते हैं।
1: जी, रामायण में मैम है, तो रामायण देखो तो अपना पता पड़ता है कि मैम रिश्ते कैसे चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कितने अच्छे से निभाया है, इसी प्रकार आदमी के लिए चलना चाहिए।
0: क्या बात है, आपने बहुत सुंदर बात कह दी है कि जो श्री राम चरित मानस है, जो राम कथा है, उसमें
1: दूसरे की मर्यादा करना चाहिए और अपने उम्र रहना चाहिए। बड़े हैं तो जी कर बात करो।
0: जी जी, मतलब एक पुत्र कैसा हो, है ना, एक पुत्र कैसा हो, एक पत्नी कैसी हो, एक भाई कैसा हो,
1: जी,
0: एक दोस्त कैसा हो, इसकी पूरी परिभाषा राम कथा में है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा महेंद्र जी। हमें लगता है कि आपकी बात से हमारे जो दूसरे सुनने वाले हैं वो भी एक सूत्र पा गए कि अगर रिश्तों को खूबसूरत करना है तो राम कथा की तरफ हमें लौटना होगा, देखना होगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ मैम, छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला वार्ड क्रमांक 20 से।
0: सुरेश कुमार जी, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आस्था, एकता, विश्वास और भाईचारे का प्रतीक है गणेश चतुर्थी का यह पर्व। गणेश उत्सव की इस पावन बेला में सारथी परिवार की ओर से आकाशवाणी भोपाल की पूरी यूनिट को कोटि कोटि बधाई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी ही शुभकामनाएं आप सबके लिए हमारी ओर से। बहुत अच्छा लगा। ये बताइए सुरेश जी कि आज हम रिश्तों पर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से रिश्तों में खुशबू बनी रह सकती है?
1: अब इसमें तो कई प्रकार की दिक्कतें परिवार में भी आते हैं मैम, और दोस्तों यारों में भी आते हैं। सामंजस्य करके चलना चाहिए और आपस में मन मुटाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एकता की भावना रखनी ही चाहिए मैम, तभी हमारा समाज और हमारे रिश्ता मजबूत रहेगा।
0: जी अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर हम परिवार की बात करें, परिवार में भी चाहे बच्चे हों वो माता पिता से दूर हो जाते हैं, भाई बहन उस तरह से आत्मीयता नहीं रखते, आपको क्या लगता है वो छोटे छोटे प्रयास क्या हो सकते हैं जिनसे कि ये जुड़ाव फिर से हो सके?
1: अब इसमें कहा जाए तो माता पिता जो अपने बच्चों को डांटते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए हो, उसको सही मार्गदर्शन देने के लिए हो, तो आजकल के जनरेशन के बच्चे उसको समझते नहीं है और गलत भावना सोच बैठते हैं।
0: बिल्कुल। और तो मुझे ऐसा लगता है,
1: आती है
0: जी, और मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता तो पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं, बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन चूंकि समय कम होता है तो वो अपनी बात सही तरीके से पहुंचा नहीं पाते। मान लीजिए किसी बच्चे को डांट पड़ गई किसी वजह से, माता पिता ने डांटा, तो उसके बाद इतना समय होना चाहिए कि फिर दुलार भी हो। पहले ये होता था, है ना, डांट पड़ी, फिर मनाया गया, फिर समझाया गया और फिर बच्चा खिलखिलाने लगा, लेकिन अब उस तरह से समय नहीं होता है।
1: दोस्ती यारी में भी यही खटास होती है मैम
0: जी।
1: अब दोस्त यार में क्या है मैम, सही दोस्ती है तो अच्छे से राहों पे चल पाते हैं, और दोस्त गलत निकल गए मैम तो उसमें खटास बढ़ जाती है।

0: तो एक दूसरे को समझना, भावनाओं को समझना है ना, दूसरे की तकलीफ समझना, दूसरे की परेशानी समझना, इन्हीं बातों से जो रिश्ता है वो मजबूत होता है।
1: दोस्त वही होता है मैम जो हर सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चले, वही पक्का मित्रता होता है मैम।
0: जी जी, तो ये दोस्ती की जो नींव है वो मजबूत हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम दूसरे की परेशानी को भी उसी तरह से समझें। सुरेश जी, आपने आज हमें फोन किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी, मेरा नाम डॉक्टर तरुण सिंह है, मैं शहडोल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तो क्या कहेंगे आज के विषय पर?
1: आज हम ये देखते हैं कि बहुत लंबे समय से हमेशा से जनरेशन गैप रहा है। अगर कभी भी देखें लंबे समय से पुराने जनरेशन को हमेशा नए जनरेशन के साथ गैप
0: जी, जी जी जी जी।
1: लेकिन पहले क्या होता था कि पहले जो बदलाव थे वो बहुत धीमी गति से आ रहे हैं और आजकल का जो बदलाव है बहुत तेजी से आ रहा है
0: जी।
1: और आजकल बदलाव आ रहा है, रिश्तों में जो अलगाव आ रहा है उसके कारण तनाव और परेशानियां भी होती हैं और लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। जैसे पहले लोग क्या होता था कि पहले लोग दूर हो रहे थे, एक दूसरे से कैसे दूर हो रहे थे कि भाई एकाकीपन जा रहा था, कुछ कारण हो रहा था, लेकिन आज लोग मशीनों के पास आना शुरू हो गए।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: पहले ये होता था कि वो एकाकीपन दूर करने के लिए कोई ना कोई साधन यूज करते थे या कहीं ना कहीं किसी से जुड़ जाते थे।
0: जी जी।
1: लेकिन आजकल क्या होता है कि जब एकाकीपन उनको परेशान करता है या सताता है, उनके पास एक बहुत अच्छा साधन होता है जो हर किसी के पॉकेट पे होता है, एक मोबाइल। ये मोबाइल कहने के लिए तो कहना चाहिए बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार इसको हम अपना एक साथी बना लेते हैं कि भाई पड़ोस में कौन रह रहा है ये पता नहीं है ना। लेकिन मोबाइल में जो सोशल नेटवर्किंग है वो बहुत जबरदस्त है।
0: जी जी,
1: है ना। और सोशल नेटवर्क में, नेटवर्किंग में आने में से फायदा तो बहुत हुआ है, हम जानकारियां साझा कर सकते हैं, लेकिन जानकारी कौन दे रहा है ये पता नहीं चलता, है ना। पहले हम पता करते थे कि जानकारी देने वाला कौन है, ये जानकारी कितनी उचित है या अनुचित है,
0: बिल्कुल
1: उसके अनुसार हम जाते थे और लोगों से मिलते थे और वहां जाके सलाह लेते थे। और जो हमारे मस्तिष्क पे ऑडियो विजुअल का बहुत इफेक्ट होता है, अगर वो जानकारी देने वाला कोई एक योग्य इंसान नहीं भी है तो भी वो जो भी जानकारी देगा, मस्तिष्क हमको, हमारा जो

0: मस्तिष्क है बड़े आराम से उसको ग्रहण कर लेता है।
1: जी जी।
0: और कई जानकारियां ऐसी होती हैं जो लोग अपने फायदे के लिए है ना, आजकल क्या होता है कि अगर लोगों को डरा दो तो बहुत जल्दी मान जाते हैं
1: जी,
0: या लोगों को लालच दे दो तो बहुत जल्दी मान जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से जानकारियां साझा की जाती हैं कि उनकी व्यूज की संख्या बढ़े, लोग उनको ज्यादा लाइक करें, और उस पे वो ये देखना भूल जाते हैं कि कंटेंट पे वो सर्व क्या कर रहे हैं, जानकारी कितनी ऑथेंटिक है
1: जी।
0: और धीरे धीरे ऐसी भी जानकारियां दी जाती है कि लोग उससे हमेशा आकर्षित होने लग जाते हैं। जानकारी कैसी भी हो सकता है मनोरंजन पूर्ण भी हो, और लोगों का धीरे धीरे उनसे लगाव हो जाता है और झुकाव हो जाता है, और अनायास ही लोग आज ये डिवाइस से जुड़ते जा रहे हैं।
1: तो इस तरह वो वास्तविक दुनिया से कटकर आभासी दुनिया से जुड़ जाते हैं,
0: वास्तविक दुनिया से डिटैच हो रहे हैं और लोग जाके एक कहना चाहिए वर्चुअल रियलिटी में जाके जी रहे हैं।
1: तो इस वजह से रिश्ते हमारे प्रभावित हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, है ना, रिश्ते बहुत ज्यादा प्रभावित,
1: क्योंकि एक दिन में घंटे तो 24 ही हैं, उन 24 घंटे में कितना वक्त आप किसको दे रहे हैं। अगर आभासी दुनिया को इतना वक्त हम दे रहे हैं तो हमारी जो अपनी असल दुनिया है वो जरूर हमारी भावनाओं से महरूम रह जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल देखिए कितने सारे गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल को उस पर लगा ले और पूरा आप 3D गेम आप एक अपनी दुनिया बना सकते हैं, और वो दुनिया सोचिए इस दुनिया से कितनी अलग हो जाती है।
1: जी जी।
0: और हमारे मानव समाज का सबसे बड़ा खूबसूरत हिस्सा यही है कि हम एक दूसरे से जब जुड़ते हैं मतलब हमारे तनाव कम होना
1: बिल्कुल
0: शुरू
1: मन हल्का हो जाता है,
0: घूमना शुरू कर देते हैं। ट्रेन में भी जैसे रोते रहते हैं ना, कई लोग घर बार में अकेले हैं, लेकिन पचला बस में ट्रेन में सफर करें तो वहाँ बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और मोबाइल तो ऐसा कि ट्रेन में भी साथ है, सफर में भी बातें
1: जी। पहले जब यात्राएं होती थी तो बहुत सी दोस्तियां हो जाती थी जो बड़े लंबे समय तक चलती थी, लेकिन अब तो आपकी दोस्ती कहीं और हो रही है, संसार कहीं और है, आप कहीं और हैं। तो आपका संदेश जो मैं समझ पा रही हूँ वो यही है कि जो भी गैजेट्स हैं उसका हम सदुपयोग करें, है ना, और आवश्यकता होने पर ही उपयोग करें, ऐसा नहीं कि लगातार उस दुनिया में हम रमे रहें और हमारी अपनी दुनिया खाली सी हो जाए। तो डॉक्टर तरुण सिंह, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया।

तो श्रोताओं, संवेदना की जमीन पर ही रिश्तों के फूल खिलते हैं। ये जमीन हमेशा नम रहे, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। बहुत कुछ नहीं, बस भावनाओं से भरकर कभी एक फोन कर लीजिए, किसी दोस्त का हाल पूछ लीजिए, किसी रूठे हुए रिश्ते के दरवाजे पर अहंकार नहीं अपनापन रख कर आइए, बात बन जाएगी। याद रखिए कि समय बीत जाने से रिश्ते पुराने नहीं होते हैं, रिश्ते पुराने होते हैं या रिश्ते छूट जाते हैं जब हम उन्हें याद करना बंद कर देते हैं। तो आज आपने अपनी बातों से रिश्तों की जो खुशबू हमारे साथ बांटी, वो हमेशा ताजा रहे और आपके जीवन को महकाती रहे, इसी उम्मीद के साथ अब इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बेंगलुरु में टेलीकॉम क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 5 दिवसीय भोपाल विज्ञान मेला आज से बरकतुल्ला विश्वविद्यालय परिसर भोपाल में शुरू हो रहा है। मेले में विद्यार्थियों को समाज की वास्तविक समस्याओं के तकनीकी एवं व्यावहारिक समाधान विकसित करने का अवसर मिलेगा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस इस वर्ष समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की थीम पर कृषि विकास और किसान कल्याण को केंद्र में रखकर मनाया जाएगा। 1 नवंबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह होगा, जबकि जिला मुख्यालयों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय उपलब्धियों व उत्पादों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। आकाशवाणी भोपाल और इसके ट्रांसमिटिंग केंद्रों पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कार्यालय परिसर, स्टूडियो, रिकॉर्ड रूम, ट्रांसमीटर साइट और आवासीय क्षेत्रों में स्वच्छता श्रमदान और पौधरोपण की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। और एशियाई खेलों के ग्रुप ए के मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जापान के नागोया में आज दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराया। वहीं जापान के निशिन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला श्रीलंका से हो रहा है। और एशियाई खेलों में अब तक भारत ने विभिन्न श्रेणियों में 6 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। और ये समय है आपकी फरमाइश का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना जिसको लिया है हमने फिल्म हिना से। आवाज लता मंगेशकर की है, रविंद्र जैन का गीत और संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन और अपार। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है गोला बाजार बक्सर से, लिखने वाले हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है असालतपुरा मुरादाबाद।

बाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबेर अंसारी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखने वाले TS मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज साहिल और बिट्टा बजाज ने पसंद किया है। सुनते ही ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म सुहाग से। आवाज़ हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं धामड़ी मनोरा वाशिम से, तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनु डेरे ने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक, राजकुमार, हिमांश और कवाई बारा, राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गायकवाड़ राही, सरिता गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गायकवाड़, प्रणीता गायकवाड़, अर्जुन, श्वेता, सुमित और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गायकवाड़, कुमारी ध्वनि गायकवाड़ परी और छत्तीसगढ़ दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गाना।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म सबक से, आवाज मुकेश की है। सावन कुमार ने इस गाने को लिखा है, उषा खन्ना का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। लिखने वाले हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोंड और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मास्टर मनीष और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। और इसी गाने के लिए हमारे पास अगला खत है, यह है रेडियो श्रोता साहेब रेडियो श्रोता संघ ननोरा महोबा उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी, आराधना सोनिका, उपमा, नैतिक वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने को पसंद किया है सिंहपुर बड़ा से। लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म सच्चाई से, आवाज़ें हैं आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ज़िला बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहत से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज़ तड़वी, रोज़मीन तैमूर, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई तड़वी, सनी बाबू, परू तड़वी और समस्त तड़वी परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी ने पसंद किया है इस गाने को, और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राना, मीना राना, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबन ने इस गाने को पसंद किया है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर ब्रक, जीतेग ब्रक, मीका ब्रक और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने, सुनते हैं ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम, उससे पहले एक संदेश।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा

0: बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: पर किसी खेत में उत्सव मना रहे थे। उस समय मानो इंद्र इसे देखे बिना नहीं रह सकते थे और खूब पानी बरसा रहे थे।
1: गांव के बाजार में इमली की एक मोटी डाल पर झूला पड़ा हुआ था। झूला मानो ऊंचे उठने का केंद्र बिंदु है। मुलिया और विपता झूला झूल रहे हैं।
2: चाहे हम पीछे को ऊंचे उठे चाहे आगे को।
3: देखो रानी, जिसे आगे को उठना है उसे पीछे को उठना ही पड़ेगा।
0: इस झूले को कोई रस्सी से खींच नहीं रहा था। ये अमीर का वो झूला नहीं था, ये गरीब का झूला था जो दोनों भुजाओं की तरह दो रस्सियों से बांधा गया था तथा दोनों भुजाओं से रस्सियां पकड़कर दो प्राणी झूल रहे थे। वो प्राणी हैं मुलिया और विपता।
1: झूला था कि जितना ही मचकता था उतना ही लचकता था।
0: जब मुलिया और विपता का झूले पर झूलना किसी ने विपता के पिता मुंडा गोंड से कहा, तब वो चिलम पीते पीते बोला,
4: क्या हुआ, वो सबके सामने झूल रहा है, सफेद पोशों जैसी चोरी तो नहीं कर रहा कि बड़ा साधु बने और शहर की बहन बेटियों पे नजर रखे। तुम्हारी शिकायतों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: सिर और हृदय के नीचे पेट है, मगर पेट का भान तो हृदय और सिर से ऊपर रहता है। इसके लिए विपता की बहू मुलिया नर्मदा पार कर अपने फटे चिथड़ों में रामनगर में दूध बेचने चली गई और विपता अपने फटे कपड़ों में लकड़ियों का बोझा सिर पर रखकर नर्मदा पार कर रामनगर बेचने चला गया।
1: दोनों नित्य अपने अपने रास्ते जाते और अपने रास्ते आते। मुलिया दूध बेचने वाली अथवा घास के गट्ठे बेचने वाली लड़कियों के साथ जाती थी और विपता हरवाहों चरवाहों और अन्य लकड़ी का बोझा बेचने वालों के साथ। नर्मदा के घाट पर रामनगर का नाकेदार रहमत खां बैठता था।
5: मैं दूध की टोकरी के पैसे और लकड़ी के बोझ के 3 पैसे लिया करता हूँ, मालूम है ना?
6: जी सरकार।
5: निकालो पैसे।
6: लकड़ी का बोझा बिकते ही मैं उस पार जाने के लिए नर्मदा घाट जाऊंगा सरकार, और आपके पौन आने की जगह 1 आना दे दूंगा।
5: ये तो कार सरकार है बाबा, मेरे हाथ में क्या है, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, समझे? पहले पौन आना निकाल कर रखो तब आगे बढ़ो।
2: तुम पैसे लाना कैसे भूल गए? तुम आदमी लोग बड़े वैसे होते हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने भुलक्कड़ हो जाओगे कि पैसे लाना भूल जाओगे।
6: रानी,
2: ओहो, तुम लकड़ी का बोझा तो बराबर लाए हो पर बप्पा से पैसे मांगना भूल गए।
6: बाजार का झूला झूलते समय जरा देर हो गई थी रानी, इसलिए मैं बोझा उठाकर जल्दी से चल दिया। अब मुझे नाकेदार दद्दा के 3 पैसे देने का ख्याल रहा ही नहीं।
2: अब क्या होगा समझ में नहीं।
5: चल जा जा मर।
6: जी सरकार।
5: मगर हाँ, लकड़ी बिकते ही पैसे मुझे दे देना।
6: जरूर दे दूंगा सरकार।
5: जा छोकरी जा।
2: जी।
5: मुंडा भैया के इस छोकरे को ले जा।
2: जी।
5: और हाँ, लौटते हुए मेरे पैसे जरूर दे देना।
2: जरूर काका।
6: धन्यवाद सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद, पाए लागू।
1: उस दिन जाने क्या हुआ कि मुलिया जिस गली में दूध बेचने के लिए गई, रामनगर शहर की उसी गली में विपता ने भी लकड़ी का बोझा बेचने के लिए प्रवेश किया।
0: उस गली में रामनगर के राजा का महल पड़ता था और उसी दिन राजा की 70 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी।

0: राजा ने मृत्यु पत्र में ये भी लिखा था कि
1: मेरे जीवन में मैंने राजा और प्रजा का भेद नहीं रहने दिया, अतः भविष्य में भी इस भेद को बढ़ने न दिया जाए। नर्मदा की ओर जाने वाली गली से ही मेरा शव ले जाया जाए और उसकी उस विशेष घाट पर दाह क्रिया की जाए जिस विशेष घाट पर जनता के मुर्दे जलाए जाते हैं। मेरा शव निकलने के लिए एक प्रहर पश्चात मेरे उस प्रजाजन को राजगद्दी दी जाए और उसी की पत्नी को रानी बनाया जाए जो उस गली में सबसे गरीब पाया जाए।

सो राजाज्ञा के अनुसार गली के सारे घूमने वाले गिरफ्तार करके रामनगर शहर के जेल खाने भेज दिए गए। रामनगर के राजा के 152 गांवों में वो कंचनपुर गांव भी आ जाता था, जहां मुंडा गोंड अपने परिवार के साथ रहता था। फलतः उस गली में विचरण करने के कारण बिपता भी गिरफ्तार कर लिया गया और मुलिया भी गिरफ्तार कर ली गई।

0: हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जब तक बापू को लकड़ी के पैसे नहीं दूंगा, तब तक वो अपनी चिलम के लिए तमाखू कहां से लाएगा? और जब उसे तमाखू की तलब लगेगी, तब उसे कंचनपुर गांव में धीरज देने वाला कौन होगा?
1: मंठे में सावा के चावल डालकर महेरी सास जी बना लेंगी, ये तो ठीक है, मगर अधिक बूढ़े हो जाने के कारण पप्पा जी यानी ससुर साहब को महेरी कौन खिलावेगा?
0: कौन खिलाएगा?
1: वे तो भैंस का दूध मिलाकर महेरी खाते ही नहीं, पी लेते हैं। और माँ जी जो उनकी झूठी महेरी ही खाती हैं, आज कैसे भोजन करेंगी? हे मेरे देवता, मुझे कहाँ इस जेल खाने में धांस दिया, मुझे तो अपनी गरीब इन सास के पास पहुंचा दो।
0: हे भगवान, हमारी कुछ मदद कर भगवान।
1: जब तक मैं अपने सास ससुर को खिलाऊंगी पिलाऊंगी नहीं, मुझे धीरज कैसे होगा?
2: जेल खाने में हवालाती कैदियों की तरह सब बंद थे, वे खिड़की से नहीं सीखचों से देख सकते थे।
3: जेल खाना उस जगह को कहते हैं जहाँ कैदी की मर्जी ना मर्जी नहीं चलती, ये माना, किंतु ये वो जगह है जहाँ सब नौकर हैं, मालिक कोई नहीं। कैदी नौकरों की तरह काम करते हैं और सरकारी मुलाजिम अफसरों की तरह।
2: अफसर मारते हैं और कैदी मार खाते हैं, किंतु मारना और मार खाना दोनों ही काम कहलाते हैं। 3 दिन जांच होती रही, जेल खाने से लोग छूटते रहे, किंतु विपता और मुलिया के छूटने का दिन नहीं आया। जांच के बाद ये तय हुआ कि उस गली में विचरण करने वालों में विपता ही सबसे अधिक गरीब है, जिसे रामनगर का राजा बनाया जाना चाहिए। और चूंकि मुलिया विपता की स्त्री है, इसलिए उसे रानी बनाया जाना चाहिए।
3: इन दोनों देहातियों को पकड़कर जेल खाने से महलों में ले जाया गया। वहां पूजा की कोठरी में विपता के फटे वस्त्र और लकड़ी का बोझा तथा मुलिया के फटे वस्त्र और उसके दूध दही के बर्तन तथा वो टोकरी जिसमें दूध दही के बर्तन रखे हुए थे, चंदन की एक पेटी में बंद कर दिए गए और उसमें ताला लगा दिया गया।
2: बर्तनों का दूध दही निकालकर महल की नालियों में फेंक दिया गया।
3: सिपाहियों के घेरे में विपता और मुलिया की तालीम होने लगी, वे पढ़ाए जाने लगे। अब वे विपता और मुलिया नहीं रह गए, राजा व्रत शेखर सिंह और रानी मूल गंधनी हो गए। जब वे दोनों मिलकर अपनी गोंडी भाषा में बातचीत करते तो पहरे का सिपाही उनसे कहता,
2: महारानी साहबा, आपका गोंडी में बोलना मना किया है, आप तो महाराज साहब से अंग्रेजी में ही बोल सकती हैं।
3: इसी बीच दशहरा आया। विपता और मुलिया को राजा रानी की तरह राज की ओर से तैयार किया जा रहा था। किंतु शासन में उन्हें अभी तक कोई अधिकार नहीं मिले थे।
2: महारानी तो महाराजा का मुंह झोती हुई आनंदित थे, किंतु महाराजा अधिकार विहीन थे। वे अपने पास अधिकार चाहते भी न थे, किंतु ये क्या, अनेक अपराधियों में उस कंचनपुर के भी अपराधी आने लगे जिस गांव में महाराजा का जन्म हुआ था, और अपराधी होने पर महाराजा को उन्हें कड़ी सजा देनी पड़ी।
3: निस्संदेह ये विषम स्थिति महाराजा के मन को नहीं भाती थी, इसीलिए उन्होंने शासन परिषद की अध्यक्षा अर्थात भूतपूर्व महारानी शैलेश कुमारी देवी से निवेदन किया।
0: माँ साहबा,
4: बोलो व्रत,
0: मुझे तो बख्श दीजिए न्यायदान के इस अधिकार से, मैं तो इन अधिकारों से वंचित ही भला। सारे अधिकारों का उपयोग आप ही कीजिए, अपनी ओर से भी और मेरी ओर से भी।
4: कैसे पगले हो तुम व्रतशगर, न्याय तो तुमको ही करना पड़ेगा, राजा तो तुम्ही को बनना है, भला उसमें इनकारी कैसी? इस राज का राजा ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारे जैसा, जो प्रजा के किसी अंश को ऊंचा किसी को नीचा नहीं समझता, सबको समान अधिकार और समान व्यवहार देना चाहता है।
0: मां साहबा।
2: महाराजा के मरने के दिन शासन परिषद का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष थे महाराजा के चचेरे भाई उमराव सिंह शाह और उसकी मंत्राणी थीं मृत महाराजा की महारानी देवी शैलेश कुमारी। ये बैठक राजगद्दी की तिथि के निर्णय के लिए हुई थी। वो तय हुई बसंत ऋतु में। सो बसंत पंचमी पर महाराजा वृत्त शेखर सिंह को राजगद्दी दी जाए, ये निर्णय हुआ।
3: इस निर्णय के पहले शासन परिषद में बहुत चकचक हुई। मृत राजा के भाई महाराज कुमार उमराव सिंह शाह ने सभा का प्रारंभ करते हुए कहा,
5: महाराजा दलपति शाह पागल थे जो उन्होंने अपने गरीब प्रजाजन को राजा बनाने की बात कही। भला ऐसा छोकरा क्या राज कर सकेगा।
6: मेरे पति दलपति शाह अंत समय तक पागल नहीं थे। उन्होंने जो निर्णय लिए मुझसे, राज के प्रधानमंत्री से और स्वयं उमराव सिंह शाह जी से पूछ कर दिए। ये रहा वो कागज जिसमें हम लोगों के हस्ताक्षर हैं। स्वर्गीय महाराज की आज्ञा का अक्षरशा पालन होना चाहिए।
5: मैं सोचता था भाभी साहिबा शैलशा कुमारी जी कुछ धीरज से काम लेंगी, किंतु उन्होंने अपने पतिदेव महाराज का ही समर्थन किया। अब यदि मैं विदेशियों से जा मिलूं और उनकी सहायता से गद्दी प्राप्त करने का प्रयत्न करूं तो आप लोग मुझे कोई दोष ना देना।
6: आप शौक से विदेशियों के कब्जे में जाइए देवर जी। मैं और मेरा ये राज इस बात की जरा भी चिंता नहीं करते। नारी होकर भी मेरी भुजाओं में ताकत है। इस राज के प्रधानमंत्री हैं, सेना अध्यक्ष हैं, इस राज के महाराजा महारानी हैं। हम सब में देश घातक का सामना करने की शक्ति है।
5: मैं नाराज नहीं हूं देवी जी। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि आप में मेरे भाई की कीर्ति रक्षा करने का कहां तक साहस और बल है।
6: अपने प्रजाजनों के सब धर्मों, सब जातियों और सब समूहों का हित करने की जो लालसा स्वर्गीय महाराज में थी, उसका पालन करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। देवर जी, आप भी वही करें। इस राज के गोंड वही करें और इस राज की शासन संस्थाएं भी वही करें जिससे स्वर्गीय महाराज की इच्छाएं पूरी हों और राज की समस्त जातियां, धर्म और समूहों को समान दृष्टि से देखा जा सके।
5: भाभी साहिबा, आप कपड़े अच्छे दे देंगी, भोजन अच्छा पहुंच जाएगा, किंतु इन मुर्दों में जान कौन डालेगा। सदा से जैसे शासित होते आए हैं उन पर वैसा ही जबरदस्त शासन करना चाहिए।
6: देवर जी, शासनहीनता शासन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। मेरे पति स्वर्गीय महाराजा इसी सिद्धांत पर शासन करते थे।
2: जब राजकुमार उमराव सिंह शाह ने देखा कि महारानी शैलेश कुमारी मानेंगी नहीं, तब उन्होंने अपना क्रोध पीछे ले लिया और महारानी की सेवा शुश्रूषा में जुट गए। किंतु उस दिन की चर्चा से उस राज्य के प्रधानमंत्री और सेनापति को बहुत बल मिला।
3: उन्हें पता चल गया कि राज्य शासन की बागडोर राजमाता शैलेश कुमारी के हाथों में सुरक्षित है।
2: इसी बीच में राजमाता के हस्ताक्षर से एक आज्ञा पत्र महाराजा वृत्त शेखर सिंह को दिया गया।
6: देव देव बड़ा देव विजेते नयतरान, पत्र क्रमांक 437। मेरे शालीन बेटे, आज दशहरा है, इसे विजयदशमी भी कहते हैं। क्षत्रियों और राजाओं का ये त्यौहार हमारे राज के प्रजाजन बहुत उत्साह से मनाते हैं। राजा और रानी के रूप में तुम लोगों को इस अवसर पर प्रजाजनों के साथ भोजन करना पड़ेगा। उस समय तुम बोल नहीं सकते। इस अवसर पर रामनगर के भावी महाराज और महारानी को आंसू बहाना भी मना किया जाता है। राज के सेनापति और प्रधानमंत्री उस समय महाराजा के साथ रहेंगे। जिस समय राज के प्रजाजन आकर महाराजा और महारानी को प्रणाम करेंगे, वो जो कुछ सौगात

0: लाएंगे, उसे स्वीकार करना है और बिना कुछ बोले हाथ जोड़कर उन्हें विदा देना है। आशा है कि इस त्यौहार को आप इस राज की प्रतिष्ठा के अनुकूल निभा लेंगे।
1: राजा वृत्तशेखर सिंह की
2: जय।
1: राजा वृत्तशेखर सिंह की
2: जय।
1: रानी मूलगंधनी की
2: जय।
1: रानी मूलगंधनी की
2: जय।
3: संध्या के समय जो लोग नए महाराजा का मुजरा करने के लिए रामनगर के महाराजा से मिलने आए, उनमें हजारों नर नारियों के साथ विपदा का पिता मुंडा गोंड था और उसकी माता जी भी थी।
4: हम और क्या ला सकते थे, मकई के भुट्टों का एक बोझा महाराज भेंट दे रहे हैं। हम महाराजा और महारानी को प्रणाम करते हैं।
1: राजा वृत्तशेखर सिंह की
2: जय हो।
1: रानी मूलगंधनी की
2: जय।
3: महाराजा लपक कर अपने पिता के पैर छूना चाहते थे और महारानी उनका अनुकरण करना चाहती थी, किंतु प्रधानमंत्री और सेनापति के भय से वे कुछ भी नहीं कर सके। वे दोनों इस बात के आंसू भी नहीं ढाल सके जो अपनी लाचारी व्यक्त कर सकें।
5: जब सब लोग चले गए और महाराजा वृत्तशेखर सिंह और महारानी मूलगंधिनी देवी अपने स्नेह कक्ष में हुए, तब महारानी क्रोधित होकर बोली,
6: तुम तो निरे बुद्धू हो। पप्पा तुमको प्रणाम करते रहे, अम्मा तुमको प्रणाम करते रही और तुम कुछ ना बोले। इस राज्य को लेकर क्या करोगे?
7: हाँ देवी, मैं इतना ही लाचार हूँ। राजमाता के आज्ञा पत्र के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता।
6: बस बस,
7: ये देखो, ये पत्र पढ़ो।
6: दिखाओ।
5: राजमाता का आज्ञा पत्र पढ़कर महारानी चुप रह गईं और अपने पति को महान देवता समझकर कहने लगी,
6: मैं तुमसे हर कुछ बोल देती हूँ, इसका बुरा तो नहीं लगता?
7: अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। जीभ का बुरा दांतों को लगने लगे तो वो साथ साथ कैसे रहें, और जीभ में स्वाद तथा दांतों में बल निवास कैसे करें? मेरे मन में भी आया था कि मैं बप्पा और अम्मा को प्रणाम कर लूं, किंतु मैं तो राजा था, एक कैदी, मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार कहां था रानी? जाने पप्पा ने और अम्मा ने क्या समझा होगा।
6: क्या समझा होगा, वे इस बात पर अवश्य प्रसन्न हुए होंगे कि एक तो इस देश का राजा हमारा बेटा है और दूसरे इस राज के प्रजाजन उसे खूब चाहते हैं, और तीसरे सेनापति और प्रधानमंत्री के बीच वो पग्या बांधे, तलवार लटकाए, अपनी वेशभूषा में खूब ही शोभित होता है।
7: पता नहीं,
6: साथ में खुमान की लड़की मुल्लो महारानी बनकर कैसी सज रही है, जैसे वो इसी दिन के लिए पैदा हुई थी।
7: नहीं दीदी, ये राज बहुत महंगा पड़ा है, हमने इसके लिए क्या क्या नहीं दे दिया। अम्मा जी ने मेरे और तुम्हारे भाइयों को राजदूत बनाकर जहां तहां भेज दिया है। बप्पा और अम्मा का मकान नया बन गया है, उनके दरवाजे पर खूब दूध देती हुई दो भैंसे पहुंच गई हैं। किंतु लगता है देवी, मनुष्य की स्वतंत्रता का बस इतना ही मूल्य नहीं है।
6: हे भगवान,
7: उसकी स्वतंत्रता इससे भी बड़ी वस्तु है। जब मैं चिड़ियों और चमगादड़ों तक को आकाश में उड़ते देखता हूँ रानी, तब मुझे इस तोते के भाग्य पर जो मेरे सम्मुख सोने के पिंजड़े में बंद है, रोना आता है।
6: हाँ। आज तो तुम बड़े देवदूत बनकर बातें कर रहे हो, क्या सारा जीवन इसी तरह उजाड़ देने के लिए है?
3: इसी बीच महाराजा के बाग का माली महारानी के लिए दशहरे का हार और गुलदस्ता लेकर आया।
6: क्या है, क्यों आए हो?
8: आज को दिन ही कछु ऐसो है देवी, जिस सेवक आपके चरणों में आदर पूर्वक जो हार और गुलदस्ता आपको लाए हैं।
6: मैं इसे कैसे ग्रहण करूं मालाकार, मैं राजा दलपति शाह के राज्य की रानी हूँ। यहाँ तो प्रेम और क्रोध दोनों को एक साथ एक ही भाव बिकना चाहिए। इस हार में तुम मालाकार चमेली बेला न जाने किन किन फूलों की गर्दन मरोड़कर उसका हार बनाकर मुझे प्रसन्न करने के लिए लाए हो। मेरी प्रसन्नता के लिए बलिदान किए गए इन फूलों के वृक्षों से सहानुभूति दिखलाऊं? या इन फूलों का सम्मान करूं। तुम्हें बताओ मालाकार, मैं क्या करूं?
8: मैं तो आपको सेवक हूं सरकार। हर बरस ये हार बनाकर दशहरे के दिन में लात हूं, सो आज भी लायो हूं। सरकार, जो काम तो हम 43 बरस से करत आ रहे हैं, हम आप छोटो सो उपहार तनक स्वीकार लेओ, आपको उपकार होगो हमकर।
6: मुलिया गौंड ने तो इसे सर आंखों पर रख लेती मालाकार, किंतु रामनगर की महारानी बगीचे के उन पुष्प वृक्षों के साथ सहानुभूति रखती है, जिसके सर काट लेने में तुम मेरी प्रसन्नता समझते हो। हरी हरी मुट्ठी सी बंधी हुई ये कलियां क्या कहती होंगी मालाकार, कि कोई इतनी अत्याचारिणी महारानी भी इस जगत में है कि फूलों का कलेजा जब उसके सामने उपस्थित किया जाता है तब वो उसे पहन लेती है, और वो उन वृक्षों के साथ सहानुभूति नहीं रखती जिनके बेटा बेटी राज्य की ओर से बाजारों में बिकते देखे जाते हैं।

0: महाराज कभी कभी अपने राज में यात्रा करने निकलते। उस यात्रा में कभी महारानी साथ नहीं होती। उन दिनों सारसों के जोड़े मानो महाराजा को तोरण भी लगाते। चिड़ियों और अन्य पक्षियों का दल मानो अपनी काकली से उन्हें जगाता और कलियां चटक कर महारानी के पतिदेव का स्वागत करती।
1: भागीरथ की कथा पर बार बार ध्यान जाता है। उसने अगर पसीना न बहाया होता तो जगत को गंगा की धारा न प्राप्त हुई होती। यदि पसीना न बहाया जाता और खून न टपकाया जाता तो चट्टानों को पार कर गंगा का स्रोत आकाश जैसी ऊंचाई से जमीन पर कैसे लाया जाता। धन्य है पसीने, तेरी जय हो। तू जब गरीब के अंग अंग पर छाता है तब कितनी धाराएं जमीन पर आ जाती है और उनके किनारे शीतल जलधारा से हरे हरे नहीं हो उठते।
0: महाराजा यात्रा करते करते उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर उनके राज्य का एक छोटा सा गांव था और जहां एक तालाब से ताप्ती नदी निकलती थी। रामनगर के तरुण महाराज ने एक पैर इस तरफ रखा और एक उस तरफ, और उनके दोनों पैरों के बीच में ताप्ती नदी बहने लगी। महाराजा को मानो अपना जीवन याद आ गया। वे सीधे लौटकर रामनगर पहुंचे। रामनगर के नर नारी जाने कैसे ये सोचने लगे कि उनका राजा विषयी है, वह अपनी रानी को सदैव साथ रखता है।
2: लोक धारणा के इस प्रवाह को रोकने राजमाता, प्रधानमंत्री तथा सेनापति सबके लिए कठिन हुआ। अभी तक जो लोक समूह राजा से मिलना चाहते थे उन नर नारियों को प्रधानमंत्री वापस लौटा लिया करते थे, मानो अपने ही महाराजा तथा महारानी से मिलने का किसी प्रजाजन को कोई अधिकार प्राप्त नहीं। किंतु उस किंवदंती के फैलने पर महाराजा और महारानी जिस कक्ष में रहते थे उस कक्ष तक नीचे से सीढ़ियां बना दी गईं, जिससे जब जिसकी इच्छा हो महाराजा और महारानी के दर्शन कर सके।
0: जब लोग ये देखते कि महाराजा और महारानी न मखमल खाते हैं न इत्र पीते हैं, तब उन्हें अपने जैसे व्यक्ति से ऊंचा मानने में जाने कौन सा संकोच होने लगा।
2: जब मध्यान्ह होता तब महाराजा और महारानी स्नान करते और चारों तरफ के दरवाजे बंद कर देते। उस समय महाराजा और महारानी अपने ही माप के बड़े आईनों के सामने खड़े होते।
0: चंदन की पेटी से महारानी अपने फटे कपड़े निकाल लेती और उन्हें पहन लेती। महाराजा भी अपने फटे कपड़े निकाल लेते और पहन लेते। इनके सर पर वो टोकनी होती जिसमें वो दूध दही लाकर बेचती थी और उनके सर पर लकड़ी का महान बोझा होता।
2: वो अपने कद के बराबर के आईने के सामने खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते।
3: हे प्रभु, मैं विपता हूं, मुझ पर व्रत शेखरत्व लदने न पाए और मैं किसी प्रजाजन के प्रति अन्याय न कर सकूं। इस तरह ये मुलिया है, मूल गंधनी रानी नहीं, इससे भी कोई अन्याय ना होने पाए। हम अपने प्रजाजनों के सामने सदैव ईमानदार रह सकें, ऐसा बल दो प्रभु।
0: ये कहकर महाराज ने आईने के सामने प्रणाम किया। महारानी ने भी आईने के सामने प्रणाम करके महाराजा का अनुकरण किया और फिर अपने अपने कपड़े बदलकर तथा फटी चिंदियों को चंदन की पेटियों में बंद कर ताला लगाकर रखने के पश्चात वे दोनों राजमाता के कमरे में भोजन के लिए चले गए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आपने सुना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की चौथी कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में देशभर से सिनेमा से जुड़ी प्रतिभाएं भाग लेंगी। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को भी वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स राउंड टेबल के दौरान टेलीकॉम क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय परिसर भोपाल में आज से 5 दिवसीय भोपाल विज्ञान मेला आयोजित किया जा रहा है। आकाशवाणी भोपाल और इसके ट्रांसमिटिंग केंद्रों पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आज कार्यालयों में पुराने रिकॉर्ड की छटाई और सफाई की जा रही है। 29 सितंबर को एक पेड़ माँ के नाम के तहत पौधरोपण और 1 अक्टूबर को स्टूडियो और ट्रांसमीटर परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा श्रमदान किया जाएगा। एशियाई खेलों में आज भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में दक्षिण कोरिया को हराया। वहीं भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने थाईलैंड को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं भारतीय मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने फिलीपींस की इरा विलेगास को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आज जापान के नेशन में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रनों का लक्ष्य दिया है। भारत ने अब तक विभिन्न श्रेणियों में 6 पदक जीते हैं, जिनमें 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:00 हैं और लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

जब भी हम आपसे मिलते हैं, मुस्कुराने को जी करता है। आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर हमें और मुस्कुराने को जी करता है। जी हाँ, ये प्यारी सी मुस्कुराहटें बिखेरने का एक तजुर्बा जो आप हमें देती हैं, उस तजुर्बे को लेकर हमें और आगे बढ़ने का मन करता है। बात आगे बढ़ने की होती है ना, तो हम आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं, तो हमारे दिल में जो उमंगें, जो तरंगे उठती हैं, उसे लेकर हम दिन भर खुश रहते हैं और बहुत कुछ अच्छा कर भी लेते हैं। आज की मुलाकात खास हो तो हम बातों का सिलसिला शुरू करें। आज महिला सभा का अंक लेकर हाजिर हूँ मैं, संयोगिता जोशी। आप सभी को प्यार भरा प्यारा सा नमस्कार। हमारा और आपका साथ बस यूं ही बना रहे, हम यही चाहते हैं प्यारी प्यारी सखियों। पर एक बात आज सबसे पहले आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम दूसरों के साथ होते हैं ना, तो हमारा ध्यान उनकी पसंद, उनके व्यवहार पर केंद्रित होता है। सच है ना? पर यह भी सच है कि जब हम अकेले होते हैं, वैसे तो मौका बहुत कम मिल पाता है, हाँ जब हम अकेले होते हैं या यूं कहें कि हम स्वयं के साथ होते हैं ना, तो खुद को हम समझ पाते हैं। जी हाँ प्यारी प्यारी सखियों, आप सोचेंगी ये कैसे संभव है कि अकेले में हम स्वयं को समझ पाते हैं। खुद महसूस किया होगा कि जब भी फुर्सत में होती हैं, सुकून मिलता है, आंखें बंद करके बैठती हैं तो दिमागी हलचल, उथल पुथल थोड़ी सी कम होने लगती है। धीरे धीरे मन एकांत की ओर चलने लगता है और यही एकांत हमारा उत्सव बनने लगता है। यानी हम और हमारे विचार, खुद से दोस्ती, और जब दोस्त स्वयं हम अपने होते हैं ना, तो बात बहुत अच्छी और बहुत उम्दा निकल कर सामने आती है। कहना चाह रहे हैं प्यारी प्यारी सखियों कि स्वयं का साथ भी, अकेलापन भी उत्सव मना लेता है। पर हाँ, ये बात भी सच है कि कुछ लोग एकांत को अकेलापन मान लेते हैं। और आप ये जानती हैं ना सखियों कि इस समय सोशल मीडिया, फोन कॉल्स, सामाजिक जिम्मेदारियों से घिरे रहकर स्वयं को वक्त देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर ये जरूरी है कि आप स्वयं को वक्त दें सखियों। ये इसलिए जरूरी है कि ये आत्म खोज, मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है। आपको बताऊं, स्वयं के साथ अकेले में बैठना एक थेरेपी की तरह है, एक दवाई की तरह है। भीतर से ना एक नई ऊर्जा देकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है हमारा एकांत, हमारा अकेलापन और स्वयं का साथ। स्वयं का साथ जब हमें मिलता है ना सखियो, तो हम बाहरी खुशी के मोहताज नहीं होते हैं, हम स्वयं अपना उत्सव मनाते हैं। हम अपनी खुशियां स्वयं के साथ भी मना लेते हैं और खुद से बढ़कर हमारा कोई सच्चा साथी हो भी नहीं सकता। तो प्यारी सखियों, स्वयं अपने साथ रहकर कुछ पल बिताइए ना, और बताइए हमें कि ये पल आपके कैसे बीते। आइए हम खुद अपनी खुशी में शामिल हों और इन मीठी मीठी तरंगों के साथ, मीठी मीठी धुनों के साथ आगे बढ़ते जाएं।

सकियो। इस समय चारों तरफ हरियाली, हरी भरी धरती, मखमली घास और इधर उधर मंडराती छोटी छोटी तितलियां चिड्डे नजरों को सुकून दे रहे हैं, है ना। ये नन्हे परिंदे हमें पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं सखियो। जी हाँ, इस प्रेरणा को और बल देने के लिए, मजबूती देने के लिए भारत सरकार का वैश्विक जन आंदोलन भी शुरू किया गया है, जिसे हम मिशन लाइव के नाम से जानते हैं। आम जनता को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ऊर्जा बचाना, जल बचाना, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, टिकाऊ खाद्य प्रणाली, कचरा कम करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, ई कचरे का प्रबंधन मिशन लाइव के मुख्य बिंदु हैं। मिशन लाइव के अंतर्गत प्रो प्लैनेट पीपल बनाना मुख्य उद्देश्य भी शामिल है। प्रो प्लैनेट पीपल का मतलब ये है, यानी ऐसे लोग जो अपनी धरती के प्रति जिम्मेदार हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम सखियां भी मिशन लाइफ से जुड़ें और पर्यावरण की सुरक्षा में सहयोग दें।

0: और इस गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं क्रम मेरी उड़ान। हमारी कुछ सखियां ऐसी हैं जिन्होंने संभावना को संभव कर दिखाने का हौसला दिखाया है, तो मिलिए मेरी उड़ान में भारत की पहली ट्रैफिक लेडी सिंगर, जिन्हें हम सिंगर कॉप के नाम से भी जानते हैं। वर्दी में जिम्मेदारी, हाथ में माइक और आवाज में जागरूकता।
1: नमस्कार, जय साथियों, मैं लेडी सिंगिंग कॉप सोनाली सोनी। जो चौराहे पर सिग्नल रेड होता है तो वाहन चालकों तक संगीत के माध्यम से अपना जागरूकता संदेश पहुंचाती हूं, ताकि वे सड़क हादसों से बच के रहें।
0: सोनाली जी, मैं चाहती हूं जिस गीत से आप वायरल हुई हैं, सिंगिंग कॉप कहलाई हैं, वो गीत आप जरूर गुनगुनाइए, हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाइए।
1: संगीत दिल को छूता है, तो हमारा प्रयास यही है कि हम आप तक अपना संदेश पहुंचाएं और आप सुरक्षित रहें सड़कों पर भी
0: जी।
1: किस

0: बात है।
1: मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे भाइयों मेरी बहनों।
0: जी हाँ, जब ये प्यारे से गीत के बोल खड़े यात्रियों तक पहुँचे, भाई बहनों तक पहुँचेंगे, वो क्यों सिग्नल तोड़ेंगे और क्यों हादसों को निमंत्रण देंगे। तो सोनाली जी, ये सिंगिंग कॉप के नाम से आप जानी जा रही हैं, तो इसकी शुरुआत किस तरह से हुई ये बताइए।
1: जी मैम, आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय सिंह जी के दिशा निर्देशन में जब गीता भवन चौराहे पर एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो उसी दौरान चंद पंक्तियां मैंने, जब वाहन चालक रेड सिग्नल पे थे तो ये जो गाना है, आप किसी राह में किसी मोड़ पर, मैंने उसको जागरूकता संदेश के रूप में, जो सड़क सुरक्षा के नियम होते हैं उनमें, एट द टाइम कन्वर्ट करके मैंने वहां गाया। तो मुझे नहीं पता था कि चैनल से टीवी पे और इन पे न्यूज पे आया, तो मुझे पता चला कि आई गोट वायरल। तो मैंने इससे पहले तो कभी चौराहे पर गाया नहीं था, लेकिन वो गाना अच्छा लगा मुझे कि करोड़ों जनता तक वो संदेश पहुंचा है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम जैसे तैसे इंदौर पुलिस के द्वारा कि वो संदेश जनता तक पहुंचे।
0: बिल्कुल, यातायात नियमों का पालन यात्री करते रहें, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। और आपने चुना सिंगिंग को, और सिंगिंग वाकई जब दिलों तक पहुंचती है किसी की प्यारी सी आवाज़, तो वो लोग सुनते भी हैं, उसको गुनगुनाते भी हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर जब आप होती हैं तो ये तो इतना मतलब बिजी रहने का काम है, व्यस्त रहने का काम है, तो ये थॉट आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं लोगों तक अपने जो नियमों का पालन करने की जो बात है सिंगिंग के माध्यम से पहुंचाऊं?
1: तो हमारे आदरणीय डीएसपी सर, टीआई सर ने मुझे बोला कि तुम अच्छा गाती हो गाना, तो इस ट्रैफिक पे भी करो कुछ। तो मैंने एट द टाइम वहीं, मुझे भी नहीं पता कि मैंने ना कोई प्री प्लान नहीं था, सडनली मैंने वो गाना जो किसी राह पे किसी मोड़ पे, आई थिंक सभी भारतीयों का लोकप्रिय गीत है वो, तो मैंने उन चंद नियमों को उसी समय गुनगुना दिया था चौराहे पर। तो मुझे नहीं पता था कि वो गाना देश की आवाज बन जाएगा और सब सड़क सुरक्षा का संदेश देगा।
0: सिंगिंग कॉप का जो खिताब आपको मिला है, तो उनके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी, हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय हैं संतोष सिंह जी द्वारा, सबसे पहले जब मेरा वीडियो वायरल हुआ था तो उनके द्वारा मुझे इसके लिए पुरस्कृत किया गया था, और मेरा मुझे मतलब मोटिवेट करने के लिए मुझे गाइडलाइन भी सर के द्वारा ही मिली थी। तो बस हम जानते हैं पुरस्कार मायने नहीं रखता है, लेकिन हम जो कार्य करते हैं वो सही दिशा में हम कर रहे हैं। यदि हमें किसी के द्वारा एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो हमारा हौसला उस कार्य के प्रति और बढ़ जाता है। तो मेरा यही प्रयास रहा है, ऐसे कई अवार्ड सोशल वर्किंग एक्टिविटीज इंदौर वगैरह में दिए हैं। रजा मुराद फिल्म अभिनेता, उनके द्वारा भी मुझे सिंगिंग के लिए अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल गौरव रत्न अवार्ड।
0: अवार्ड्स हैं ये, आपके बढ़ते जाएं, ट्रैफिक पुलिस में उपाधियां आपकी बढ़ें और आप और आगे बढ़ते जाएं। ट्रैफिक पुलिस के अलावा भी आप सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, उस तरफ रुझान कैसे आया आप?
1: जी मैम, ये हम हमारे अधिकारी गण के निर्देशन में ही करते हैं, और मेरा एक्चुअली मैं पहले लेक्चरर रही हूँ, 7 इयर्स तक मैंने कॉलेज में स्कूल में टीचिंग किया है। तो मैम मेरा हमेशा से ही रुझान यही रहता था, जैसे कोई गर्ल्स स्कूल था तो वहाँ अप्रोक्स 600 गर्ल्स होती थी, तो मैं उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंतित रहती थी कि कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो थोड़ा रूरल एरिया से आती है। तो मैम उसी दौरान मैं उनके लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम करती रहती थी। तो जब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पुलिस में ही जाऊं, तो हो सकता है मैं ब्रॉड लेवल पर जनता तक अपना संदेश पहुंचा सकती हूं, मैं किसी एक सीमित क्षेत्र में ही ना रहूं। तो आज देखिए आप, हम ट्रैफिक जागरूकता के साथ साथ बालिकाओं की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा, नशे से दूरी है जरूरी अभियान, मतलब नवाचार होते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम एक कम्युनिटी पुलिसिंग को फॉलो करते हैं। पब्लिक से हमें कैसे डील करना है एक पोलाइट वे में, जिसे कि आप जानते हैं फ्रेंडली पुलिसिंग, तो हम उसे ही फॉलो करते हैं, क्योंकि गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट वाला फंडा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा भी। और सोनाली जी तो काफी सम्मानित है, तो जब भी आप सिंगिंग कॉप का नाम लेंगे तो कोई भी बता देगा कि हाँ, वो ट्रैफिक पर वो दीदी खड़ी होती हैं जो बहुत प्यारा सा गुनगुनाती हैं और बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी। आपने बताया कि आप टीचर रही हैं, आप लेक्चरर रही हैं, तो पुलिस की तरफ रुझान की जो बात आपने कही है, जिस वक्त आपने ज्वाइन किया था और आज की स्थिति में क्या बदलाव आप देख रही हैं?
1: तो अभी आपने देखा है, हर एक फैसिलिटी जो डिजिटली, चाहे अभी हम ट्रैफिक में भी देखें तो ड्रोन के माध्यम से किस तरह से भीड़ वाले इलाके पर निगरानी रख के और वहाँ हम जो ट्रैफिक को इजीली जाम को हटवा सकते हैं, तो एक ड्रोन टेक्निक हुई। अभी बॉडी वॉर्न कैमरा जो हम ट्रैफिक पुलिस के पास देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि उन्हें मतलब पब्लिक से यदि वो डील करते हैं तो उनका ऊपर एक रहता है कि यस हम कैमरे की निगरानी में हैं। आपने देखा है सीसीटीवी फुटेज हर चौराहे पर निगरानी, ताकि पब्लिक सड़क हादसों से बची रहे। यदि वो रेड सिग्नल जंप करते हैं, किसी भी ट्रैफिक रूल को वायोलेशन करते हैं, तो वो उससे उनको थोड़ा रहता है कि कहीं ना कहीं हम कैमरे की निगरानी में हैं, सड़क हादसों से बचें और नियमों का उल्लंघन ना करें। विनम्र अपील के माध्यम से समझाया जाए। और मैम आपने भी देखा होगा चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक साथी ऐप के माध्यम से भी आप अपना जो भी कंप्लेन होता है या आपको कोई दिखता है किसी के बारे में कि वो नियम का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो बिल्कुल आप फोटो उस ऐप पर शेयर कर सकते हैं। और त्वरित अभी अप्रोक्स मैम 4,500 से ऊपर शिकायतों का निवारण किया गया है
0: जी,
1: तो ट्रैफिक साथी ऐप के माध्यम से। तो ये सारे ही नवाचार केवल एक संदेश देने के लिए है कि आप सड़क हादसों से बच के रहें, सुरक्षित रहें।
0: इतनी प्यारी सी आवाज सिंगिंग कॉप की आप तक पहुंच रही है, तो एक और कोई ऐसा गीत तो गुनगुनाइए प्लीज
1: जी मैम।

0: टालो ना।
1: बिल्कुल, आपके प्रयास बहुत सराहनीय है सोनाली जी। सोनाली जी, इतनी अच्छी बातचीत अपनी चल रही है तो मेरे दिमाग में एक बात ये भी आ रही है कि आपसे पूछूं, फिल्मी गीत होते हैं तो उनके शब्द आप बदल लेती हैं, तो ये वक्त कहाँ से मिल जाता है आपको?
0: जी मैम, जैसा मेरा संगीत से बे इंतहा मेरा प्रेम रहा है, तो मुझे कोई लिखना नहीं पड़ता है, ऐसे ही मैं गुनगुनाती रहती हूँ तो उन गानों को ऐसे कन्वर्ट कर लेती हूँ।
1: हाँ, तो अभी कुछ नए अंदाज में कुछ गुनगुनाया
0: जी मैम, मैंने अभी चंद पंक्तियाँ ऐसे ही बनाई थी वर्दी पर, कि जो देशभक्ति है उसके लिए।
1: बिल्कुल, वेलकम, सुनाइए।
0: हजार

0: सर्दी का।
1: क्या बात है सोनाली जी, मतलब बहुत ही उम्दा गुनगुनाया आपने, और ने जो शब्दों में ढाला बदल के, वो भी बहुत ही एक बहुत बहुत उम्दा प्रयास है। हमारी शुभकामनाएं सोनाली सोनी जी के लिए, सिंगिंग कॉप के लिए, और भारत की पहली ट्रैफिक लेडीज सिंगर के लिए। बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी।
2: आपका सर हृदय में दिल से इंदौर पुलिस की ओर से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। जनता तक संदेश पहुँचाने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए सर हृदय धन्यवाद।
3: तेरे

आज के दिन यानी 22 सितंबर को जंगल में रहने वाले बहुत अनमोल जीव गैंडे के लिए भी सुरक्षित किया गया है। लगातार इनकी तादाद कम हो रही है। कांजीरंगा बाग गेंडों के लिए सुरक्षित जलवायु देता है। यहाँ एक सींग वाले जो गेंडे हैं वो बहुत प्रचलन में हैं। उनकी तादाद लगातार बढ़ती रहे और पर्यावरण सुरक्षित रहे। आपको याद दिला दें सखियो, 14 सितंबर से आकाशवाणी मना रहा है हिंदी पखवाड़ा। आकाशवाणी परिसर में होती हैं तरह तरह की प्रतियोगिताएं जो खास तौर पर राजभाषा हिंदी को सम्मान देती हैं और राजभाषा हिंदी को अपना बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती है। हिंदी का उपयोग अधिक से अधिक हो, हम हिंदी बोलें और गर्व अनुभव करें।

वक्त है रूप लावण्य का। सखियो, तीज के त्योहार में हमने खूब अपने आप को सजाया धजाया, फिर अभी चल रहा है गणेश उत्सव, तो लगातार मेकअप के बाद हमारी त्वचा की चमक को बरकरार रखना बेहद जरूरी है। छोटा सा उपाय आपको बता रही हूँ, हैवी मेकअप करती हैं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद तुरंत चेहरा कच्चे दूध से आप साफ कीजिए, साफ करने के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धोइए, कपड़े में बर्फ के टुकड़ों को रख कर चेहरे की मसाज कीजिए। ऐसा करने से आपकी त्वचा की चमक बरकरार रहती है। और हाँ, उमस के कारण पसीना बहुत आता है सखियो, तो बर्फ की मसाज आपके चेहरे के पोर्च को बंद करती है और पसीना बहुत हद तक कम आता है। ये ट्रिक गर्दन हाथ पर भी अपना सकती हैं। त्योहारों के समय पर बार बार फेशियल कराने के बजाय गाढ़ा दही खूब अच्छी तरह से फेंट लें, उसमें बेसन मिलाएं, अच्छी तरह से फेंट कर जब वो एक सार हो जाए तो लगभग 10-15 मिनट के लिए उसे ऐसे ही रख दें। फिर इस मिश्रण को आप चेहरे पर पैक की तरह इस्तेमाल कीजिए। लगभग 10 मिनट यूं ही चेहरे पर लगा रहने दीजिए, फिर धीरे धीरे हाथों से मसल कर इस मिश्रण को चेहरे से छुड़ाइए और ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिए। आप ये महसूस करेंगे सखियो कि आपके चेहरे की स्किन एकदम मुलायम है और चमक यूं ही बरकरार है। इस उपाय को हफ्ते में एक बार जरूर अप्लाई करें और खुद का चेहरा आईने में देखकर थोड़ा मुस्कुराइए और गुनगुनाइए भी।

देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक

0: 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं उमाशंकर परमार और साथी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उमा शंकर परमार के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। और लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में वाणी जयराम के गाए भजन और गजलें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

ये आवाज थी वाणी जयराम की। इसी के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने।

0: मध्य प्रदेश में गांव गांव पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

ये गाना था फिल्म श्री 420 का। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों के। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा था और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में एक और गीत, जिसको लिया है हमने फिल्म जुल्म की, जुल्म का बदला से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। सुनिए ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आपको याद दिला दें कि अब से कुछ ही देर बाद यानी 2:30 पर भी आप सुन सकते हैं आपकी फरमाइश के गाने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संस्कृत सुभाषित साझा किया, जिसमें सुख और मंगल का संदेश दिया गया। यह श्लोक ऋग्वेद के 10वें मंडल के 63वें सूत्र का मंत्र है, जो अथर्ववेद और शुक्ल यजुर्वेद में भी मिलता है। मंत्र में मानव जीवन की तुलना समुद्र यात्रा से करते हुए एक सुरक्षित और कल्याणकारी नौका की कामना की गई है। इसमें सत्य, धर्म और सदाचार को जीवन की नौका के पतवार के रूप में बताया गया है, जो मनुष्य को पाप रहित और शुभ मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बेंगलुरु में टेलीकॉम क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल होंगे, जिसमें वे ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बेंगलुरु प्रवास के दौरान क्वालकॉम के R&D सेंटर के साथ सिग्नल चिप और इनोवेशन और सिंगल ट्रॉन सिस्टम का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन की क्षेत्रीय कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। ये कार्यशाला नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण की किफायती विद्युत खरीद विषय पर आधारित थी। इसमें देश भर से 50 से अधिक विद्युत वितरण कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में सौर ऊर्जा और बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के जरिए उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने और खरीद लागत नियंत्रित करने पर चर्चा हुई। भोपाल में 25 सितंबर को भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और PM ई बस सेवा का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 300 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा करते हुए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने और बसों की फिटनेस तथा जाँच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी दिन गणेश विसर्जन भी होने के कारण यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता भी बरती जाएगी और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। भोपाल में आज से 5 दिवसीय भोपाल विज्ञान मेला बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हो गया है। इसका मकसद विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। मेले की खास पहल नवाचार संगम में विद्यार्थियों की 100 से अधिक परियोजनाएं प्रदर्शित होंगी, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं के समाधान दिखाए जाएंगे। मेले के महाप्रदर्शन में इसरो, IIT और CSIR सहित 53 वैज्ञानिक संस्थाएं हिस्सा लेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। टीम ने आज फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से हराया। भारत ने इससे पहले 2022 के एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए, जो एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। जवाब में श्रीलंकाई टीम 15.5 ओवर में 69 रन पर ऑल आउट हो गई। और अब बात मौसम की। प्रदेश में कल से भारी बारिश का नया दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 सितंबर को सिस्टम ज्यादा एक्टिव रहेगा। 2 दिन में 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में असर सबसे ज्यादा रहेगा। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने इसकी वजह निम्न दाब क्षेत्र को बताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भगवान श्री कृष्ण के जलवा उत्सव का पर्व डोल ग्यारस आज आगरमालवा जिले में भी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कल जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक में स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की समीक्षा की। सिंगरौली कलेक्टर ने जन विश्वास अभियान के अंतर्गत दिवरा ग्राम पंचायत क्लस्टर में आयोजित होने वाले विशेष शिविर की तैयारियां समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। अपराधों की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच को मजबूत करने के लिए झाबुआ पुलिस को पुलिस मुख्यालय की ओर से अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
3: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from All these countries.
2: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
5: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
7: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
8: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
7: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 28988

को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और

0: पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
2: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
3: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
2: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
5: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जापान एशियाई खेल 2026 में

0: भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज टी20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जीवन धारा का एक गीत। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं 12 कवाई 12 से, राजस्थान से लिखने वाले हैं सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमांशी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है। लिखने वाले हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। इन्होंने लिखा है ये खत छबड़ा राजस्थान से। और ये खत है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से लिखने वाले मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत।

0: शंकर जी ने लीडर बनकर झाड़ी एक तकरीर, अखबारों में छप गई तोता मैना की तस्वीर। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ?
1: अरे फिर वही हुआ जो हमेशा होता है।

अगला गाना है फिल्म जीने की राह से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखा है ये मोरटक्का माफी ज़िला खंडवा से, लिखने वाले हैं किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिष्का, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है, गोला बाजार बक्सर से लिखने वाले हैं श्रद्धानंद आर्य, अभय, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है, लिखने वाले हैं जय बजरंग, रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बेलई ज़िला सागर से, लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली वैष्णवी, अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रैकवार। और इसी के साथ ही ये अगला फरमाइशी लेटर है, आदर्श नगर मलोटर से लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायुना शर्मा और निवान शर्मा ने इस गाने को पसंद किया है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शारदा से, आवाज़ लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है और इस गाने को पसंद किया है। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया। इसी गाने के लिए फरमाइश भेजी है सिंहपुर बड़ा से, लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। और ये खत है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। इन्होंने ये खत भेजा है प्रमिलागंज आलोट ज़िला रतलाम से। और ये गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, टेनी पवार, मास्टर मनीष और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चिरडोंगरी पिपरिया ज़िला, कबीर धाम छत्तीसगढ़ से

अगला गाना लिया है हमने फिल्म छू मंतर से। आवाज़ें हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की। जान निसार अख्तर ने इस गाने को लिखा है, ओपी नैयर का संगीत है। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है थाना रोड बक्सर से, ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आए है, लिखने वाले कौन है भाई इसमें, नाम भागवत वर्मा दतरंगी से। इसी गाने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ से, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मनिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चार डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और उनके परिवार के सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहत से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमीन, तैमूर तड़वी, रीना मुबारक, मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई तड़वी, सनी बाबू, परु तड़वी और समस्त तड़वी परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। सुनिए ये गीत।

कभी कभी, ये फिल्म का नाम है। इसमें जो आवाज़ें हैं वो है लता मंगेशकर और मुकेश की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, खयाम का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है। धामड़ी मनोरा से लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रवजल डेरे और अनुत ने इस गाने को पसंद किया। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है, असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और जुबैर अंसारी।

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संस्कृत सुभाषित साझा किया, जिसमें सुख और मंगल का संदेश दिया गया है। यह श्लोक ऋग्वेद के 10वें मंडल के

0: 63वें सूक्त का मंत्र है जो अथर्ववेद और शुक्ल यजुर्वेद में भी मिलता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बेंगलुरु में टेलीकॉम क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल होंगे, जिसमें वे ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज भोपाल में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन की क्षेत्रीय कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। ये कार्यशाला नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण की किफायती विद्युत खरीद विषय पर आधारित थी। भोपाल में 25 सितंबर को भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएमई बस सेवा का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 300 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल में आज से 5 दिवसीय भोपाल विज्ञान मेला बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हो गया है। इसका मकसद विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है और भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। टीम ने आज फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से हराया। भारत ने इससे पहले 2022 के एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच का ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। आज की युवाणी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 5:33 पर और 6:30 पर। 6 बजे का समय है एनसीईआरटी के प्रायोजित कार्यक्रम का किसान वाणी। जी हाँ, किसान वाणी इस कार्यक्रम का समय होगा 7:30। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। 8 बजे आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। 8:35 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं उर्दू प्रोग्राम कहकशां। रात 10 बजे एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स और 10:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। और रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत कृष्ण हंगल का गाया ख्याल गायन, राग होगा चंद्रकोस। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच का ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को हैं। अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5 बजे से आप मीडियम वेव पर प्रसारण पुनः सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान और डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। और शुरुआत करते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम से। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं उमा शंकर परमार और साथी। सुनिए इनसे लोकगीत।

God.

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उमा शंकर पवार और साथियों के गाए लोकगीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं वाणी जयराम के गाए भजन और गीत। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे डीटीएच के ऑडियो चैनल पर सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे वाणी जयराम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत गाना, जिसको हमने लिया है फिल्म वासना से। सुनिए ये गीत।

0: ये गाना था फिल्म रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म का आवाज़ें थी किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में उपासना फिल्म का एक गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, सुनिए।
1: सिखा दूं? सीखना।

ये गाना था फिल्म प्यास का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। कमर जलालवादी ने इस गाने को लिखा था और एन दत्ता का संगीत था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गीत जिसको हमने लिया है फिल्म प्यार पिया मिलन की आस। दूसरी आवाज़ इसमें मोहम्मद रफ़ी की है। भरत व्यास ने इस गाने को लिखा है, एन त्रिपाठी ने संगीत दिया है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म झुक गया आसमान से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हज़रत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है।

अगला गाना है फिल्म दुल्हन से, आवाज़ लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत है, सुनिए ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत के विकास के अगले चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 53वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कारखानों, बोर्डरूम, सेवा केंद्रों और अनुसंधान तथा विकास टीमों को बेहतर मानकों और अधिक विश्वसनीयता के लिए काम करना चाहिए। अगली

0: के वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के दूसरे चरण के सुधारों को आज एक वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में अप्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। नए कर ढांचे के तहत जीएसटी परिषद ने चार स्तरीय व्यवस्था 5, 12, 18 और 28% को सरल बनाकर केवल 2 स्तरीय व्यवस्था 5 और 18% कर दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मानफिया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि देश को महिला क्रिकेट टीम पर गर्व है और भोपाल में 25 सितंबर को बेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई बस सेवा का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 300 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएच ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम शब्द सागर।
2: नमस्कार श्रोताओं, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। इसका वैशिष्ट्य इसकी सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा मात्र नहीं बल्कि समय के निरंतर परिवर्तन के बीच अपनी मूल चेतना और जीवन मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने की क्षमता है। सहस्त्राब्दियों की यात्रा में हमारे देश ने अनेक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का अनुभव किया, विभिन्न सभ्यताओं और विचारधाराओं से संवाद किया। बावजूद इसके उसकी सांस्कृतिक चेतना की मूलधारा अविच्छिन्न प्रवाहित होती रही। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, त्याग, सेवा, परोपकार, सह अस्तित्व और वसुधैव कुटुम्बकम जैसे मूल्य भारतीय जीवन दर्शन की विशिष्ट एवं वैविध्यपूर्ण अस्मिता को दर्शाते हैं। किसी भी संस्कृति की निरंतरता केवल उसके स्मारकों, कलाकृतियों अथवा भौतिक परंपराओं से सुनिश्चित नहीं होती बल्कि उसका अस्तित्व उसकी भाषा, साहित्य, लोक स्मृतियों, मान्यताओं और समाज की सामूहिक संवेदनाओं में सुरक्षित रहता है। इस दृष्टि से साहित्य किसी समाज की सांस्कृतिक स्मृति का महत्वपूर्ण संवाहक होता है। वह बीते समय के अनुभवों, आदर्शों और जीवन मूल्यों को शब्दबद्ध करते हुए उन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाने वाले सेतु का महती कार्य भी करता है। हिंदी साहित्य ने इस सांस्कृतिक उत्तराधिकार को संजोने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भक्ति काल के संतों और कवियों से लेकर आधुनिक एवं समकालीन रचनाकारों तक हिंदी साहित्य ने भारतीय समाज के आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों को निरंतर अभिव्यक्ति प्रदान की है। कबीर की वाणी में मानवता, तुलसी के राम में मर्यादा, सूर्य के काव्य में प्रेम और वात्सल्य, प्रेमचंद के साहित्य में सामाजिक संवेदना, महादेवी की रचनाओं में करुणा और आत्मचेतना तथा दिनकर के काव्य में राष्ट्र और स्वाभिमान आदि ऐसे कुछ उदाहरण मात्र हैं जो भारतीय सांस्कृतिक चेतना के विविध आयामों को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य केवल भारतीय संस्कृति का लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाला माध्यम नहीं बल्कि उसकी स्मृति को सुरक्षित रखने, मूल्यों को पुनर्परिभाषित करने और उन्हें बदलते समय के साथ आगे बढ़ाने वाली सृजनात्मक शक्ति भी है। साथियों, भारतीय संस्कृति के संरक्षण में हिंदी साहित्य के योगदान को केवल हिंदी भाषा के विकास तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन में हिंदी साहित्य की भूमिका अत्यंत व्यापक और बहुआयामी रही है। इसे हम विभिन्न कालखंडों और विधाओं के माध्यम से सम्यक रूप से समझ सकते हैं। भक्ति काल को धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का आधार माना जाता है जो लगभग 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक रहा। यह हिंदी साहित्य का वह दौर था जिसमें भारतीय समाज को धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठाकर उसे प्रेम, मानवता और लोक मंगल की व्यापक भावना की ओर प्रवृत्त किया। इस दौरान जहाँ कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से हिंद मुस्लिम एकता, अंधविश्वास विरोध और सामाजिक समरसता का संदेश दिया, वहीं तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से राम कथा को जनसाधारण की भाषा में प्रस्तुत कर उसे घर घर पहुंचाया। यह महान ग्रंथ आज भी भारत में पारिवारिक और सामाजिक जीवन मूल्यों का मार्गदर्शक बना हुआ है। एक ओर सूरदास ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से वात्सल्य और श्रृंगार रस को अभिव्यक्त कर भारतीय भावनात्मक संस्कृति को समृद्ध किया, वहीं दूसरी ओर मीराबाई ने अपने पदों से स्त्री भक्ति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की परंपरा को जीवित बनाए रखने में

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हो चुके हैं। नीचे प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय से, इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की चौथी कड़ी।

0: लोग आम के दरख्तों से कुछ दूर पर किसी खेत में उत्सव मना रहे थे। उस समय मानो इंद्र इसे देखे बिना नहीं रह सकते थे और खूब पानी बरसा रहे थे।
1: गांव के बाजार में इमली की एक मोटी डाल पर झूला पड़ा हुआ था। झूला मानो ऊंचे उठने का केंद्र बिंदु है। मुलिया और विपता झूला झूल रहे हैं।
2: चाहे हम पीछे को ऊंचे उठे चाहे आगे को।
3: देखो रानी, जिसे आगे को उठना है उसे पीछे को उठना ही पड़ेगा।
0: इस झूले को कोई रस्सी से खींच नहीं रहा था। ये अमीर का वो झूला नहीं था, ये गरीब का झूला था जो दोनों भुजाओं की तरह दो रस्सियों से बांधा गया था तथा दोनों भुजाओं से रस्सियां पकड़कर दो प्राणी झूल रहे थे। वो प्राणी हैं मुलिया और विपता।
1: झूला था कि जितना ही मचकता था उतना ही लचकता था।
0: जब मुलिया और विपता का झूले पर झूलना किसी ने विपता के पिता मुंडा गोंड से कहा, तब वो चिलम पीते पीते बोला,
4: क्या हुआ, वो सबके सामने झूल रहा है। सफेद पोशों जैसी चोरी तो नहीं कर रहा कि बड़ा साधु बने और शहर की बहन बेटियों पे नजर रखे। तुम्हारी शिकायतों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: सिर और हृदय के नीचे पेट है, मगर पेट का भान तो हृदय और सिर से ऊपर रहता है। इसके लिए विपता की बहू मुलिया नर्मदा पार कर अपने फटे चिथड़ों में रामनगर में दूध बेचने चली गई और विपता अपने फटे कपड़ों में लकड़ियों का बोझा सिर पर रखकर नर्मदा पार कर रामनगर बेचने चला गया।
1: दोनों नित्य अपने अपने रास्ते जाते और अपने रास्ते आते। मुलिया दूध बेचने वाली अथवा घास के गट्ठे बेचने वाली लड़कियों के साथ जाती थी और विपता हरवाहों चरवाहों और अन्य लकड़ी का बोझा बेचने वालों के साथ। नर्मदा के घाट पर रामनगर का नाकेदार रहमत खां बैठता था।
5: मैं दूध की टोकरी के पैसे और लकड़ी के बोझ के 3 पैसे लिया करता हूँ, मालूम है ना?
6: जी सरकार।
5: निकालो पैसे।
6: लकड़ी का बोझा बिकते ही मैं उस पार जाने के लिए नर्मदा घाट जाऊंगा सरकार, और आपके पौन आने की जगह 1 आना दे दूंगा।
5: ये तो कार सरकार है बाबा, मेरे हाथ में क्या है, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, समझे? पहले पौन आना निकाल कर रखो तब आगे बढ़ो।
2: तुम पैसे लाना कैसे भूल गए? तुम आदमी लोग बड़े वैसे होते हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने भुलक्कड़ हो जाओगे कि पैसे लाना भूल जाओगे।
6: रानी,
2: वो तुम लकड़ी का बोझा तो बराबर लाए हो, पर बप्पा से पैसे मांगना भूल गए।
6: बाजार का झूला झूलते समय जरा देर हो गई थी रानी, इसलिए मैं बोझा उठाकर जल्दी से चल दिया। अब मुझे नाकेदार दद्दा के 3 पैसे देने का ख्याल रहा ही नहीं।
2: अब क्या होगा समझ में नहीं।
5: चल जा जा मर।
6: जी सरकार।
5: मगर हाँ, लकड़ी बिकते ही पैसे मुझे दे देना।
6: जरूर दे दूंगा सरकार।
5: जा छोकरी जा।
2: जी।
5: मुंडा भैया के छोकरे को ले जा।
2: जी।
5: और हाँ, लौटते हुए मेरे पैसे जरूर दे देना।

0: काका।
1: धन्यवाद सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद, पाए
2: लागू। उस दिन जाने क्या हुआ कि मुलिया जिस गली में दूध बेचने के लिए गई, रामनगर शहर की उसी गली में विपता ने भी लकड़ी का बोझा बेचने के लिए प्रवेश किया।
3: उस गली में रामनगर के राजा का महल पड़ता था और उसी दिन राजा की 70 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी।

0: राजा ने मृत्यु पत्र में ये भी लिखा था कि
1: मेरे जीवन में मैंने राजा और प्रजा का भेद नहीं रहने दिया, अतः भविष्य में भी इस भेद को बढ़ने न दिया जाए। नर्मदा की ओर जाने वाली गली से ही मेरा शव ले जाया जाए और उसकी उस विशेष घाट पर दाह क्रिया की जाए जिस विशेष घाट पर जनता के मुर्दे जलाए जाते हैं। मेरा शव निकलने के लिए एक प्रहर पश्चात मेरे उस प्रजाजन को राजगद्दी दी जाए और उसी की पत्नी को रानी बनाया जाए जो उस गली में सबसे गरीब पाया जाए।

सो राजाज्ञा के अनुसार गली के सारे घूमने वाले गिरफ्तार करके रामनगर शहर के जेल खाने भेज दिए गए। रामनगर के राजा के 152 गांवों में वो कंचनपुर गांव भी आ जाता था, जहां मुंडा गोंड अपने परिवार के साथ रहता था। फलतः उस गली में विचरण करने के कारण बिपता भी गिरफ्तार कर लिया गया और मुलिया भी गिरफ्तार कर ली गई।

0: हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जब तक बापू को लकड़ी के पैसे नहीं दूंगा, तब तक वो अपनी चिलम के लिए तमाकू कहां से लाएगा? और जब उसे तमाकू की तलब लगेगी, तब उसे कंचनपुर गांव में धीरज देने वाला कौन होगा?
1: मंठे में सावा के चावल डालकर महेरी सास जी बना लेंगी, ये तो ठीक है, मगर अधिक बूढ़े हो जाने के कारण पप्पा जी यानी ससुर साहब को महेरी कौन खिलावेगा?
0: कौन खिलाएगा?
1: वे तो भैंस का दूध मिलाकर महेरी खाते ही नहीं, पी लेते हैं। और माँ जी जो उनकी झूठी महेरी ही खाती हैं, आज कैसे भोजन करेंगी? हे मेरे देवता, मुझे कहाँ इस जेल खाने में धांस दिया, मुझे तो अपनी गरीब इन सास के पास पहुंचा दो।
0: हे भगवान, हमारी कुछ मदद कर भगवान।
1: जब तक मैं अपने सास ससुर को खिलाऊंगी पिलाऊंगी नहीं, मुझे धीरज कैसे होगा?
2: जेल खाने में हवालाती कैदियों की तरह सब बंद थे, वे खिड़की से नहीं सीखचों से देख सकते थे।
3: जेल खाना उस जगह को कहते हैं जहां कैदी की मर्जी ना मर्जी नहीं चलती, ये माना, किंतु ये वो जगह है जहां सब नौकर हैं, मालिक कोई नहीं। कैदी नौकरों की तरह काम करते हैं और सरकारी मुलाजिम अफसरों की तरह।
2: अफसर मारते हैं और कैदी मार खाते हैं, किंतु मारना और मार खाना दोनों ही काम कहलाते हैं। 3 दिन जांच होती रही, जेल खाने से लोग छूटते रहे, किंतु विपता और मुलिया के छूटने का दिन नहीं आया। जांच के बाद ये तय हुआ कि उस गली में विचरण करने वालों में विपता ही सबसे अधिक गरीब है, जिसे रामनगर का राजा बनाया जाना चाहिए। और चूंकि मुलिया विपता की स्त्री है, इसलिए उसे रानी बनाया जाना चाहिए।
3: इन दोनों देहातियों को पकड़कर जेल खाने से

0: किलों में ले जाया गया। वहां पूजा की कोठरी में विपता के फटे वस्त्र और लकड़ी का बोझा तथा मुलिया के फटे वस्त्र और उसके दूध दही के बर्तन तथा वो टोकरी जिसमें दूध दही के बर्तन रखे हुए थे चंदन की एक पेटी में बंद कर दिए गए और उसमें ताला लगा दिया गया।
1: बर्तनों का दूध दही निकालकर महल की नालियों में फेंक दिया गया।
0: सिपाहियों के घेरे में विपता और मुलिया की तालीम होने लगी। वे पढ़ाए जाने लगे। अब वे विपता और मुलिया नहीं रह गए, राजा व्रत शेखर सिंह और रानी मूल गंधनी हो गए। जब वे दोनों मिलकर अपनी गोंडी भाषा में बातचीत करते तो पहरे का सिपाही उनसे कहता,
2: महारानी साहबा, आपका गोंडी में बोलना मना किया है, आप तो महाराज साहब से अंग्रेजी में ही बोल सकती हैं।
0: इसी बीच दशहरा आया। विपता और मुलिया को राजा रानी की तरह राज की ओर से तैयार किया जा रहा था। किंतु शासन में उन्हें अभी तक कोई अधिकार नहीं मिले थे।
2: महारानी तो महाराजा का मुंह झूती हुई आनंदित थे, किंतु महाराजा अधिकार विहीन थे। वे अपने पास अधिकार चाहते भी न थे, किंतु ये क्या, अनेक अपराधियों में उस कंचनपुर के भी अपराधी आने लगे जिस गांव में महाराजा का जन्म हुआ था, और अपराधी होने पर महाराजा को उन्हें कड़ी सजा देनी पड़ी।
0: निस्संदेह ये विषम स्थिति महाराजा के मन को नहीं भाती थी, इसीलिए उन्होंने शासन परिषद की अध्यक्षा अर्थात भूतपूर्व महारानी शैलेश कुमारी देवी से निवेदन किया।
3: माँ साहबा,
4: बोलो व्रत,
3: मुझे तो बख्श दीजिए न्यायदान के इस अधिकार से, मैं तो इन अधिकारों से वंचित ही भला। सारे अधिकारों का उपयोग आप ही कीजिए, अपनी ओर से भी और मेरी ओर से भी।
4: कैसे पगले हो तुम वृत्सागर, न्याय तो तुमको ही करना पड़ेगा, राजा तो तुम्ही को बनना है, भला उसमें इनकारी कैसी। इस राज का राजा ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारे जैसा, जो प्रजा के किसी अंश को ऊंचा किसी को नीचा नहीं समझता, सबको समान अधिकार और समान व्यवहार देना चाहता है।
3: माँ साहबा,
2: महाराजा के मरने के दिन शासन परिषद का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष थे महाराजा के चचेरे भाई उमराव सिंह शाह, और उसकी मंत्राणी थीं मृत महाराजा की महारानी देवी शैलेश कुमारी। ये बैठक राजगद्दी की तिथि के निर्णय के लिए हुई थी। वो तय हुई बसंत ऋतु में। सो बसंत पंचमी पर महाराजा वृत शेखर सिंह को राजगद्दी दी जाए, ये निर्णय हुआ।
0: इस निर्णय के पहले शासन परिषद में बहुत चकचक हुई। मृत राजा के भाई महाराज कुमार उमराव सिंह शाह ने सभा का प्रारंभ करते हुए कहा,
5: महाराजा दलपति शाह पागल थे जो उन्होंने अपने गरीब प्रजाजन को राजा बनाने की बात कही। भला ऐसा छोकरा क्या राज कर सकेगा।
4: मेरे पति दलपति शाह अंत समय तक पागल नहीं थे। उन्होंने जो निर्णय लिए मुझसे, राज के प्रधानमंत्री से और स्वयं उमराव सिंह शाह जी से पूछ कर दिए। ये रहा वो कागज जिसमें हम लोगों के हस्ताक्षर हैं। स्वर्गीय महाराज की आज्ञा का अक्षरशः पालन होना चाहिए।
5: मैं सोचता था भाभी साहिबा शैलशा कुमारी जी कुछ धीरज से काम लेंगी, किंतु उन्होंने अपने पतिदेव महाराज का ही समर्थन किया। अब यदि मैं विदेशियों से जा मिलूं और उनकी सहायता से गद्दी प्राप्त करने का प्रयत्न करूं, तो आप लोग मुझे कोई दोष न देना।
4: आप शौक से विदेशियों के कब्जे में जाइए देवर जी, मैं और मेरा ये राज इस बात की जरा भी चिंता नहीं करते। नारी होकर भी मेरी भुजाओं में ताकत है। इस राज के प्रधानमंत्री हैं, सेना अध्यक्ष हैं, इस राज के महाराजा महारानी हैं। हम सब में देश घातक का सामना करने की शक्ति है।
5: मैं नाराज नहीं हूं देवी जी, मैं तो परीक्षा ले रहा था कि आप में मेरे भाई की कीर्ति रक्षा करने का कहां तक साहस और बल है।
4: अपने प्रजाजनों के सब धर्मों, सब जातियों और सब समूहों का हित करने की जो लालसा स्वर्गीय महाराज में थी,
6: उसका पालन करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। देवर जी, आप भी वही करें, इस राज के गोंड वही करें और इस राज की शासन संस्थाएं भी वही करें, जिससे स्वर्गीय महाराज की इच्छाएं पूरी हों और राज की समस्त जातियां, धर्म और समूहों को समान दृष्टि से देखा जा सके।
5: भाभी साहिबा, आप कपड़े अच्छे दे देंगी, भोजन अच्छा पहुंच जाएगा, किंतु इन मुर्दों में जान कौन डालेगा? सदा से जैसे शासित होते आए हैं, उन पर वैसा ही जबरदस्त शासन करना चाहिए।
6: देवर जी, शासनहीनता शासन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। मेरे पति स्वर्गीय महाराजा इसी सिद्धांत पर शासन करते थे।
2: जब राजकुमार उमराव सिंह शाह ने देखा कि महारानी शैलेश कुमारी मानेंगी नहीं, तब उन्होंने अपना क्रोध पीछे ले लिया और महारानी की सेवा शुश्रूषा में जुट गए। किंतु उस दिन की चर्चा से उस राज्य के प्रधानमंत्री और सेनापति को बहुत बल मिला।
0: उन्हें पता चल गया कि राज्य शासन की बागडोर राजमाता शैलेश कुमारी के हाथों में सुरक्षित है।
2: इसी बीच में राजमाता के हस्ताक्षर से एक आज्ञा पत्र महाराजा वृत्त शेखर सिंह को दिया गया।
6: देव देव बड़ा देव विजेते नयतरान, पत्र क्रमांक 437। मेरे शालीन बेटे, आज दशहरा है, इसे विजयदशमी भी कहते हैं। क्षत्रियों और राजाओं का ये त्यौहार हमारे राज के प्रजाजन बहुत उत्साह से मनाते हैं। राजा और रानी के रूप में तुम लोगों को इस अवसर पर प्रजाजनों के साथ भोजन करना पड़ेगा। उस समय तुम बोल नहीं सकते। इस अवसर पर रामनगर के भावी महाराज और महारानी को आंसू बहाना भी मना किया जाता है। राज के सेनापति और प्रधानमंत्री उस समय महाराजा के साथ रहेंगे। जिस समय राज के प्रजाजन आकर महाराजा और महारानी को प्रणाम करेंगे, वो जो कुछ सौगात लाएंगे उसे स्वीकार करना है और बिना कुछ बोले हाथ जोड़कर उन्हें विदा देना है। आशा है कि इस त्यौहार को आप इस राज की प्रतिष्ठा के अनुकूल निभा लेंगे।
5: राजा वृत्त शेखर सिंह की
7: जय।
5: राजा वृत्त शेखर सिंह की
7: जय।
5: रानी मूलगंधनी की
7: जय।
5: रानी मूलगंधनी की
7: जय।
0: संध्या के समय जो लोग नए महाराजा का मुजरा करने के लिए रामनगर के महाराजा से मिलने आए, उनमें हजारों नर नारियों के साथ विपता का पिता मुंडा गोंड था और उसकी माता जी भी थीं।
8: हम और क्या ला सकते थे? मकई के भुट्टों का एक बोझा महाराज भेंट दे रहे हैं। हम महाराजा और महारानी को प्रणाम करते हैं।
5: राजा वृत्त शेखर सिंह की
7: जय हो।
5: रानी मूलगंधनी की
7: जय।
0: महाराजा लपक कर अपने पिता के पैर छूना चाहते थे और महारानी उनका अनुकरण करना चाहती थी, किंतु प्रधानमंत्री और सेनापति के भय से वे कुछ भी नहीं कर सके। वे दोनों इस बात के आंसू भी नहीं ढाल सके जो अपनी लाचारी व्यक्त कर सकें।
2: जब सब लोग चले गए और महाराजा वृत्त शेखर सिंह और महारानी मूलगंधिनी देवी अपने स्नेह कक्ष में हुए, तब महारानी क्रोधित होकर बोली,
9: तुम तो निरे बुद्धू हो। पप्पा तुमको प्रणाम करते रहे, अम्मा तुमको प्रणाम करते रही और तुम कुछ ना बोले। इस राज्य को लेकर क्या करोगे?
3: हाँ देवी, मैं इतना ही लाचार हूँ। राजमाता के आज्ञा पत्र के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता।
9: बस बस,
3: ये देखो, ये पत्र पढ़ो।
9: दिखाओ।
2: राजमाता का आज्ञा पत्र पढ़कर महारानी चुप रह गईं और अपने पति को महान देवता समझकर कहने लगी,
9: मैं तुमसे हर कुछ बोल देती हूँ, इसका बुरा तो नहीं लगता?
3: अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। जीभ का बुरा दांतों को लगने लगे तो वो साथ साथ कैसे रहें, और जीभ में स्वाद तथा दांतों में बल निवास कैसे करें? मेरे मन में भी आया था कि मैं बप्पा और अम्मा को प्रणाम कर लूं, किंतु मैं तो राजा था, एक कैदी, मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार कहां था रानी? जाने पप्पा ने और अम्मा ने क्या समझा होगा।
9: क्या समझा होगा। वे इस बात पर अवश्य प्रसन्न हुए होंगे कि एक तो इस देश का राजा हमारा बेटा है और दूसरे इस राज के प्रजाजन उसे खूब चाहते हैं, और तीसरे सेनापति और प्रधानमंत्री के बीच वो पग्या बांधे, तलवार लटकाए, अपनी वेशभूषा में खूब ही शोभित होता है।
3: पता नहीं,
9: साथ में खुमान की लड़की मुल्लो महारानी बनकर कैसी सज रही है, जैसे वो इसी दिन के लिए पैदा हुई थी।
3: नहीं दीदी, ये राज बहुत महंगा पड़ा है, हमने इसके लिए क्या क्या नहीं दे दिया। अम्मा जी ने मेरे और तुम्हारे भाइयों को राजदूत बनाकर जहां तहां भेज दिया है। बप्पा और अम्मा का मकान नया बन गया है, उनके दरवाजे पर खूब दूध देती हुई दो भैंसे पहुंच गई हैं। किंतु लगता है देवी, मनुष्य की स्वतंत्रता का बस इतना ही मूल्य नहीं है।
9: हे भगवान,
3: उसकी स्वतंत्रता इससे भी बड़ी वस्तु है। जब मैं चिड़ियों और चमगादड़ों तक को आकाश में उड़ते देखता हूं रानी, तब मुझे इस तोते के भाग्य पर जो मेरे सम्मुख सोने के पिंजड़े में बंद है रोना आता है।
9: हाँ। आज तो तुम बड़े देवदूत बनकर बातें कर रहे हो, क्या सारा जीवन इसी तरह उजाड़ देने के लिए है।
0: इसी बीच महाराजा के बाग का माली महारानी के लिए दशहरे का हार और गुलदस्ता लेकर आया।
9: क्या है, क्यों आए हो?
5: आज को दिन ही कछु ऐसो है देवी, जिस सेवक आपके चरणों में आदर पूर्वक जो हार और गुलदस्ता आपको लाए हैं।
9: मैं इसे कैसे ग्रहण करूं मालाकार, मैं राजा दलपति शाह के राज्य की रानी हूँ। यहाँ तो प्रेम और क्रोध दोनों को एक साथ एक ही भाव बिकना चाहिए। इस हार में तुम मालाकार चमेली, बेला, न जाने किन किन फूलों की गर्दन मरोड़कर उसका हार बनाकर मुझे प्रसन्न करने के लिए लाए हो। मेरी प्रसन्नता के लिए बलिदान किए गए इन फूलों के वृक्षों से सहानुभूति दिखलाऊं या इन फूलों का सम्मान करूं? तुम ही बताओ मालाकार, मैं क्या करूं?
5: मैं तो आपको सेवक हूं सरकार, हर बरस जे हार बनाकर दशहरे के दिन में लात हूं, सो आज भी लायो हूं। सरकार, जो काम तो हम 43 बरस से करत आ रहे हैं, हम आप छोटो सो उपहार तनक सो विकार लेओ, आपको उपकार होगो हम कर।
9: मुलिया गौड़नी तो इसे सर आंखों पर रख लेती मालाकार, किंतु रामनगर की महारानी बगीचे के उन पुष्प वृक्षों के साथ सहानुभूति रखती है, जिसके सर काट लेने में तुम मेरी प्रसन्नता समझते हो। हरी हरी मुट्ठी सी बंधी हुई ये कलियां क्या कहती होंगी मालाकार, कि कोई इतनी अत्याचारिणी महारानी भी इस जगत में है कि फूलों का कलेजा जब उसके सामने उपस्थित किया जाता है तब वो उसे पहन लेती है, और वो उन वृक्षों के साथ सहानुभूति नहीं रखती जिनके बेटा बेटी राज्य की ओर से बाजारों में बिकते देखे जाते हैं।

0: महाराज कभी कभी अपने राज में यात्रा करने निकलते। उस यात्रा में कभी महारानी साथ नहीं होती। उन दिनों सारसों के जोड़े मानो महाराजा को तोरण भी लगाते। चिड़ियों और अन्य पक्षियों का दल मानो अपनी काकली से उन्हें जगाता और कलियां चटक कर महारानी के पतिदेव का स्वागत करती।
1: भागीरथ की कथा पर बार बार ध्यान जाता है। उसने अगर पसीना न बहाया होता तो जगत को गंगा की धारा न प्राप्त हुई होती। यदि पसीना न बहाया जाता और खून न टपकाया जाता तो चट्टानों को पार कर गंगा का स्रोत आकाश जैसी ऊंचाई से जमीन पर कैसे लाया जाता। धन्य है पसीने, तेरी जय हो। तू जब गरीब के अंग अंग पर छाता है तब कितनी धाराएं जमीन पर आ जाती है और उनके किनारे शीतल जलधारा से हरे हरे नहीं हो उठते।
0: महाराजा यात्रा करते करते उस स्थान पर

0: पहुंचे जिस स्थान पर उनके राज्य का एक छोटा सा गांव था और जहां एक तालाब से ताप्ती नदी निकलती थी। रामनगर के तरुण महाराज ने एक पैर इस तरफ रखा और एक उस तरफ, और उनके दोनों पैरों के बीच में ताप्ती नदी बहने लगी। महाराजा को मानो अपना जीवन याद आ गया। वे सीधे लौटकर रामनगर पहुंचे। रामनगर के नर नारी जाने कैसे ये सोचने लगे कि उनका राजा विषयी है, वह अपनी रानी को सदैव साथ रखता है।
1: लोक धारणा के इस प्रवाह को रोकने राजमाता, प्रधानमंत्री तथा सेनापति सबके लिए कठिन हुआ। अभी तक जो लोक समूह राजा से मिलना चाहते थे, उन नर नारियों को प्रधानमंत्री वापस लौटा लिया करते थे। मानो अपने ही महाराजा तथा महारानी से मिलने का किसी प्रजाजन को कोई अधिकार प्राप्त नहीं। किंतु उस किंवदंती के फैलने पर महाराजा और महारानी जिस कक्ष में रहते थे, उस कक्ष तक नीचे से सीढ़ियां बना दी गईं, जिससे जब जिसकी इच्छा हो महाराजा और महारानी के दर्शन कर सके।
0: जब लोग ये देखते कि महाराजा और महारानी न मखमल खाते हैं न इत्र पीते हैं, तब उन्हें अपने जैसे व्यक्ति से ऊंचा मानने में जाने कौन सा संकोच होने लगा।
1: जब मध्यान्ह होता तब महाराजा और महारानी स्नान करते और चारों तरफ के दरवाजे बंद कर देते। उस समय महाराजा और महारानी अपने ही माप के बड़े आईनों के सामने खड़े होते।
0: चंदन की पेटी से महारानी अपने फटे कपड़े निकाल लेती और उन्हें पहन लेती। महाराजा भी अपने फटे कपड़े निकाल लेते और पहन लेते। इनके सर पर वो टोकनी होती जिसमें वो दूध दही लाकर बेचती थी, और उनके सर पर लकड़ी का महान बोझा होता।
1: वो अपने कद के बराबर के आईने के सामने खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते।
2: हे प्रभु, मैं विपता हूं, मुझ पर वृक्षकृत्व लदने न पाए, और मैं किसी प्रजाजन के प्रति अन्याय न कर सकूं। इस तरह ये मुलिया है, मूल गंधनी रानी नहीं, इससे भी कोई अन्याय ना होने पाए, हम अपने प्रजाजनों के सामने सदैव ईमानदार रह सकें, ऐसा बल दो प्रभु।
0: ये कहकर महाराज ने आईने के सामने प्रणाम किया। महारानी ने भी आईने के सामने प्रणाम करके महाराजा का अनुकरण किया और फिर अपने अपने कपड़े बदलकर तथा फटी चिंदियों को चंदन की पेटियों में बंद कर ताला लगाकर रखने के पश्चात वे दोनों राजमाता के कमरे में भोजन के लिए चले गए। ये नित्य क्रम ऐसा सधा कि महाराजा और महारानी के प्रति संदेह के स्थान पर प्रजाजन में उनका जय जयकार घर कर गया।
3: राजा!

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की रेडियो प्रस्तुति की चौथी कड़ी। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। इसे भारतीय क्रिकेट के लिए एक शानदार जीत बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस जीत के साथ भारत को खेलों के इस संस्करण का पहला स्वर्ण पदक मिला है। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज परिवहन, खेल और बिजली से जुड़े कई फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इसके लिए 940 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश अब पावर कट से पावर सरप्लस स्टेट बन गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2002 और 3 में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 5000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 32000 मेगावाट हो गई है, जिसमें करीब 30% हिस्सा क्लीन एनर्जी का है। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने निर्माण श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए डिजिटल लेबर चौक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। भोपाल में आज डोल ग्यारस पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस निकला। पीपल चौक से शुरू हुआ इस जुलूस में भोपाल के राजा और दूल्हे राजा की प्रतिमाएं शामिल रहीं। और भोपाल में आज से 5 दिवसीय भोपाल विज्ञान मेला बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हो गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

आपकी असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं बल्कि बीते हुए कल के खुद से है। रोज की छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी कामयाबी बनती हैं। अपनी चुनौतियों की सीमाओं में मत बंधिए बल्कि अपनी सीमाओं को चुनौती दीजिए। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्याचार्य। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं स्वस्थ युवा सशक्त भारत की और चर्चा करेंगे ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा के महत्व और उसके उपयोग के बारे में। साथ ही इस सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया विषय पर केंद्रित वार्ता भी सुनेंगे, जिसमें वार्ताकार होंगी नेहा रघुवंशी। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसकी सीमाओं का विस्तार या आर्थिक आंकड़ों नहीं बल्कि उसका युवा वर्ग होता है। भारत वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, जहां की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह युवा ऊर्जा किसी भी देश को विकास के लिए एक शिखरों पर पहुंचाने के लिए एक अपार शक्ति स्रोत की तरह है, लेकिन यह ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब देश का युवा शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो। आज हम स्वस्थ युवा सशक्त भारत विषय पर आगे बात करेंगे इस गीत के बाद, जो है मूवी एंटरटेनमेंट से।

आतिफ असलम और शालमरी की आवाज में भी आपने गीत सुना। संगीतकार सचिन जिगर और गीतकार प्रिया पंचाल। आप सभी सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे स्वस्थ युवा सशक्त भारत बना सकता है। दोस्तों, जब हम स्वस्थ युवा की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल बीमारियों का ना होना नहीं, बल्कि इसमें दो मुख्य पहलू शामिल हैं, जिसमें है फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक यानी कि मेंटल हेल्थ। आधुनिक जीवन शैली, फास्ट फूड खाना, अपनी सेहत पर ध्यान ना देना, ये सब देश के युवा को शारीरिक रूप से कमजोर बना रही है। इसके लिए फिट इंडिया मूवमेंट, योग जैसी परंपराओं को अपनी दिनचर्या में अपनाकर युवा अपनी शारीरिक ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। आज की दुनिया में युवाओं को करियर की टेंशन रहती है और पारिवारिक अपेक्षाओं के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। स्वस्थ युवा वही है जो मानसिक रूप से संतुलित, विचारशील और सकारात्मक दृष्टिकोण वाला हो, क्योंकि जब तक युवा स्वस्थ नहीं रहेगा वो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएगा। एक स्वस्थ युवा अधिक उत्पादक के साथ काम करता है, जिससे देश के नवाचार और जीडीपी को गति मिलती है। सशक्त भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश की युवा शक्ति पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान होगी। जब हमारा युवा शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से दृढ़ और विचारों से नवाचारी होगा, तब भारत पूर्ण रूप से सशक्त बन पाएगा। और युवा होने के नाते हम सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम सभी स्वस्थ पर ध्यान दें, अच्छा खाना खाएं और सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत कुछ ना कहो से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

0: दोस्तों अभी आपने ये गीत सुना कुशना कहो से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, संगीतकार शंकर एहसान लॉय और गीतकार जावेद अख्तर। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है वार्ता का, सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया विषय पर केंद्रित ये वार्ता। वार्ताकार है नेहा रघुवंशी। लीजिए सुनिए वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नेहा रघुवंशी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसने भारत के युवाओं की सोच और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों की दिशा और दशा बदल दी है। वर्ष 2016 में शुरू हुआ एक अभियान स्टार्टअप इंडिया, आज एक दशक के सफर के बाद यह केवल एक सरकारी योजना नहीं रह गई है बल्कि भारत की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल मूवमेंट बन चुकी है। आज हम विकसित भारत 2047 की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के युवा जॉब सीकर से बदलकर जॉब क्रिएटर कैसे बन रहे हैं? आइए आज हम जानेंगे स्टार्टअप इंडिया ने हमारे देश के पूरे बिजनेस लैंडस्केप को कैसे रीशेप किया है। 16 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य एकदम साफ था, पहला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना और तीसरा रिस्क कैपिटल और फंडिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना और साथ ही भारत को अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे वैश्विक स्टार्टअप हब्स के समक्ष खड़ा करना। सरकार का विजन यह था कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को सेल्फ सर्टिफिकेशन और हैंड होल्डिंग यानी कदम कदम पर मार्गदर्शन का सपोर्ट मिले। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। स्टार्टअप इंडिया ने भारत को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कमाई का मुख्य आधार कारखाने की मशीनें या जमीन नहीं बल्कि विचार, टेक्नोलॉजी और स्किल्स होते हैं। एक अच्छा सॉफ्टवेयर या एक नई खोज करोड़ों लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है। पहले व्यावसायिक गतिविधियां केवल मेट्रो सिटीज या बड़े औद्योगिक केंद्रों तक सीमित थी, लेकिन आज स्टार्टअप इंडिया की वजह से टीयर 2 और टीयर 3 शहर जैसे इंदौर, जयपुर, पटना देश के नए इनोवेशन हब्स बन चुके हैं। आज मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से लगभग 50% स्टार्टअप इन्हीं छोटे शहरों से निकल कर आ रहे हैं। यह उद्यमिता का सही मायनों में लोकतंत्रीकरण है। इसके पीछे इकोनॉमिक्स का सीधा तर्क है। इंटरनेट की पहुंच और UPI जैसे डिजिटल सुविधाओं ने दूरी की अहमियत घटा दी है। छोटे शहर में बैठा एंटरप्रेन्योर भी पूरे देश के कस्टमर तक पहुंच सकता है और वहां ऑफिस का किराया और एम्प्लॉई का खर्च भी महानगरों की तुलना में काफ़ी कम पड़ता है। यानी कम लागत में शुरुआत करने का अवसर छोटे शहरों के युवाओं के पास भी है, चाहे एग्रीटेक हो जो किसानों को मौसम का पूर्वानुमान, मंडी भाव और डिजिटल टूल्स दे रहा है, मेडटेक हो जो दूर दराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और सस्ती जांच पहुंचा रहा है, या फिनटेक हो जिसने डिजिटल पेमेंट को हर दुकान और सब्जी के ठेले तक पहुंचा दिया है, या फिर एडटेक हो जिसने कोचिंग और स्किल्स सीखने की सुविधा गाँव तक उपलब्ध कराई है। हर क्षेत्र में स्टार्टअप ने पारंपरिक क्षेत्रों को टेक डिसरप्शन के जरिए पूरी तरह बदल दिया है। स्टार्टअप इंडिया का सीधा असर हमारी GDP ग्रोथ पर दिख रहा है। वैश्विक निवेशक आज भारत को सबसे आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानते हैं, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI और डोमेस्टिक रिस्क कैपिटल दोनों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जब एक स्टार्टअप बढ़ता है तो वह केवल अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं बल्कि सप्लायर्स, डिलीवरी पार्टनर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी काम देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यह पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, इसकी स्कीम आर्किटेक्चर क्या है। तो इसकी नोडल एजेंसी है DPIIT यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके साथ वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और विभिन्न राज्यों की सरकारें मिलकर एक इंटर मिनिस्टेरियल नेटवर्क की तरह काम करती हैं। कई राज्यों ने अपना अलग स्टार्टअप पॉलिसीज भी बनाई हैं, जिसमें किराए, सर्टिफिकेशन और शुरुआती खर्चों में अतिरिक्त सहायता दी जाती है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP या पार्टनरशिप फर्म आवेदन कर सकती है। यहाँ एक बात युवाओं को खास तौर पर समझनी चाहिए केवल दुकान खोलना या पहले से चल रहे काम को दोहराना स्टार्टअप नहीं कहलाता। शर्त यह है कि स्टार्टअप यूनिट 10 साल से अधिक पुरानी ना हो, उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम हो और उसमें कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट या प्रोसेस शामिल होना चाहिए या वह रोजगार और संपत्ति सृजन की बड़ी क्षमता रखता हो। रजिस्ट्रेशन के बाद उसे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप का दर्जा मिलता है और इसी दर्जे से लाभों के दरवाजे खुलते हैं। एलिजिबल स्टार्टअप्स को पहले 10 वर्षों में से लगातार 3 साल के लिए टैक्स में छूट मिलती है ताकि शुरुआती मुनाफा कंपनी बढ़ाने में लग सके। साथ ही कैपिटल गेन टैक्स में भी राहत प्रदान की जाती है। फंडिंग की बात करें तो शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी SISFS है। इसका पैसा सीधे फाउंडर्स को नहीं बल्कि मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटर्स के जरिए दिया जाता है। इंक्यूबेटर्स ऐसी संस्थाएं हैं जो आइडिया को परखने, प्रोटोटाइप बनाने और मार्केट तक पहुंचने में मदद करती है। इस योजना के तहत आइडिया की वैलिडेशन और प्रोटोटाइप के लिए ग्रांट मिल सकती है और मार्केट में उतरने के चरण में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या लोन जैसे साधनों से सहायता दी जाती है। ग्रोथ स्टेज के लिए फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स है यानी FFS बनाया गया है, जिसे SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली दिलचस्प है। यह सीधे स्टार्टअप में निवेश नहीं करता बल्कि प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंड्स में पैसा लगाता है और वे फंड्स फिर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह सरकार की थोड़ी सी पूंजी के साथ प्राइवेट पूंजी भी जुड़ती है और कुल निवेश कई गुना हो जाता है। इसके अलावा बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराने के

0: के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम भी काम कर रही है। यह उन युवाओं के लिए बड़ी राहत है जिनके पास बैंक में गिरवी रखने को संपत्ति नहीं होती। फंडिंग के साथ साथ प्रोसेस की सरलता भी उतनी ही जरूरी है। सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा के तहत श्रम और पर्यावरण से जुड़े कई कानूनों का पालन स्टार्टअप स्वयं घोषित कर सकता है और शुरुआती वर्षों में उसका इंस्पेक्शन नहीं किया जाता। फास्ट ट्रैक पेटेंटिंग प्रोसेसिंग में आवेदन की जल्दी जांच होती है और पेटेंट फी में भारी रियायत मिलती है, जिससे किसी छात्र या छोटी टीम के लिए अपने आइडिया को कानूनी सुरक्षा देना संभव हो जाता है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में रिलैक्सेशन का अर्थ है कि नई कंपनी से पिछले अनुभव या भारी टर्नओवर की मांग नहीं की जाती, इसलिए वह भी सरकारी टेंडर्स में हिस्सा ले सकती है। इस सब ने नया बिजनेस स्टार्ट करने की प्रोसेस को बेहद आसान बना दिया है। आइए अब DPIIT के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो इस योजना की ऐतिहासिक सफलता के गवाह हैं। भारत में आज लगभग 2.5 लाख DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स का विशाल नेटवर्क है और मोर देन 55,200 स्टार्टअप्स केवल 2025-26 में रजिस्टर हुए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इन स्टार्टअप्स ने देश में 23 लाख से अधिक डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए हैं, जिसने हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक नई दिशा दी है। भारत की औसत आयु लगभग 28 वर्ष है, यानी हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी युवा आबादी है। लेकिन यह डिविडेंड तभी लाभ बनता है जब इन युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार हो। स्टार्टअप्स इसी चुनौती को उत्तर दे रहे हैं। भारत में 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स यानी $1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनीज बन चुकी हैं और लगभग 48% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, जो महिला सशक्तिकरण की बेहतरीन मिसाल है। ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं, ये भारत के लाखों युवाओं के सपनों, उनके साहस और परिश्रम की जीवंत कहानी है। श्रोताओं, स्टार्टअप इंडिया ने यह साबित कर दिया है कि भारत के युवाओं में न केवल बड़े सपने देखने की काबिलियत है, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का सामर्थ्य भी है। आज का भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहा है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो समाज या देश की किसी समस्या का समाधान कर सकता है, तो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जाइए, अपने आइडिया को रजिस्टर कीजिए और देश की इस विकास यात्रा के सारथी बनिए, क्योंकि जैसा कहा गया है, जब सोच बदलती है तभी देश बदलता है।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी वार्ता सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया विषय पर केंद्रित और वार्ताकार थी नेहा रघुवंशी। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। MP हाईकोर्ट ने असिस्टेंट ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। रिक्त पदों की संख्या है 1,174 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए आप mphc.gov.in पर जाकर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत रईस से।

दोस्तों, हसदीप कौर और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में भी आपने गीत सुना, और हम सभी जानते हैं कि कैसे पर्यावरण असंतुलन, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से ऊर्जा की ज़रूरतों को हम पूरा कर रहे हैं, और जिस वजह से आज इतना प्रदूषण हो रहा है। इसी वजह से हरित ऊर्जा केवल एक तकनीक विकल्प नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी को बचाने का एक अनिवार्यता भरा संकल्प है। यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित वातावरण देना चाहते हैं तो हमें इन ईंधनों का इस्तेमाल छोड़ना होगा और सोलार एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी जैसी चीजें यूज करनी होगी। और सोचिए, अगर हम अपने घरों पे छतों पर सोलार पैनल लगा लें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाएं और प्लास्टिक व कचरा का सही इस्तेमाल करके बायोगैस बनाएं तो हमारी हवा कितनी साफ हो जाएगी। हरित ऊर्जा केवल बिजली बचाने का साधन नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ और सुरक्षित कल का वादा है। इसी कारण हरित ऊर्जा का उपयोग करना जरूरी है। तो आप भी कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा हरित ऊर्जा का उपयोग करें। और अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, ये जवानी है दीवानी से तोची रहना और रेखा भरद्वाज की आवाजों में।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम भीवाणी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब लेते हैं एक अंतराल।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन

0: यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
0: ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। वॉर फिल्म से सुनिए विशाल ददलानी बेनी दयाल की आवाज में ये गीत। कुमार ने लिखे हैं इसके बोल और संगीत है विशाल शेखर का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब सुनिए ओ माय गॉड फिल्म से ये गीत कैलाश खेर की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत दिया है मीट ब्रदर्स ने।

0: इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। विषय है तीन तलाक की समाप्ति।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। हमारे खास कार्यक्रम

0: और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम, विषय है तीन तलाक की समाप्ति।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसने भारत में कानून, समाज और महिलाओं के अधिकारों को लेकर लंबे समय तक चर्चा को जन्म दिया था। तीन तलाक। तीन तलाक यानी तलाक की बिद्दत, वो व्यवस्था जिसमें पति द्वारा एक ही समय में तीन बार तलाक कहने से तत्काल और

0: परिवर्तनीय तलाक की बात कही जाती थी, लेकिन आज स्थिति क्या है? क्या फोन, मैसेज और किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तीन तलाक कहना भी कानून की नजर में मान्य है? अगर ऐसा किया जाए तो पत्नी के क्या अधिकार हैं? और इस पूरे मामले की शुरुआत आखिर कहां से हुई? इस प्रथा को लेकर लंबे समय तक देश में कानूनी और सामाजिक बहस चली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वर्ष 2017 में शायरा बानो मामले में संविधान पीठ ने तलाक बिद्दत को असंवैधानिक ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में इस मामले को मुस्लिम कानून, तलाक और तीन तलाक से संबंधित मामले के रूप में दर्ज किया गया। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया। कोर्ट के निर्णय में तत्काल तीन तलाक की प्रथा पर संवैधानिक सवाल उठे और उसे असंवैधानिक माना गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी शायरा बानो मामले का उल्लेख करते हुए तलाक बिद्दत को असंवैधानिक बताया गया। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक रेडियो भोपाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद दीपा जी, मैं शशांक गर्ग, SP रेडियो एस्टेट मध्य प्रदेश पुलिस।
0: आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, हमारे श्रोताओं को बिल्कुल सरल शब्दों में समझाइए कि तीन तलाक यानी तलाक बिद्दत असल में क्या है और ये सामान्य तलाक से कैसे अलग है।
1: दीपा जी, ये जो तलाक बिद्दत है इसके बारे में ये बड़ा मिसकंसेप्शन या इस तरह से एक भ्रम फैलाया गया कि ये धर्म सम्मत, कुरान सम्मत है, जबकि तलाक बिद्दत के बारे में या इसका उल्लेख कुरान में नहीं है। जो मुस्लिम विधि है उसमें यह माना जाता है कि जो कुरान और जो मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र जो है, जो कुछ उनकी हदीसें हैं, उनके आधार पर ही ये माना जाता है कि ये मान्य है। तो जो तलाक सुन्नत है, जिसका उल्लेख है कुरान की मूल भावना है, तलाक सुन्नत और तलाक हसन जिसे कहा जाता है, जिसमें मूल है सुलह की भावना, क्योंकि विवाह को एक पवित्र अनुबंध माना गया है। तो जब कोई अपनी शरीक हयात को किसी भी परिस्थिति में यदि उनका मेल नहीं हो रहा है तो अलग अलग समय पर, ऐसा समय उसमें कुछ भी निर्धारित हो सकता है कि जब ये तलाक के जो तीन तलाक वाली बात है, बाकायदा उसमें सुलह के गुंजाइश होती है, डिस्कशन होता है, मीडिएशन हो सकता है, ताकि ये जो पवित्र अनुबंध है उसको कोई सिर्फ मोमेंट ऑफ रेज में या उस समय उत्तेजना में या क्रोध में आकर खत्म ना कर दे और उसकी पवित्रता बरकरार रखे। तो सुलह उसकी मूल भावना थी, किंतु कालांतर में जो पितृसत्तात्मक समाज है, हम सभी जानते हैं, वो अपने अधिकारों को मनमाने तरह से इंटरप्रेट या उसका विश्लेषण करके, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करके बहुत आर्बिट्री जस्टिफिकेशन देते हुए इसको तलाक बिद्दत में बदल दिया कि यदि कोई पुरुष अपनी शरीक हयात को एक ही बार में तीन बार तलाक तलाक तलाक कह दे तो उनका विवाह विच्छेद माना जाएगा, जो कि निश्चित रूप से कुरान सम्मत भी नहीं था, धर्म सम्मत भी नहीं था, लेकिन चूंकि पितृसत्तात्मक समाज अपनी सत्ता को नहीं छोड़ना चाहता, अपने कंट्रोल को नहीं छोड़ना चाहता, अपने असीमित अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहता था, इसी कारण इसे तलाक बिद्दत को उन्होंने सामान्यीकरण कर दिया, जनरलाइज कर दिया। जो नितांत अपवादात्मक स्थिति होना चाहिए उसे उन्होंने एक नियम बना दिया। तो जो चीज गलत थी, जैसा जस्टिस जोसेफ कुरियन ने कहा फैसले में, कि जो बात धर्म सम्मत नहीं है वो कानून सम्मत भी नहीं हो सकती, वैध नहीं हो सकती जी। तो इसकी पुष्टि इस फैसले शायरा बानो वाद में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि हुई कि जो चीज धर्म सम्मत नहीं है, जो बात धर्म सम्मत नहीं है, वह विधि सम्मत भी नहीं हो सकती। तो इस तरह से तलाक बिद्दत को निरस्त किया गया। हाँ, तलाक सुन्नत अभी भी बरकरार है और ये अधिकार अभी बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है।
0: बिल्कुल सर। सर, इस नए कानून और जागरूकता के बाद जमीनी स्तर पर मुस्लिम महिलाओं के जीवन और उनकी सुरक्षा में आपको क्या सुधार या बदलाव देखने को मिला है?
1: दीपा जी, ये एक बड़ा युगांतरकारी परिवर्तन है, एक ऐसा कदम है जिसमें आप

0: सदियों से जिस तरह से मैंने कहा, दिग्भ्रमित करके, मिसइंटरप्रेट करके, गलत व्याख्या करके और विधि को गलत तरह से, जिसको जो एक एक होता है पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन और एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन।
1: जी जी,
0: आप ये जानिए जब इसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन किया गया, मैं तो यही कहूंगा कि इसमें बदलाव नहीं, इसमें पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन किया गया, सकारात्मक इसकी व्याख्या की गई, तो महिलाओं में एक ये आश्वस्ति है कि ये नहीं कि कभी भी कोई एक साधारण सा कोई बात उठे जिसको पैटी कोई एक मैटर है, एक क्षुद्र सा एक पारिवारिक कोई मसला है या कोई एक ऐसी चीज है, ऐसा मुद्दा है जिस पर सुलह की जा सकती है, थोड़ी देर विचार करके शांत रहकर बात की जा सकती, उसमें वही जो मैंने कहा मोमेंट ऑफ रेज में आपको तलाक दे दिया जाए, एक क्षण में उस व्यक्ति की स्थिति बदल जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: एक पल पहले वो विवाहित थी, एक पल बाद वो अविवाहित है और ये इतना निजी मसला है, लेकिन वो उसको वैधानिक मान्यता दे दी गई। तो कितनी विडंबना है कि आप एक क्षण में एक व्यक्ति की जो वैधानिक स्थिति है उसको बदल देते हैं, उसकी सामाजिक स्थिति को बदल देते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति को बदल देते हैं। तो एक बहुत योगांतरकारी परिवर्तन है और महिलाओं में ये आश्वस्ति है कि नहीं, अब आप मनमाने तरह से ये नहीं कर सकती, क्योंकि अब उनके पास एक कानूनी हथियार है।
1: बिल्कुल।
0: और जब कानून का हथियार हमारे साथ है, सुरक्षा के लिए ही सही, तो हमारे निश्चित रूप से आत्मविश्वास और जो स्टेटस है, जो सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, फैमिली स्टेटस है, उसमें बहुत परिवर्तन आया है, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है मुस्लिम महिलाओं में।
1: बिल्कुल सही आपने कहा सर। अक्सर इस विषय को लेकर समाज में कई तरह की गलतफहमियां भी रहती हैं, आपके अनुसार वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो लोगों को सही तरीके से समझने की जरूरत है?
0: दरअसल जैसा मैंने बताया, जो पितृसत्ता कभी भी अपना अधिकार, अपना जो प्रभुसत्ता है, उसे छोड़ने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि असीमित है। तो ये इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब तो हमारे पर्सनल जो लॉ है, हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर ये ग्रहण लगा दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जो उनके अधिकार हैं, जो वैधानिक अधिकार हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यदि किसी, बिल्कुल ये तो ऐसा हो गया ना जैसे किसी कबीले में ये चलता है कि यदि हमारे साथ किसी ने चोरी की तो हम, जो पुरातन पंथी जो दकियानूसी ख्याल थे कि भाई यदि किसी ने छोटी सी भी चोरी की तो उसके हाथ काट दिए जाएं, या उसको किसी एक छोटी सी गलती पर या शंका पर उसको पत्थर मारे जाएं, तो ये भी तीन तलाक भी वैसे ही चीज़ है। इसमें ये भ्रम फैलाया जा रहा है जिस तरह से लोग बताना चाह रहे हैं कि ये असम हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर आक्षेप है, तो ये कतई नहीं। ये और सुदृढ़ किया गया है, विश्वास किया गया कि हाँ भाई जो सच है, जो सही है, जैसे मैंने जैसे कहा तलाक ए सुन्नत, उसको बरकरार रखा गया, जो अवैध था उसे हटा दिया गया है। और दूसरी बात, एक ये भ्रम फैलाया जाता है कि ये तो एक दीवानी मुद्दा है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है विवाह, जबकि जैसा मैंने बताया कि भाई जब कोई चीज़ आपकी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थिति को प्रभावित करती है और इसके लिए कोई ऐसा फूल प्रूफ, कोई ऐसा या बिल्कुल अविवादित कोई ऐसा प्रावधान नहीं है लिखा हुआ, सिर्फ आप अपने हिसाब से कोई एक आर्बिट्री, अपने मनमाना कोई एक तथाकथित जो धर्मगुरुओं ने उसका नकारात्मक व्याख्या करके बना दिया, उसको ही हम मानने लगे, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है माना, लेकिन इसका जो लीगल स्टेटस है, जो जिस इस सब चीज़ पे जो एक स्त्री के ऊपर प्रभाव पड़ता, बल्कि समाज पे प्रभाव पड़ता, बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, उसको सुधारने की दिशा में ये कदम था। बच्चों की कस्टडी, उनके भरण पोषण, तलाक के उपरांत यदि स्त्री को जो भरण पोषण मिलना है, इसके संबंध में स्पष्ट प्रावधान कहीं नहीं थे।
1: जी जी।
0: अब इसका एक फायदा वहाँ पे हके मेहर के अलावा और कोई प्रावधान उन्होंने नहीं दिया था, तो अब ये एक मजबूत प्रावधान है जिससे बच्चों का संरक्षण सुरक्षित होगा।

0: स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित होगा, तो ये एक सकारात्मक परिवर्तन है। तो जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनको मुझे निश्चित रूप से आने वाले समय में वो भी निरसित होंगे, वो भी उनको भी नल एंड वॉइड, जैसे इस कानून को, इस तलाक बिद्दत को नल एंड वॉइड घोषित किया गया, वैसे ही वो भी भ्रम भी निरसित होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मान लीजिए कि कोई महिला आज भी इस तरह की स्थिति का सामना कर रही है, तो वो मदद के लिए कहाँ जाए और कैसे संपर्क कर सकती है?
0: चूंकि यह इस कानून के तहत जो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसमें जो तलाक बिद्दत है उसको संज्ञेय अपराध बनाया गया है और गैर जमानती अपराध है। तो वो तुरंत ऐसी किसी भी परिस्थिति में पुलिस के पास बिल्कुल निडर होकर जा सकती है और उसकी बाकायदा इसमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होगा
1: जी।
0: और चूंकि ये संज्ञेय और गैर जमानती है तो इसमें विवेचना के बाद गिरफ्तारी की जा सकेगी। तो जब भी कोई ऐसी परिस्थिति का किसी मुस्लिम स्त्री को सामना करना पड़ता है तो बिल्कुल निर्द्वंद रूप से पुलिस के पास जा सकती है, थाने में, संबंधित निकटतम थाने में, महिला थाने में इसका आप वो अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकती है और उसमें तत्काल संज्ञान लेना होगा। जैसा मैंने बताया मैंडेटरी है
1: जी,
0: तो ये संज्ञेय अपराध बनाया गया है तो इसमें FIR दर्ज होगी।
1: बिल्कुल सर, हमारे श्रोताओं के लिए आपका संदेश?
0: मेरा संदेश ये है कि जब भी ऐसी कोई बात आए जहाँ पर किसी भी धार्मिक मुद्दे पर या किसी ऐसे मुद्दे पर जिसका सकारात्मक विवेचन किया जाना चाहिए, व्याख्या किया जाना चाहिए, उसकी नकारात्मक व्याख्या करके किसी के जीवन को, किसी की ज़िंदगी को अजाब ना बनाएं। यदि महिला सशक्त होगी, महिला सुरक्षित होगी, उसके बच्चे सुरक्षित होंगे, तभी एक स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित समाज हम बना पाएंगे। तो मेरी सभी हमारी मुस्लिम बहनों और पूरे समाज को शुभकामनाएं कि इसका सकारात्मक व्याख्या करें, सकारात्मक रूप से स्वीकारें और ये आधी आबादी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खुशखबरी के साथ साथ एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इस ताकत का इस्तेमाल करें और वो भी सकारात्मक रूप से ही इस्तेमाल करें ताकि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो बना रहे, हमारी सॉलिडेरिटी बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: हाँ बिल्कुल सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत प्यारी बात कही कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है, उसका उपयोग तभी करें जब आपको आवश्यकता हो। सर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत शुक्रिया दीपा जी, बहुत अच्छा लगा आज की चर्चा में और मुझे आशा है इससे यदि कोई लाभान्वित होता है तो हमारे इस परिचर्चा की सार्थकता सिद्ध होगी।
1: और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश, विषय था तीन तलाक की समाप्ति। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
3: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
2: मतलब?
3: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
2: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
4: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
0: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। 1954 में स्थापित यह पुरस्कार भारत के सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान है, जो विभिन्न श्रेणियों फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा लेखन में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। सरकार ने कहा है कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR पर GST से छोटे व्यापारियों पर बोझ नहीं पड़ेगा और न ही डिजिटल भुगतान महंगे होंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ऐसी मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया है। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज परिवहन, खेल और बिजली से जुड़े कई फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश अब पावर कट से पावर सरप्लस स्टेट बन गया है। उन्होंने बताया कि 2002 और 3 में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 5,000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 32,000 मेगावाट हो गई है, जिससे करीब 30% हिस्सा क्लीन एनर्जी का है। अब भोपाल में आज से 5 दिवसीय भोपाल विज्ञान मेला बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हो गया है। इसका मकसद विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
0: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम भजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
0: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन,
0: ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन। बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओं, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
2: जी,
0: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
2: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
0: लेकिन श्रोताओं, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
2: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
0: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओं कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
2: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से,
0: हटिए सामने से। खैर श्रोताओं, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
2: जी,
0: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजिन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
2: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
0: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
2: जी,
0: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
2: बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दो पहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
0: आशोताओ, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
2: जी,
0: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
2: बिल्कुल।
0: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
2: जी,
0: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
2: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
0: तो श्रोताओं, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
2: जी,
0: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
2: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में

0: भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
1: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही, लेकिन अब
0: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
1: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
0: जी,
1: मैं तो यही कहूँगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
0: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
1: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है खेल संध्या।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत, और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: Diksha, Digital Infrastructure for School Education, an initiative of the Ministry of Education, Government of India. Brought to you by the National Council of Educational Research and Training.
1: Diksha, Diksha for Empowering Education.
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर मूर्ख।
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
2: चतुर मूर्ख।
4: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा? इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे

0: आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
1: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
0: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। ना तो वो सोया और ना ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
2: अरे उठो, अरे उठो, उठो। अरे उठो,
3: आए उठो, उठो।
2: अरे उठो,
4: बैग बैग बैग बैग।
0: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
2: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
5: अच्छा।
2: परियां नाच रही थी। और हाँ, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह।
0: दूसरे ने कहा,
6: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा।

0: जाकर भी मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी। लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था।
2: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
3: भूत?
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,

0: पास ले जाकर कहा,
1: चलो
0: सीधी तरह खीर खाओ,
1: क्या
0: नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
1: खीर खाए तुम? ऐसे
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
3: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
4: नहीं खाता, तू क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता।
5: तुम झूठ बोलते हो।
3: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
4: जगाता कैसे, तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
6: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का। सुनिए विकी डोनर से ये गीत आयुष्मान खुराना की आवाज में, जिसके बोल और संगीत है आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का।

अगली आवाज़ सुनिए सुनिधि चौहान और करसन सरगठिया की फिल्म फिजा से। ये गीत लिखा है तेजपाल कौर ने और संगीत है अनु मलिक का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। अगली आवाज सुनिए शंकर महादेवन, लॉय मिंडोसा और ईला अरुण के। जावेद अख्तर के लिखे हुए बोल हैं और संगीत में पिरोया है इन शब्दों को शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म का नाम है लक बाय चांस।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में चित्रपट संगीत में अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ भूल भुलैया 2 से। समीर ने लिखे हैं बोल और संगीत है प्रीतम का।

चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति में आप सुनिए वीर ज़ारा फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर, सोनू निगम की आवाज़ है, जावेद अख्तर के लिखे हुए बोल हैं, मदन मोहन और संजीव कोहली का संगीत है।

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है।

वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ, दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां।

0: इसी के साथ चित्रपट संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
3: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
2: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य पृष्ठभूमि में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। फिल्म जगत को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक शक्ति और विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की विविध भाषाओं, परंपराओं और सामाजिक अनुभवों को प्रतिबिंबित करने में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फिल्में न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करती हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। फिल्में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में भी सहायक होती हैं।

0: समारोह में दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से अधिक के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की विज्ञान कथा फिल्म कल्कि 2898 AD को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। अभिनय श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का संयुक्त पुरस्कार दिग्गज अभिनेता ममूटी को ब्रह्मयुगम और आर्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। यामी गौतम को आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। संजय मिश्रा को भक्षक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकाडी को संयुक्त रूप से दिया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वय दृष्टिकोण की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के विकास के अगली चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 53वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्रिकेट टीम को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। शाम 7:30 पर प्रस्तुत होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 8:00 विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा प्रस्तुत होगा। शाम 8:35 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। रात 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा प्रस्तुत होगा। रात 10:00 आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में सुनिएगा एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स। रात 10:20 पर फिल्म संगीत सुनिएगा और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में कृष्ण हंगल की आवाज़ में ख्याल गायन का आनंद लीजिएगा। राग होगा चंद्रकौंस।

अब कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण जो आप सुनेंगे कल बुधवार यानी 22 सितंबर की सभा में 23 सितंबर की सभा में सुबह 6:05 पर कार्यक्रम वंदना प्रस्तुत होगा। 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 6:40 पर चिंतन, 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर प्रस्तुत होगा नमस्कार भोपाल। कल सुबह 8:30 पर विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:05 पर फिल्म संगीत और 9:15 पर सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम प्रस्तुत होगा और कल सुबह 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में। अब कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण जो आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुबह 11:00 से। सुबह 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने प्रस्तुत होगा। कल दोपहर 2:00 और 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 5वीं कड़ी सुनिएगा। कल दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से। कल शाम 5:40 पर प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रस्तुत होगा। कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। कल शाम 8:00 विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा आप सुनेंगे। कल रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है और रात 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स अनुप्रसारित होंगे। इसके साथ ही कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी प्रस्तुत होगा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट ने 13,790 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बेंगलुरु में टेलीकॉम उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल हुए। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा की शुरुआत 25 सितंबर को भोपाल से होगी और मौसम विभाग ने 24 और 25 सितंबर को 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कैबिनेट ने आज 13,790 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए करीब 960 करोड़ रुपए की सहमति दी गई। इन खेल परिसरों के मैदान में स्थायी हेलीपैड भी बनाया जाएगा।
1: खेल जगत के अंदर मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में एक एक स्टेडियम बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके के खेलों का समावेश किया जाएगा। जहां पर 10 एकड़ से ज्यादा जमीन प्राप्त होगी वहां पर इंडोर और आउटडोर दोनों बनेंगे, उसकी लागत 7 करोड़ रुपए होगी। और मल्टीपर्पज खेल रहेंगे, कम से कम 10 से 12 खेलों का, 5 से 6 खेल इंडोर में रहेंगे, 4 से 5 खेल आउटडोर के रहेंगे। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा।
0: कैबिनेट ने ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय और उच्च न्यायालय के संचालन के लिए भी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की निरंतरता को मंजूरी दी। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सिंचाई क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए नीमच के जावत नीमच सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए करीब 4,200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। राजगढ़ की सुठालिया और पार्वती रिंसे परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं से 88,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। कैबिनेट ने प्रदेश की बिजली जरूरतों के लिए भी 2,800 मेगावाट ताप विद्युत खरीदने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बेंगलुरु में टेलीकॉम क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। ग्वालियर में बन रहा दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र होगा जहां दूरसंचार के उपकरण और उनके पुर्जे बनाने वाली करीब 24 से 25 इकाइयां लगेंगी। करीब 5,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले क्षेत्र के पहले चरण के लिए 170 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना की शुरुआत 25 सितंबर को भोपाल से होगी। 350 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। राज्य सरकार ने मार्च 2027 तक प्रदेश में 1,000 बसें शुरू करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। बसों में सीसीटीवी और जीपीएस लगाए जाएंगे, जिससे उनकी लोकेशन की निगरानी भी हो सकेगी। सरकार ने वर्ष 2030-31 तक करीब 15,000 बसें चलाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश की राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों में सड़कों और नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। मार्गों की जर्जर हालत और खुले सीवरेज नेटवर्क देखकर उन्होंने असंतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा में सुधार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही 10 दिन में बंद स्ट्रीट लाइटें चालू करने और सड़कों से अतिक्रमण हटने के भी आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर निरंतर जारी है। आज हम आपको ऐसी एक योजना से रूबरू करा रहे हैं जहां सरकार की सोच और काम ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर सामने रखी है। आइए जानते हैं कि एक जिला एक उत्पाद योजना लोगों के जीवन को कैसे बदल रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए तो भोपाल में भोपाली बटवे काफी प्रसिद्ध हैं। हस्तशिल्प कढ़ाई कला जरदोजी को सजाते आ रहे सुनील पारेख ने बताया कि उनकी 11वीं पीढ़ी इस काम को इस समय कर रही है। उनके द्वारा करीब 50 परिवारों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। इस काम में बड़ी संख्या में पुरुष के साथ महिला कर्मचारी भी अपने हुनर दिखाने का काम करती हैं। सुनील पारेख ने बताया कि
3: हमारे पूर्वजों ने भी 10 पीढ़ियों से इसी काम को संभाला है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हम भी ये दोनों मिलके इस काम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करते रहेंगे। जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट की जो एक अमानत है, भोपाली बटुआ जो जरदोजी और मोती के वर्क पे होता है, साधारण साटन के कपड़े पे, मखमल के कपड़े पे, जूट के कपड़े पे और कई तरह के मजबूत कपड़ों

0: पे काम किया जाता है और लोगों को बहुत पसंद आता है।
1: सुनील पारेख ने बताया कि वह अपने पुत्र कान्हा पारेख के साथ लगातार रियासतकालीन इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आधुनिकता के दौर में आज भी इस काम की काफी पूछ परख शहर में देखने को मिलती है। आकाशवाणी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माओगंज में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सीतापुर हनुमना सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना से 1,20,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से खेती के साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की भी अपील की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल में आज डोल 11 पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस निकला। पीपल चौक से शुरू हुए इस जुलूस में भोपाल के राजा और दूल्हे राजा की प्रतिमाएं शामिल रहीं। नीम करोली बाबा अहिल्याबाई होलकर और महात्मा गांधी के रूप में सजे कलाकारों ने लोगों का ध्यान खींचा। जुलूस के मद्देनजर पुराने शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से हराया। ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई दी और इसे भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सुचिका तरियाल को भी बधाई दी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में कल से भारी बारिश का नया दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 सितंबर को सिस्टम ज्यादा एक्टिव रहेगा। दो दिनों में 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। जबलपुर रीवा शहडोल और सागर संभाग में असर सबसे ज्यादा रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत छिंदवाड़ा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालय में आज मेरे सपनों का भारत थीम पर चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत बिहार से प्रदेश भ्रमण पर आए 16 सदस्यीय इन्फ्लुएंसर दल ने कल इंदौर में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सौजन्य भेंट की। खंडवा जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत मत्स्य क्षेत्र से जुड़े हितग्राहियों का नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीयन कराया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कल नीमच में समन्वित कृषि विकास कार्यशाला सह सेमिनार आयोजित किया जाएगा। झाबुआ में साप्ताहिक जनसुनवाई के साथ स्वरोजगार दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें स्वरोजगार योजनाओं के तहत हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं भंवर सिंह अहिरवार से ये चौकड़िया।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री

0: सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: सुनते हैं करण सिंह जाटव से ये लम्टेरा।

इस लमटेरा के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: सभी किसान भैया हरों को और प्यारी प्यारी बिन्ना हरों के संग ही हमारे सभी जेठे सियानों को खूब स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम किसान।

0: में। तो सबसे पहले स्वीकार करें पंचो अपनी रानी बहन की नेह नमन और दो ही हाथ जोड़ के पहुंचे राम राम जय सीताराम। भैया बन्ना हरो देखो लग गए हैं गणेशोत्सव और जगह जगह बिराजे हैं हमारे गणपति बब्बा विघ्नहर्ता। तो आप सभी के गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता सबके कष्ट हर लें और भैया हरो पर्यावरण को बचाने के अलावे हमें इको फ्रेंडली गणेश जी विराजने चाहिए और सबसे अच्छी बात कि खेतों में अपन के ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तभी तो पर्यावरण बचे और हमारी खेती भी सुरक्षित हुए है और बप्पा भी खुश हो जाए हैं। तो भैया हरो देखो हमारे गाँव और घर की जमीन हमारी होए एके लाने बहुत जरूरी है कि हमारे नाम पे सबरे कागज होने चाहिए। किसान भैया हरो भारत सरकार चला रही है स्वामित्व योजना, एमए ड्रोन से मैपिंग हुई है, गांव गांव के आबादी वाले इलाकों में सर्वे हुए है और जमीन जायदाद के सटीक नाप जोख खोजे हैं। स्वामित्व संपत्ति कार्ड भी मिल जाए है और एक ही सर्वे के बाद मकान मालिक के स्वामित्व कार्ड यानी जमीन को पक्को कानूनी कागज अधिकार अभिलेख मिल जाए है। इससे फायदा जे हुए भैया हरो बैंक से लोन ले वो आसान हो जाए है, जमीन के झगड़े कम हो जाए हैं और भैया हरो गांव को विकास भी हुई है। कैसे हो जाए है, कैसे ई डेटा से ग्राम पंचायतों को गांव के विकास सड़क और नालियों की योजना बनावे में मदद मिल है। तो भैया उतई एक बात और है कि भैया बीजोपचार भी हमारी खेती किसानी के लाभे बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि जैसो बो हो वैसो काट हो, तो फसल की अच्छी पैदावार के लाने बोनी के पहले बीजोपचार करवो बहुत ही जरूरी है। बीजोपचार करवे से का होत है कि फफूंदी नाशक कीटनाशक और जैव उर्वरक से उपचारित कर लें तो इससे भैया बड़े फायदा होते हैं। बीज और मिट्टी जनित रोगों से सुरक्षा मिल जात है, अंकुरण में सुधार हो जात है, कम लागत में ज्यादा मुनाफा होत है और भैया हरो जैव उर्वरक कल्चर को असर खूब अच्छो होत है। तो भैया हरो आप सभी जने बुवाई के पहले बीज उपचार जरूर करने ताकि आपके अच्छों से अच्छे आपके उत्पादन मिल सके। और भैया हरो देखो का होत है कि हमारे जो ढोर बछेरू हैं हमारे मवेशी हैं बीवी हमारे परिवार को हिस्सा हैं। अगर बे तंदुरुस्त रहे हैं तो दूध की नदियां बह हैं। तो भैया हरो जब दूध की नदी बह हैं तो कहू है जेब हरी भरी सुई हो जे है। तो भैया हरो एला ने आप किसानवाड़ी में अब सुन है महेश सोनी के संगे पशु चिकित्सक डॉक्टर अंशुमान गुप्ता से वे बता है कि दुधारू पशुओं के होबे वाले सामान्य रोग और निदान। तो सुनत है जा भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम किसान वाणी कार्यक्रम में बातचीत करेंगे दुधारू पशुओं में होने वाले सामान्य रोग एवं उनका निदान। किसान भाइयों आप भली भांति परिचित है कि पशुधन जो है हमारे बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिन्हें हम इसलिए पालते हैं कि वो हमारे काम आ सके। खास तौर से जो दुधारू पशु है उनका तो हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि ज़रा सा भी वो अस्वस्थ हो जाते हैं तो उनके दुग्ध उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन से ऐसे सामान्य रोग हैं और उनका घर पर ही हम किस तरह से निदान कर सकते हैं, इन तमाम बातों की आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर अंशुमान गुप्ता जी जो पशु रोग विशेषज्ञ है, साथ ही साथ वो जो है उनका खेती किसानी में भी लंबा अनुभव है और वो पशुओं को जो तमाम रोग होते हैं और उनकी जो व्याधियां होती हैं उनको किस तरह से आपको घर पर ही दूर करना है ये भी तरीके बताएंगे। डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार किसान भाइयों।
1: डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमारे जो पशु हैं उनको कोई बीमारी है या वो किसी तरह का उनको रोग है तो हम कैसे पहचाने या शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं?
2: ये सबसे अच्छा सवाल है। पशु बोलकर तो अपनी तकलीफ बता नहीं पाते, और दूसरी बात ये है कि कोई भी सामान्य परिस्थिति के अनुसार यदि पशु खाना खा रहा है, अपनी गतिविधियाँ कर रहा है, यदि उस गतिविधि के विपरीत चला जाए तो हमें सामान्यतः मान लेना चाहिए कि वो किसी तरीके से बीमार है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो। इसलिए हमें को उनकी हरकतों पर विशेष ध्यान देना पड़ता। यदि हमारा पशु अचानक खाना या जुगाली करना कम कर दे या बंद कर दे, सुस्त होकर एक कोने में खड़ा हो जाए या बैठा रहे या दूसरे जानवरों से झगड़ा करता रहे, उसे कान ठंडे पड़े या आँख या नाक से पानी निकले, या फिर उसका दूध अचानक उत्पादन से गिर जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा पशु स्वस्थ नहीं है और उसे तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। ज़्यादातर जो पशुओं में हमारे खासकर जो हमारे देश में जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी है सामान्यतः?
2: चार पांच ऐसी बीमारियां हैं जो महामारी की तरह फैलती है, वही मुख्य बीमारियां होती हैं जिनका हमें ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए। जैसे रोगा, खुरपका, मुँहपका जिसे कहा जाता है, FMD इंग्लिश में कहते हैं, इसमें पशु के मुंह और पैर में छाले हो जाते हैं। गलगोटू दूसरी बीमारी है जिसको अंग्रेजी में हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहा जाता है, यह बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है। इसमें पशु के गले में सूजन आती है और उसे सांस लेने में भारी तकलीफ होती है। यह भैंसों में ज़्यादा होती है कैटल्स की अपेक्षा। तीसरी बीमारी लंगड़ी बुखार, ब्लैक क्वार्टर जिसे कहा जाता है, जिसके में पशु के पैर के पीछे वाले हिस्से में सूजन आ जाती है और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। यदि उस स्थान को पुट्ठे को उसके हाथ लगाया जाए तो वो चुरचुराता है और उसमें से कभी कभी काले रंग का मवाद भी निकलता है। उसके बाद एक रोग है किसान भाइयों, थनेला, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक रोग कहा जाता है किसानी दुधारू पशुओं में, जिसे अंग्रेजी में मस्टाइटिस कहा जाता है। यह दूध देने वाले पशु के अयन यानी थन में की बीमारी है, जिसमें थन सूज जाता है और दूध खराब हो जाता है। कई बार दूध में से मवाद या रक्त भी निकलने लगता है। इसके अलावा एक बीमारी जो अभी काफ़ी समय से फैली हुई है, जो कुछ 3-4 सालों से किसानों को परेशान भी कर रही है, वो है लंपी स्किन डिजीज़। इसमें शरीर में गठाने बन जाती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये काफ़ी 4-5 बीमारियां आपने बताई है। आपने जिक्र किया खुरपका मुँहपका यानी कि FMD का, तो ये बीमारी ज़्यादातर किसान भाइयों के मुंह से भी हम सुनते हैं कि उनके पशु को ये हो गया है। तो आप बताएं कि यदि ये बीमारी हो जाती है तो इसका बचाव किस तरह से करना चाहिए?
2: किसान भाइयों, खुरपका मुँहपका एक बहुत ही संक्रामक वायरस से जनित रोग होता है। इसके बचाव का सबसे अचूक उपाय तो टीकाकरण ही है, जिसमें समय पर टीकाकरण यदि करवा लिया जाए तो हम अपने पशु को इस रोग से बचा सकते हैं। साल में 2 बार आमतौर पर सितंबर अक्टूबर और फरवरी मार्च में इसका टीका लगवा लेना चाहिए। वार्षिक टीके रहते हैं, हम किसी भी समय लगा सकते हैं। यदि किसी पशु को यह हो जाए तो उसके खुरों को लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से धोना चाहिए और उसे दूसरे स्वस्थ पशु से तुरंत अलग कर देना चाहिए। इसमें एक खास बात यह है कि जो लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट है, इसे हमें पानी में घोल लेना चाहिए। घोलने के पश्चात एक जो है मग्गे में इस घोल का अलग निकाल लेना चाहिए और पशु के चारों खुरों को एक एक करके हमें इस घोल में डालना चाहिए। इसके बाद बचे हुए पानी को पशु के शरीर के ऊपर हमें डाल देना चाहिए, जैसे नहला दिए हमने उसको, और जो बचा हुआ पानी जो साफ पहले हम निकाल चुके हैं, मतलब लाल दवा का पानी, उसको हम पशु के मुंह में किसी मशाल जैसी लकड़ी पर कपड़ा बांध करके, जैसे दतून किया जाता है इस तरीके से ले करके उसके मुँह में हम डाल के उसके मुँह के छालों का भी हम इस तरीके से निदान कर सकते हैं। अगर वो पी भी लेगा तो ज़्यादा मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ना, दवा है वो फ़ायदा ही करेगी।
1: बिल्कुल, तो इस तरह से यदि हम बचाव करते हैं तो ये इलाज का भी काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बरसात के दिनों में अक्सर गलगोटू रोग हो जाता है पशुओं में, तो थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से ये रोग बढ़ जाता है और यदि ये बढ़ता है तो फिर हम किस तरह से रोकें इसको?
2: गलगोटू भी एक जानलेवा बैक्टीरिया से होने वाली, जैसे FMD वायरस से होने वाली बीमारी थी, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इससे पशु को बहुत तेज बुखार आता है, पहले गला उसका सूज जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और उसके गले सूजने के कारण वो पानी और खाना निकल नहीं पाता और गले से घर घर की आवाज़ आने लगती है। कई बार जो है 12 से 24 घंटे के अंदर ही पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसका सीधा बचाव यही है कि मई जून के महीने में यानी बरसात आने के पूर्व, है ना, गलगोटू का टीका यानी HS वैक्सीन हम पशु को अनिवार्य रूप से लगा लें। इसके लिए पशु चिकित्सालय जो सरकारी हैं उनसे संपर्क करके हम अपने पशु का टीकाकरण करवा सकते हैं।
1: अच्छा, ये टीका केवल मई जून में ही लगता है, कभी भी लग सकता?
2: नहीं, ये टीका मई जून में लगेगा।
1: अच्छा, मतलब इस बरसात के पूर्व समय का विशेष रूप से ध्यान रखें भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि जो पशु है उनको थनेला रोग हो जाता है, तो उसके कारण से जो है दुग्ध उत्पादन तो प्रभावित होता ही होता है। कई बार जो है किसान भाई डरते भी हैं कि इस पशु का दूध उपयोग में लेना है या ना लेना है, और वैसे भी पशु को तकलीफ होती है, तो ये बताए कि यह थनेला रोग जो है किस तरह से होता है और इसकी रोकथाम कैसे होगी?
2: सबसे प्रथम बात किसान भाइयों की, थनेला रोग एक मैनेजमेंट का रोग है यानी प्रबंधन का रोग है। यदि हमने अपने जानवर के थन का और उसके खान पान और उसके खड़े होने के अंदाज का ध्यान नहीं रखा, साफ सफाई नहीं रखी, तो थनेला रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थनेला रोग एक खराब थन से दूसरे अच्छे थन को ख़राब कर सकता है और यह मुख्य रूप से गंदगी के कारण होता है। यदि दूधिए के हाथ खराब हैं, दूधिए के हाथ में कोई बीमारी है या कोई इन्फेक्शन है, तो वो अपने हाथों से उसके थन को दे सकता है। और कई बार क्या होता है कि पशु का दूध निकालने के बाद अचानक पशु ज़मीन पर बैठ जाता है, तो वो विशेष ध्यान रखना है कि अगर अपन ने दूध दुहा है तो तुरंत पशु को हमें ज़मीन पर बैठने नहीं देना है, अन्यथा थन में जब दूध निकलता है तो वैक्यूम का काम करता है, और जब दूध पूरा निकल जाता है तो थन वैक्यूम का काम करते हुए बाहर की हवा को अंदर की तरफ खींचता है। यदि ज़मीन ख़राब होगी, ज़मीन पर बैक्टीरिया होंगे या ज़मीन पर कोई तरह के गंदगी होगी, तो वो सक्शन करके वैक्यूम के माध्यम से सीधा थन के अंदर प्रवेश करेंगे। और दूध हमें पता है कि फटने, मतलब दूध के फटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यदि वो बर्तन में अगर फट सकता है तो जानवर के थन में भी वो दूध फट सकता है, तो बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे तो वो दूध को फाड़ देंगे, उसके कारण जो है थनेला रोग की फैलने की संभावना बनती है।
1: सही बात है। तो किसान भाइयों को ये ज़रूर ध्यान रखना है अपने पशु को बैठने उठने और उसकी जो व्यवहार है पशु का, वो जो है मुख्यतः थनेला रोग उसी पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखें थोड़ा। और डॉक्टर साहब, एक लंपी वायरस का बहुत ज़्यादा जो है नाम सुना जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रचलन है इसका, और कई किसान भाई बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके पशुओं को इस तरह का वायरस लग जाए, तो ये क्या होता है और ये किस तरह से पशुओं में फैल रहा है, नुकसान क्या क्या है इसके?
2: किसान भाइयों, सबसे पहली बात, ये एक वायरस जनित रोग है, क्योंकि वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है इसलिए इसका भी फैलाव बहुत तेज़ी से होता है। ये पॉक्सीवायरिडे परिवार के कैप्रीपॉक्स वायरस द्वारा होने वाले एक मवेशी का रोग है। इसके फैलने का तरीका ये रहता है कि मक्खियों, मच्छरों और पिस्सुओं के काटने से संक्रमित पशु के आने से फैलता है, नहीं कि अगर संक्रमित पशु को काट के अगर स्वस्थ पशु को किसी किल्ली पिस्सू मच्छरों ने काट लिया तो स्वस्थ पशु भी हमारा बीमार हो जाएगा। इसके मुख्य लक्षण जो होते हैं दिखा जो आँखों से दिखने वाले होते हैं, इसमें शरीर की त्वचा पे बड़ी बड़ी गांठें और दाने बनना शुरू हो जाते हैं, पशु को बहुत तेज़ बुखार आने लगता है, उसका दूध अचानक बहुत कम हो जाता है, उसके आँखों से, क्योंकि तेज़ बुखार होगा तो आँखें गर्म होंगी, आँखें लाल होंगी तो आँखों से पानी भी निकलेगा, साथ ही साथ मुँह से कई बार लाल निकलना भी शुरू हो जाती है, पैरों में काफ़ी सूजन होती है, और चूँकि घटाने रहती हैं तो चलने में भी उसको काफ़ी परेशानी होती है।
1: तो ये तो आपने जो है लक्षण बताए हैं, अब बचाव और निदान यानी कि उसका उपचार कैसे करना है ये आप ज़रूर बताएं।
2: टीकाकरण ही इसका उपाय है और उपचार है। स्वस्थ पशुओं को हमें गोटपॉक्स वैक्सीन जो है, जहाँ विशेष लंपी वैक्सीन जो आने लगी है, इसको लगवाना सबसे प्रभावी बचाव है। जैसे गोटपॉक्स वैक्सीन भी कार्य करती है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात कि अगर जैसे ही लगे कि कोई पशु को लंपी हो रहा है, यानी शरीर पे दाने हो रहे हैं, गठाने बन रही हैं, तो तुरंत उसको स्वस्थ पशु से अलग कर दिया जाए। उसके बाद तेज़ बुखार है तो उसके लिए बुखार की दवा का उपयोग किया जाए। अगर वो गांठें फट रही हैं तो उस पर एंटीसेप्टिक मलहम या एंटीसेप्टिक दवा का स्प्रे किया जाए, ताकि मक्खी मच्छर उस पर ना बैठें, तो और नहीं बैठेंगे तो दूसरे स्वस्थ पशु पर जाएंगे नहीं। और पशुओं के रहने वाले स्थान पर मच्छर मक्खी भगाने का हमें उपाय करना चाहिए। पशुओं को नियमित रूप से कीटनाशक दवाओं का हम छिड़काव करके हम इसको बचा सकते हैं। बाड़े की सफाई करना चाहिए, जिसमें हम चूना या सोडियम हाइपोक्लोराइड छिड़क करके गंदा पानी और गोबर को ना जमा होने दें, इसका हम व्यवस्था कर सकते हैं। और यदि झुंड में अन्य पशु स्वस्थ हैं तो पशु चिकित्सक से संपर्क कर तुरंत जो है गोटपॉक्स वैक्सीन हमें लगवा लेना चाहिए। और आप घरेलू और देसी उपाय की बात करें किसान भाइयों, तो शुरुआती लक्षणों में आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए कुछ उपाय बताता हूँ मैं आपको। जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लड्डू आने लगे हैं, जिसमें आंवला, अश्वगंधा, गिलोय और मुलेठी सभी को 20-20 ग्राम मात्रा में लेकर जो है गुड़ में, इसी 20 ग्राम गुड़ में ही मिलाकर हम सुबह शाम पशु को खिलाएंगे तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। काढ़ा भी आता है जिसमें 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते, 5 ग्राम दालचीनी, 5 ग्राम सौंठ पाउडर और 10 ग्राम काली मिर्च को गुड़ में मिलाकर लड्डू बना लें और पशु को दें। काढ़ा बनाकर भी इसका दिया जा सकता है। घाव के लिए नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर या पानी में फिटकरी 100 ग्राम और नीम के पत्ते को उबालकर जो घोल बनाया जाए उससे पशु को नहलाएं या उस पशु के घाव को हम साफ कर सकते हैं। डेयरी में सबसे बड़ी समस्याओं में एक थनेला है और दूसरा है पशुओं में बांझपन।
1: जी,
2: जिसमें बांझपन होती है, इसमें बच्चा नहीं होता। गाय गर्मी पर आती है लेकिन बच्चा नहीं होता, बच्चा लेती नहीं है। रिपीट ब्रीडिंग होने लगती है। उसके कई कारण होते हैं, इसमें 2-3 मुख्य कारण ये है कि पोषक तत्व की कमी होती है। जैसे यदि पशु के पोषक शरीर में पोषक तत्वों में जैसे विटामिन और मिनरल्स में भी जैसे फास्फोरस है, कॉपर है, कोबाल्ट है, इसकी कमी होगी या आयरन है, तो इसकी कमी होगी तो समय पर वो गर्मी में नहीं आएंगे। जैसे कई बार होता ना कि कई किसान भाई कहते हैं कि मेरा जानवर गर्मी पर नहीं आया, या गर्मी पे आने में समय उसका जो 21 दिन पे गर्मी पे आता है, 21 दिन पे ना आके वो लंबा खिंच गया पीरियड उसका, होता है ऐसा कई बार
1: जी।
2: तो वो समस्या रहती है।

0: वो मिनरल और विटामिन की कमी के कारण भी हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो। हर 3-4 महीने में पेट के कीड़े मारने की दवा हम दे सकते हैं, नहीं तो कम से कम साल में 2 बार अवश्य करें
1: जी,
0: है ना, जिससे कि डिवर्मिंग दवा दें, कृमिनाशक दवा दें। इसमें मैं बताता हूँ किसान भाइयों, देसी दवा के अंदर जैसे कई बार होता है कि पशु गर्भधारण किया हुआ है उस समय में हमको दवा देनी है, तो उस समय अगर क्या दवा दें, क्योंकि अंग्रेजी दवा जो हम देते हैं कृमिनाशक, उससे कई बार बच्चा गिरने की संभावना बढ़ जाती है। उस समय में हम चाहें तो चुटकी भर हींग जो होती है उसको हम गुड़ में मिलाकर हम पशु को दे सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है कि गर्भधारण के समय भी उसका जो है वो इलाज रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, काफ़ी आपने बीमारियाँ बताई है, उनका निदान भी बताया, उपचार भी बताया। जाहिर सी बात है कि इस बातचीत से हमारे किसान भाइयों को ज़रूर लाभ मिलेगा। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद किसान भाइयों।
2: तो किसान भैया हरो, अपन ने सुनी खूब इनोनी उपयोगी जानकारी डॉक्टर अंशुमान गुप्ता से कि हमारे मवेशियों को अपन के ध्यान धरने हैं, तो हम आओ अच्छो हु है पशुधन। और भैया हरो, अब सुनाते हैं एक बढ़िया गणेश वंदना।

0: किसान भैया हरो, अपन सभी मिलके सुन रहे हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। और भैया हरो, देखो कि फूल और बगिया की बात ना हो ऐसो हो ही नहीं सके, तो महकत भाई वाली बात कर लें अपन। तो फल फूल के पेड़ जरूर लगाने चाहिए अपनी मेढ़न पे, कहते नहीं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो फलों की खेती से खेतों की रौनक और बढ़ जात है और किसान भैया हरों की कमाई दुगनी चौगनी हो सकत है। तो बगिया लगा के भी अपन बहुत अच्छे तरीका से आमदनी बढ़ा सकत हैं। ए विषय पे लघु वार्ता चलो सुनत हैं अपन हो रहे हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल से कि फल उत्पादन कैसे बढ़ाएं, कैसे नए पौधा रोपें और कैसे देखभाल करें।
1: किसान भाई, मध्य प्रदेश में जैसा कि हम जानते हैं कि 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल जो होते हैं उनकी खेती होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आम, अमरूद से लेके बेर, आंवला और कुछ नए प्रजातियों के फल जो हाल ही में मध्य प्रदेश में लगने लगे, जैसे खजूर की बात करते हैं, एवोकेडो की बात करते हैं, इनकी भी खेती मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर शुरुआत हो रही है। तो किसान भाइयों, फलों की खेती का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें जो होता है श्रम कम लगता है और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके इसमें हम ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। जैसे कि इसमें ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करने से हमें सिंचाई के लिए नहीं जाना पड़ता और आज के समय में तो ऑटोमेशन जैसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें आप घर बैठे ही अपने खेत को सिंचित कर सकते हैं। तो और इसके अलावा खरपतवार मुक्त रखने के लिए मल्चिंग जैसी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे प्रदेश में कौन कौन से फलों को लगा सकते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे अच्छा जो उत्पादन होता है वो अमरूद की फसल का होता है। इसके अलावा आम भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है और इसके अलावा आप देखेंगे कि कटहल, चीकू जैसी फसलें भी हम मध्य प्रदेश में लगा सकते हैं। कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जो जहाँ पर कम वर्षा होती है और ज़मीन थोड़ी सी हल्की है, वहाँ पर आंवला, बे, सीताफल जैसी फसलों को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फल हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि बड़वानी की बात करते हैं, खरगोन की बात करते हैं, यहाँ पर पपीते की खंडवा की बात करते हैं, बुरहानपुर की बात करते हैं, तो यहाँ पर केले और पपीते की फसलें भी बड़े व्यापक पैमाने पर लगाई जा सकती हैं। तो आप इन क्षेत्र के हिसाब से, अपनी ज़मीन के हिसाब से, अपने पास उपलब्ध सिंचाई के हिसाब से आप फलों की खेती कर सकते हैं। अब इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए आवश्यक होती है कि जो हमारे प्रदेश के लिए उपयुक्त किस्में हैं उनका आप इसमें प्रयोग करें। जैसे कि अमरूद की बात करते हैं तो इसमें कुछ अच्छी किस्में हैं, जैसे ललित है, श्वेता है, धवल है, इसके अलावा लखनऊ 49, इलाहाबादी सफ़ेदा, ये किस्में जो हैं अपने प्रदेश में अच्छा उत्पादन देती हैं। इसी तरह से अगर आम की बात करते हैं तो आम्रपाली, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, अंबिका, ऐसी किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें नींबू और संतरे की, तो संतरा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लगने वाली फसल है, तो संतरे की खेती कर सकते हैं और इसमें जो नागपुरी संतरा होता है वो किस्म अपने इधर के लिए उपयुक्त हो। नींबू एक ऐसी फसल है जो उत्पादन बहुत अच्छा देती है और बाज़ार में अगर रेट मिलता है तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा किसान भाई ले सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि विक्रम हुआ, प्रमालनी हुआ, कागजी हुआ, ये ऐसी किस्में हैं जो उनको अच्छा उत्पादन देती हैं। अब कुछ दूसरी फसलों की बात करते हैं, जैसे कि आंवले की बात करते हैं, सीताफल की बात करते हैं, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, इनकी भी बहुत अच्छी किस्में, जैसे नरेंद्र आंवला 7 है, ये बहुत अच्छी किस्म है। इसके अलावा सीताफल की भी कुछ लोकल किस्में हैं जिनको हम लगा सकते हैं। किसान भाई, बहुत बार हमारे आप लोगों के सवाल आते हैं कि क्या हम अनार की खेती कर सकते हैं। तो अनार की खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, हल्की ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो मध्य प्रदेश लगभग ज़्यादातर जगह पर पानी अधिक होता है, तो अनार को आपको उस हिसाब से लगाना है। अब आपने ये किस्में तो ले ली, अब इसको लगाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि अभी लगाने के लिए बिल्कुल समय चल रहा है, इसके बाद अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप अन्य समय में भी दिसंबर जनवरी तक भी बगीचा लगा सकते हैं। लेकिन जो पौधे लें वो सही जगह से लें और ग्राफ्टेड कलमी पौधों का ही प्रयोग करें, बीजू पौधे आप इसमें ना लगाएं, इसको ध्यान में रखें। और बिल्कुल आप निश्चित दूरी पर खेत को तैयार कर लें, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की पहले से व्यवस्था कर दें, मल्चिंग की आप व्यवस्था कर दें और निश्चित दूरी पर आपको इसमें खेत में आपको पौधे को लगाना है। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि इसमें बहुत सारे उद्यानिकी विभाग के माध्यम से इसमें अनुदान की व्यवस्था भी रहती है, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उस पर भी अनुदान की व्यवस्था रहती है, इसके अलावा मल्चिंग पर भी अनुदान की व्यवस्था रहती है, तो उन चीज़ों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसमें बगीचा लगा देते हैं उसके बाद समय समय पर इसकी देखभाल करने की आवश्यकता है, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होने से आपको सुविधा हो जाती है कि आपको उर्वरक भी इसमें घुलनशील माध्यम से ही आप दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त फल है उन्हीं को लगाएं, उपयुक्त किस्मों को लगाएं, जहां तक संभव हो ग्राफ्टेड वेराइटीज को ही या कलमी पौधों को ही लगाएं। तो किसान भाइयों, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप फल बगीचे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और उसकी देखभाल से आने वाले समय में आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।
0: और किसान भैया हरो, किसानवाड़ी कार्यक्रम में अब मंडी के भाव से बता दें, आगे पीछे होते रहे थे। मनो मंडी में सोयाबीन के जो भाव रहे 4,600 से 6,150 रुपये तकन रहे देखन मिले, और गेहूं 2,400 से 3,200 तकन मिलो देखवे, और डॉलर चना की अगर बात करें तो 5,500 से 8,500 रुपया प्रति क्विंटल के भाव से बिकत भाव देखो गौ है। और भैया लहसुन और प्याज के भाव भी बढ़िया तेजी देखन मिली है। तो भैया हरो, आप अपने सुविधा अनुसार अपने मंडी के भाव के अनुसार आप अपनी फसल और उत्पादन बेच सकते हैं।

0: भैया हरो देखो अब हो रही है चलती की विरिया, कार्यक्रम से लेने हैं बेदा, तो अपनी रानी बहन के देव अनुमति और स्वीकार करें अपनी रानी बहन की। राम राम, जय सीताराम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसानवाणी
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम
0: किसानवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। कार्यक्रम का विषय है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में प्रस्तुत है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के रूप में यानी पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत कई ऐसे काम किए जिससे आम लोगों का बहुत फायदा हुआ और खास तौर पे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। पिछले एक दशक में इसे एक व्यापक जन अभियान का रूप मिला है। 2014 के बाद से खास करके वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी बारे में आज हम अपनी विशेष सीरीज जन सेवा से देश सेवा में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रमेश कुमार अरोड़ा, जो पूर्व जीएम हैं, यानी वो फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत आपका अरोड़ा साहब।
3: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
2: और हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं। शिशिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
2: तो जैसा कि हमने अपने इंट्रो में कहा कि पिछले 25 वर्षों में जन सेवा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में और फिर पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर आम लोगों को देश की कई बड़ी सामाजिक हो या आर्थिक हो, वित्तीय हो, ऐसी परियोजनाओं से योजनाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। अरोड़ा साहब, आपसे हम चर्चा की शुरुआत कर

0: सकते हैं 2014 के बाद से वित्तीय समावेशन की दिशा में और दृष्टिकोण में क्या कुछ प्रमुख खास बदलाव आपको देखने को मिले हैं जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे?
1: सबसे बढ़िया जो वित्तीय समावेशन की बात है, इसका मतलब ये है कि हर सिटीजन के पास एक बैंक का अकाउंट हो जिसमें उसे क्रेडिट की सुविधा भी दी जाए, इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाए, पेंशन की सुविधा भी दी जाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी पेमेंट की उसकी सुविधा दी जाए। यानी कि हर एक सिटीजन के पास एक यूजफुल और कन्वीनियंट एक अकाउंट हो जिससे कि वो सारी फैसिलिटीज को कर सके। जहां तक 2014 के बाद की बात है, आप सब जानते ही हैं कि जनधन खातों की शुरुआत जो है 2014 से लार्ज स्केल पर हुई है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इसका बात कही थी और ये हमारे एक बैंकिंग के लिए और सभी सिटीजन के लिए खाता खोलने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें जीरो बैलेंस के ऊपर सबके अकाउंट खोले गए, साथ में रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी गई, साथ में एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का दिया गया और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रुपए का, जो 15/8/14 से 31/1/2015 तक खाते खुले थे उनमें 30,000 रुपए का एलिजिबल अकाउंट्स में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक नई स्कीम साथ में दी गई, जनधन खातों में 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर वो 6 महीने अगर एक्टिव अकाउंट रहता है, सही अकाउंट चलता है, तो उसमें वो भी फैसिलिटी है और साथ में पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इसकी भी सुविधा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सबसे बड़ा जो फायदा एक हुआ है, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं, जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत बड़ा ये फायदा हुआ है ये जनधन खाते खुलने से।
0: बिल्कुल शिशिर, आपसे मेरा सवाल ये है, केवल बैंक खाता खोलना और व्यक्ति को वास्तव में वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, आपको क्या लगता है आज हम किस चरण में हैं?
2: जनधन योजना में एक चूंकि कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हुआ तो बैंक उनके घर पे आ गया। देखिए, वित्तीय समावेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं? वित्तीय समावेशन केवल ये नहीं कि आपको हमने एक बैंकिंग सुविधा दी है या हमने आपको एक बीमा की सुविधा दी है या पेंशन की सुविधा दी है। दरअसल वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है, क्योंकि अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कि बैंक में खाता खुलवाता है, जैसा कि अरोड़ा साहब ने कहा कि उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, अब अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का आपके लिए कर्ज है। आप सामान्य तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो तमाम तरह के प्रावधान है जो देखे जाते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका वेतन क्या है, आप क्या इस स्थिति में है कि नहीं, आप कर्ज का पुनर्भुगतान कर पाएंगे। वहां पर एक व्यक्ति का खाता खुला हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, उसमें 6 महीने का परफॉर्मेंस देखना है कि वो 6 महीने में उसकी जो निकासी हुई या उसका जो जमा हुआ वो सही तरीके से है कि नहीं, फिर उसके आधार पर उसको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया गया। अब आप कहेंगे 10,000 रुपए में किसी के लिए क्या होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस देश में एक बड़ी आबादी के पास, जिसे कहा जाए कि 10,000 रुपया उसका वेतन होता हो, उसे 10,000 रुपए का एक कर्ज मिले जिससे कि वो अपने व्यक्तिगत तौर के अलावा अगर वो किसी उत्पादक कार्यों में लगा सके, छोटे मोटे कार्य कर रहा है उसमें वो लगा सके, तो कितना फायदा होगा। तो मेरे लिए वित्तीय समावेशन का मतलब एक व्यक्ति का अनौपचारीकरण से औपचारीकरण में आना है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होना है, सकल घरेलू उत्पाद व्यवस्था बेहतर होनी है और सबसे बड़ी बात है कि उसको एक ऐसी सुरक्षा दी जाती है वित्तीय सुरक्षा में जहां पर संगठित क्षेत्र से उसको मदद मिलती है। अब देखिए, जनधन में एक और बात आपको गौर करने की है, जनधन से जन सुरक्षा की तरफ हम हैं। हमने केवल जनधन की बात नहीं की है, जन का धन आ गया और उसके बाद सुरक्षा देना, तो चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हो या फिर अटल पेंशन योजना हो, ये तीनों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये एक सार्वजनिक तथ्य है, इसमें मैं कोई अलग से फिगर्स नहीं ला रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति में आपको एक पेंशन की सुविधा मिल जाए, आपको कहा जाए कि आप मामूली रकम देकर के दुर्घटना बीमा करा सकते हैं, मामूली रकम देकर के जीवन बीमा आप करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की धारणा मजबूत होती है। मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय समावेशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था में मजबूती और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है।
0: बिल्कुल अरोड़ा साहब, जैसा बताया शिशिर जी ने, बहुत बारीकी से इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि 10,000 रुपए की रकम का ओवरड्राफ्ट मिलना, यानी किसी को बड़े आसान शर्तों पर बिना किसी कोलेटरल के कर्ज मिल जाना। खास बात यह है कि लोग पेपर देने से, कोई कोलेटरल रखने से घबराते हैं, नहीं होता है उनके पास, मिल जाना। क्योंकि मेरे पास ऐसे उदाहरण है, सब्जी बेचने वाले जिन्हें सुबह का पैसा चाहिए कि वो मंडी से जाकर सब्जी खरीदें या खेतों से जाकर खरीदें और शाम तक बेच दें, उन्हें सुबह 5,000 रुपए भी मिल गए तो वो शाम तक वो 7,000-7,500 रुपए बना लेते हैं, उनका पहिया जो है जीवन का वो चल जाता है। और ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। तो शिशिर, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि

0: 10,000 रुपए की भी रकम अगर किसी को मिल रही है तो न सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का पहिया चल पड़ता है और उससे एक परिवार की शिक्षा दीक्षा हो जाती है। और यही एक जो स्तंभ बन रहे हैं शायद विकसित भारत 2047 के स्तंभों में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। अरोड़ा साहब, एक सवाल आपसे भी है और यही सवाल शिशिर में आपसे भी फिर करने वाला हूं कि हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, यानी जनधन खाते जिसकी हमने अभी चर्चा की, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, अब ये तीनों हो गए हैं और भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन का जो मॉडल रहा है इसमें जैम ट्रिनिटी का बहुत महत्वपूर्ण एक आधार रहा है। इस व्यवस्था ने सरकार और लाभार्थी जो एक आम नागरिक है उसके बीच के संबंधों को कैसे बदला है और कैसे एक आम आदमी सशक्त हुआ है, खास करके महिलाएं?
1: जैसे आपने जैम की बात की, जैम का है जे से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, यानी कि इन तीनों को कंबाइन करके सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे मैंने पहले बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं खाते में जानी है उसके लिए विदाउट मिडिल मैन ये खाते में कैसे जैम के थ्रू जाए, यानी जनधन खाता होना चाहिए सबसे पहला बात, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया जीरो बैलेंस के ऊपर भी खुल सकता है। उसके बाद आधार आइडेंटिटी के लिए कि ये पार्टिकुलर पर्सन यही है, उसकी आइडेंटिटी दे अगर फिक्स करनी है तो आधार के थ्रू है, और मोबाइल से कल को फ्रॉड ना हो जाए, ओटीपी वगैरह उसकी जो कम्युनिकेशन है वो उसके थ्रू मोबाइल है। यानी कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बात आती है उसको जैम जनधन खाता हो, आधार उसके लिंक होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, इसके थ्रू वो डायरेक्ट जो उसके खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल फाइनेंशियल के ऊपर ये जैम जो है बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब जहां तक बात है इसमें कि कैसे काम करता है, तो जनधन में सबसे बेनिफिशियरी का अकाउंट खुल गया, उसके बाद आधार से उसका लिंक हो गया और मोबाइल नंबर के थ्रू उसके पास जो SMS आएंगे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो बेनिफिट्स हैं वो हो गए, तो इस हिसाब से उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट पूरा मिल जाता है और कोई मिडिलमैन नहीं, कोई उतनी ट्रांसपेरेंसी के थ्रू काम होता है।
0: बिल्कुल शिशिर, यही सवाल आपसे भी है लेकिन आपसे मैं ये भी खास तौर पर जानना चाहूंगा कि महिलाओं को किस तरीके से जैम ने सशक्त बनाया है और पारदर्शी सिस्टम को बनाया है, क्योंकि आम तौर पर होता क्या था कि उन्हें अगर किसी रकम कोई मिलती थी, चाहे कहीं से मिले, सरकार के इससे मिले, कैश होता था, तो गिद्ध दृष्टि जो होती थी घरों में भी कई लोगों की होती थी, कई बार उनके पैसे गुम हो जाते थे, ठीक से गिन नहीं पाती थी, कहीं रख दिया, भूल गए, बच्चों ने चुरा लिया, तो बाहर से भी सुरक्षा, अंदर से भी सुरक्षा और सामने पारदर्शिता अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना, इस पर आपकी क्या टिप्पणी?
2: पहले अगर आप जैम की अवधारणा देखिए, मुझे याद है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने आर्थिक सर्वेक्षण जो 2015-16 का दिया था, उसका शीर्षक था उस चैप्टर का कि कैसे लोगों के आंसू पूछे जाए, और उसी में, उसी शीर्षक के तले अध्याय में जैम का जिक्र किया गया था। तो पहली बार जब जैम शब्द आया तो हम लोग थोड़े से सोचे कि जैम होता क्या है जी? भाई हम तो ब्रेड पे लगा के खाने वाले की बात कर रहे हैं। फिर जब मुझे उसके ठीक एक दिन के बाद जब बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि हम जैम ट्रिनिटी के जरिए, यानी कि जनधन आधार और मोबाइल के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करेंगे। अब देखिए, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, जनधन खाते में एक बड़ी संख्या किसकी? महिलाओं की है, और महिलाएं भी कौन जो ग्रामीण इलाके में हैं। तो अब देखिए, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। अब वहां पर जो कुछ भी उनको भुगतान होता है, चाहे वो बीबीजी रामजी के जरिए हो, चाहे वो किसी और योजना के जरिए हो, उस योजना का पैसा जो उनके खाते में जा रहा है, बीच में कोई आदमी शामिल नहीं है। तो आप ये भी याद करें कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान था कि रुपए का 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब उसमें से अगर एक ग्रामीण महिला के पास अगर बैंक खाता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो 15 पैसे भी पहुंचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास खाता है और उस खाते के जरिए आप लेन देन करते हैं, वो सशक्त हैं क्योंकि वहां पर वो श्रम शक्ति में बड़ी भागीदारी कर रही हैं। लेकिन हमको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है तो वहां पर जनधन खाते में उनकी मदद हो रही है, और जनधन खाता केवल आपके लिए पैसा लेन देन का माध्यम नहीं है बल्कि वहां से जन सुरक्षा का रास्ता खुलता है, ये आपके सशक्तिकरण का दूसरा रास्ता है। आपको बीमा सुरक्षा मिलती है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपके पास एक सबसे बड़ी बात है कि रुपे कार्ड मिल रहा है, जो कि अमूमन क्या होता है कि हम लोग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के नाते हम सोचते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड कहीं ना कहीं हमारे एक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। एक महिला जो ग्रामीण इलाके में काम करे उसको हमने कार्ड दिया, अब उस कार्ड के जरिए वो कहीं भी जाकर के खरीदारी कर सकती है, क्या ये सशक्तिकरण नहीं है? तो पहली श्रम सशक्तिकरण हुआ, फिर उसके बाद उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, फिर उनका जो विश्वास है वो और बेहतर होगा। तो यही तो सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाएगी।

0: यह कदम है और मुझे लगता है कि जनधन एक पहला कदम था और जनधन के बाद अब जो दूसरा कदम है जिस पे काफी अच्छे से बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है, काम भी हो रहा है, वो है वित्तीय साक्षरता का। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं की हम बात क्यों करें, पुरुषों में भी, महिलाओं और पुरुषों के दोनों के सशक्तिकरण में जो वित्तीय साक्षरता की भूमिका होगी वो कम नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं आर्थिक तौर पर जितनी ज्यादा कहते ना कि तर्कसंगत फैसले लेती हैं वो शायद पुरुष नहीं लेते हैं। हम तीन पुरुष यहाँ बैठ करके इस बात पे सहमति जता सकते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छी सोच रखती हैं पुरुषों के मुकाबले में।
1: मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ। अच्छी सोच और समझ के साथ साथ वो दूर दृष्टा भी होती हैं वित्तीय मामलों में और भविष्य भी सुरक्षित रखना चाहती हैं अपने परिवार का। और जब एक परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है तो समाज और फिर देश का भविष्य भी उसी तरीके से सुरक्षित रहता है। जनधन खातों की हमने बात की, जैम ट्रिनिटी की बात की, 54 करोड़ आपने बताया कि जनधन में खाते खुले हैं, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि उसमें जमा हुई है। आइए सुनते हैं जनधन से संबंधित एक खास रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, वित्तीय समावेशन को अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है देश के हर व्यक्ति तक बैंक खाता, बचत, बीमा, पेंशन और दूसरी जरूरी वित्तीय सेवाओं की पहुंच। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से दूर थे। आज इस योजना का दायरा काफी बढ़ चुका है। 19 अगस्त 2026 तक देश में 59.9 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके थे। इनमें करीब 56% खाते महिलाओं के हैं, जबकि लगभग 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। श्रोताओं, जनधन खाता एक सामान्य बैंक खाते की तरह ही है, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को कई दूसरी वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है और पात्र खाता धारक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं JAM की। JAM का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों को जोड़कर सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया है। इसी से जुड़ा है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी सरकारी योजना का पैसा किसी व्यक्ति को मिलना है तो पात्र होने पर वो राशि सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचाई जा सकती है। इससे बीच के लोगों की भूमिका कम हो जाती है और लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। 10 अगस्त 2026 तक DBT के माध्यम से 320 योजनाओं के अंतर्गत 56 मंत्रालयों द्वारा कुल 52,89,019 करोड़ रुपए के अंतरण दर्ज किए गए थे। लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है। इसके साथ लोगों को बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को जीवन बीमा कवर मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना से जुड़े बीमा कवर की सुविधा देती है। अटल पेंशन योजना पात्र लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था से जुड़ी है। जुलाई 2026 तक PMJJBY में 27.84 करोड़ संचयी नामांकन, PMSBY में 58.78 करोड़ संचयी नामांकन और जून 2026 तक APY में 9.29 करोड़ संचयी नामांकन दर्ज किए गए थे। इसके अलावा ई श्रम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण, आयुष्मान भारत PMJAY के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा और PM स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को ऋण जैसी पहले भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं। श्रोताओं, इन योजनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। जन धन से बैंक खाता, JAM और DBT से सरकारी लाभ का सीधा अंतरण और बीमा योजनाओं से आर्थिक सुरक्षा, पेंशन से भविष्य की सुरक्षा और दूसरी योजनाओं से स्वास्थ्य तथा आजीविका को सहारा मिलता है। यानी वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंक में खाता होना नहीं, इसका उद्देश्य है देश का आम नागरिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, अपने पैसे को सुरक्षित रखे, जरूरत के समय वित्तीय सहायता और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ ले और भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके। यही प्रयास वित्तीय समावेशन को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है और आम नागरिक को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाता है।
1: अगला सवाल शिशिर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जनधन पर हमने ये एक रिपोर्ट सुनी और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमने देखे कि किसी भी देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर खातों का खुल जाना अचंभा।
0: उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको जगह दी गई थी जो पहले दिन खाते खुले थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लोगों का लाभ हुआ है, लोग सशक्त हुए हैं और क्लेम सेटलमेंट भी ठीक ठाक बढ़िया से अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें कहीं कोई बहुत झंझट लोगों को पेश नहीं आ रही है जहां उसकी जरूरत पड़ रही है। अब बात करेंगे पेंशन और वृद्धावस्था की सुरक्षा की। इस मामले में सरकार ने पिछले खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में क्या क्या काम किया है।
0: सबसे पहले तो हम अटल पेंशन योजना की बात करेंगे। देखिए पेंशन योजना की उपयोगिता क्या है। अब देखिए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एक सहूलियत ये रही कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता रहा है। यहाँ तक कि जब पहली जनवरी 2004 से पेंशन की व्यवस्था बदली, डिफाइंड बेनिफिट से हम लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आ गए, वहां पर भी आपको एक निश्चित रकम तो मिलनी है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि कितने लोग सरकारी नौकरी में है, दूसरा कितने लोग हैं जो नियमित तनख्वाह पाने वाले जॉब में है। तो श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 22% है ये संख्या, यानी कि 78% वो लोग हैं जिनके पास नियमित वेतन नहीं है। और उनके लिए चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्धशहरी क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, क्या हम उनके लिए रियायती दर पर पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अटल पेंशन योजना में क्या कही गई कि भाई आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक आपको योगदान करना है, 60 वर्ष की उम्र में आपको पेंशन मिलेगा, जो कि उस समय कहा गया 3,000 रुपए मिलेंगे। फिर वही बात आती है कि क्या 3,000 रुपए पर्याप्त है। हो सकता है कि आपको आगे चल करके और बड़ी रकम मिल जाए और ज्यादा रकम मिले आप जितना योगदान करते हैं, लेकिन शुरुआत में ही अगर हम संशय जता दें कि 3,000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है तो वो शायद उस योजना के ऊपर ही आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो पहला जो मुझे लगता है कि बड़ा जो सुधार हुआ वो था पेंशन को लेकर के। दूसरा अगर आप देखें तो कई जो वृद्धावस्था की जो पेंशन योजनाएं हैं, चाहे जीवन बीमा की कुछ पॉलिसीज हैं जो कि खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है, और इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में सिल्वर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है कि जो 60 वर्ष से उम्र से ज्यादा लोग हैं वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी क्या उनके लिए किया जा सकता है, और वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इस तरह की पेंशन योजनाएं या वयोवृद्ध बीमा योजनाएं जो हम लोग की बात कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। और इन्हीं सब का एक असर ये भी हुआ है कि खास तौर पे रियलिटी प्रोजेक्ट्स आने लगे जो कि सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पे लाए जाने, क्योंकि उनका एश्योरेंस हो गया। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, शायद अरोड़ा साहब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम कहते हैं। यानी कि आपने जिंदगी भर कुछ कमाई करी, आपने घर बनाया और आप जब 60 वर्ष की उम्र में पहुंचते तो जाहिर सी बात है कि हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो आमदनी का स्रोत है वो हमारे लिए सीमित हो जाता है, उस समय हमें ज्यादा जरूरत है। तो हमने जो बना रखा है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करके हम बाकी के दिनों के लिए हम उससे संसाधन का इंतजाम कर सके। ध्यान रखिए कि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पहले भी था, लेकिन अब उसकी जो जिस तरीके से इसको कहा जाना कि समय के हिसाब से बदलाव करके उसको उपयोगी बनाया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसा आपने शुरू में कहा था कि वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहले भी थी, कोई नई बात नहीं है, या फिर अगर हम खाते की बात करें वो पहले भी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बदलते समय के हिसाब से क्या कुछ बदलाव करते हैं। तो चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, वयोवृद्ध बीमा योजना की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के नवीकरण की बात करें, ये तीन ऐसे मामले हैं जहां पर मुझे लगता है कि जो हमारे 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए इंतजाम किए गए।
1: बिल्कुल, और अरोड़ा साहब हम वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री अपने जीवन के 25 साल जो जन सेवा में दिए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से आम लोगों से, गांव के लोगों से, कई विषम परिस्थितियों से जब वो निपटे, तो उसमें जो आम लोगों से उनकी चर्चा हुई या आम लोगों को जो समझने की कोशिश की, उससे बहुत बड़ी मदद मिली है कि कौन सी स्कीम्स देश में लाई जाएं। और सिर्फ एक स्कीम लाना ही नहीं, जैसे शिशिर अभी बता रहे थे कि सिर्फ जनधन योजना खोल देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए देनी होगी, तभी जाकर वो सफल हो पाएगा। तो हमने जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की, लेकिन जब तक हम स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक वित्तीय समावेशन की चर्चा दरअसल पूरी होगी नहीं। पूरी तभी होगी जब हम इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को भी इसमें शामिल करेंगे। आयुष्मान भारत और पीएम जय ने गरीब परिवारों के लिए हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की तस्वीर एक तरीके से बदल दी है। व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो वो एक स्वस्थ सोच के साथ आगे बढ़ेगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। आपकी नजर में किस तरीके का बदलाव आपने देखा है पिछले 10-12 वर्षों में?
3: आयुष्मान जो भारत स्कीम है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें जो हेल्थ केयर स्कीम है, प्रिवेंटिव केयर की है, स्क्रीनिंग की है, या मेडिसिन है, या बेसिक डायग्नोस्टिक है, उसकी फैसिलिटी वहां दी जाती है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसमें जो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा दी जाती है। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो वो जो गरीब या वल्नरेबल पर्सन है उनके

0: के लिए पहले उनको रजिस्ट्रेशन किया गया, तो एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वो कैशलेस जो है जो डेजिग्नेटेड जो पैनल में हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको सुविधा दी जाएगी। दूसरा उसमें अब चेंज किया गया, 70 साल एंड अबो उनके लिए भी 5 लाख रुपए की ये सुविधा दी गई है, उसमें इरेस्पेक्टिव इनकम, उसमें कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है खासतौर से मेडिकल फैसिलिटी में। जैसा हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं वो बीमार भी पड़ते ही हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी कि वो किसी तरह से भी हॉस्पिटल जा पाए। तो उनके लिए एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए जहां वो ओपीडी में अपना दिखा सकते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, और लगता है अगर उनकी रिकमेंडेशन है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन होना है तो 5 लाख तक का उनके लिए सुविधा कैशलेस फैसिलिटी पर ईयर तक की है। और 70 साल से ऊपर लगे सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनके लिए एक फैसिलिटी है कि उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ी चेंज आई है। उधर आप अटल पेंशन योजना की अभी आपने बात की, जिसमें जो पेंशन की स्कीम है उसमें ऑप्शन है 18 से 40 साल तक के लिए आपने एंट्री लेनी है, उसमें 1000 से 5000 तक की ऑप्शन है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आपकी ऑप्शन है उसमें आप जो है उस हिसाब से पेंशन 60 साल के बाद आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की तो उसकी स्पाउस को वही सेम पेंशन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो भी उसमें एनरोल है तो उसकी अपनी पेंशन भी होगी, मान ली 5000 की हुई है, 5000 की उनको 10000 होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। साथ में जैसा अभी बात की थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2 लाख रुपए तक का आपका अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सुरक्षा बीमा योजना में आपको 2 लाख तक का, या डिसेबिलिटी फुल डिसेबिलिटी है तो 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत नॉमिनल है, 20 रुपए सालाना केवल, और 31 मई को कटता है, 1 जून से पॉलिसी शुरू हो जाती है 31 मई के लिए। तो 20 रुपीज के ऊपर 2 लाख रुपए तक का, 20 रुपए होता ही कितना है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। और आपको अगर डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी होता है 2 लाख रुपए, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपया। और 18 से 70 साल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें अगर नेचुरल डेथ होती है उसमें 2 लाख रुपए, 436 रुपए सालाना, ओनली 436 रुपीज सालाना देकर आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है। तो और इसमें भी एक कंडीशन रखी गई है कि 18 से 50 साल तक की इसमें एंट्री है, लेकिन अगर आप रिन्यूअल कराते रहते हैं तो 55 साल के बीच में भी अगर डेथ हो जाती है तो भी 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सुधार आया है प्रधानमंत्री 2014 के बाद से, कि खासतौर से हमारी जो जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, तबके लोग हैं जिनको कुछ भी सुरक्षा की वो नहीं है, उनके लिए पेंशन स्कीम है, एक्सीडेंटल पेंशन स्कीम है, साथ में ये अटल पेंशन योजना होगी, और साथ में उसके बाद आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त में कैशलेस, वो भी आपको जाना है, खाना है, इलाज कराना है और सीधा साइन करके आप वापस घर आ सकते हैं, कोई पैसा कोई पेमेंट कुछ नहीं होगी। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है खासतौर से 2014 के बाद से।
1: बिल्कुल शिशिर, जैसा अरोड़ा साहब ने बताया कि अगर किसी परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो परिवार बहुत साल पीछे चला जाता है आर्थिक फ्रंट पर, और अगर वो परिवार निम्न आय वर्ग का हो तो फिर तो और भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस संदर्भ में अगर देखें तो स्वास्थ्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना इस सरकार की सोच का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथ ही ये देखें कि चेकअप के साथ इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी सरकार का बहुत जोर रहा है। आपने तो कई यूज केस देखे और लगातार आप उस पे स्टडी करते रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसने निम्न आय वर्ग के लोगों को खास करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी मजबूत किया है, उनकी सोच विकसित की है और उन्हें नए जमाने के हिसाब से अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित किया है?
2: एक बड़ा बदलाव जो 2014 के बाद हमने देखा है वो है जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉटम्स अप अप्रोच, टॉप्स डाउन नहीं है। बॉटम्स अप अप्रोच और टॉप्स डाउन अप्रोच अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास जमीनी स्तर से सुझाव आते हैं, उस सुझाव के आधार पर आप अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं, और टॉप्स डाउन का मतलब है कि आप ऊपर बैठे, आपने जो फैसला किया नीचे डाल दिया, चाहे नीचे उसकी जरूरत है या नहीं है। आप याद करिए 2015 के बाद जब पहली बार स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई थी तो लोगों ने कहा स्वच्छ भारत अभियान क्या है, झाड़ू लगाना है क्या? लेकिन एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आदमी अगर स्वच्छता से नहीं जीता है तो अर्थव्यवस्था में उस कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि उसकी उत्पादकता कम होती है। जब उसकी उत्पादकता कम होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान होता है। यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि साल भर में आप हर साल जाकर के फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ये भी है कि आप उसके लिए आधार ऐसा तैयार करते हैं कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपके पास अगर हर, जैसे कहते हैं कि हर विद्यालय में शौचालय की बात की गई, घर में शौचालय की बात की गई, या फिर स्वच्छता अभियान चलाए

0: फिर आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करो, यानी कि आपके पास कई सुविधाएं दी गई जिससे कि आप बीमारी से बचें, बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराएं। तो मुझे लगता है कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि बॉटम्स अप अप्रोच है, कि जमीनी स्तर पर आपने उन परेशानियों को समझा, उसके हिसाब से आपने क्रमबद्ध तरीके से अपनी योजनाएं बनाई और फिर जाकर के समाज के उन हिस्सों को जो सबसे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए आपने काम किया।
1: अरोड़ा साहब, पीएम स्वनिधि की हम बात करेंगे। पीएम स्वनिधि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि सोच को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, आज हम इसे हकीकत में देख पा रहे हैं। पीएम स्वनिधि ने इस स्थिति में किन बदलावों का प्रयास किया है और कहां तक हम सफल रहे हैं?
2: पीएम स्वनिधि स्कीम जो है जून 2020 से लागू हुई है और इसमें सबसे बड़ा जो है कोलेट्रल फ्री जो है वर्किंग कैपिटल मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब इसमें सब हैं, जैसे वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स हैं, फूड स्टॉल्स वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं, कोबलर्स हैं, बार्बर हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, आर्टिशन हैं, ये जो लोग हैं कैसे इनको आर्थिक मदद दी जाए, तो उनके लिए लोन की स्कीम की गई है जिसमें बैंकों द्वारा पहले ट्रांजिट में यानी पहले भाग में उनको 15,000 रुपए, पहले 10,000 रुपए था, अब उसको 15,000 कर दिया गया, 15,000 तक का लोन दे दिया जाता है। और सेकंड जो भाग में अगर वो 15 अपने रिपेमेंट सही हुई तो उसको 25,000 रुपए तक का लिया जाता है, अगर ये फिर ठीक अपने रिपेमेंट की गई तो उसके बाद उसको 50,000 रुपए का लोन दे दिया जाता है। यानी कि 50,000 तक का लोन रेहड़ी पटरी वालों को, वेजिटेबल को, वेंडर्स को, कोबलर्स को, इनके लिए ये सुविधा है। साथ में इसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी भी है और जो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से इनको दी जाती है। कोई इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई कोलेक्टर नहीं मांगेंगे, कोई सिविल नहीं है, तो यानी कि बहुत इजी है कि इनको लोन मिल जाता है। और ये स्कीम अब 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर रही है, 2020 से लागू की गई थी, अब ये 2030 तक जो है इसको एक्सटेंड की गई है और इसके लिए आउटले भी अलग से किया गया, 7,332 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें आउटले रखा गया। तो एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव लाया गया है, जो एक कभी ये बैंक की तरफ आ ही नहीं पाते, इन्हें कोई क्रेडिट की सुविधा वो नहीं थी, या वो मनी लेंडर के पास जाते थे जहां 28%, 30%, 40% तक ब्याज मिलता था, आज वो उनको सस्ते दरों पर बैंक से लोन की सुविधा भी हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्हें टाइम से वापस करना पड़ेगा और तभी ये पहली भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग रखा गया कि रिपेमेंट अगर सही है तो हो गया। अब इसके साथ साथ एक नई अभी यूनियन बजट में घोषणा की गई है कि 30,000 तक का जो एक है क्रेडिट कार्ड की वो फैसिलिटी भी इनको दे दी जाएगी। यानी कितना बड़ा बदलाव हो गया, उनके जेब में क्रेडिट कार्ड होगा, 30,000 तक का वो अमाउंट जो है जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं और ये रिवॉल्विंग टाइप हुआ, जब चाहे उन पर पैसा है जमा कर दे, उसके बाद फिर 30,000 तक ले लें। यानी एक तरह से एक सुविधा होगी 30,000 रुपए तक का वो कभी भी उसको अपना यूज कर।
1: बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की पीएम स्वनिधि के बारे में। लेकिन शिशिर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें हुई हैं और कुछ चुनौतियां भी, जाहिर सी बात है कुछ आप अच्छे काम करेंगे कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था ने, हम सब देख रहे हैं कि जो ये समावेशन है इसको बहुत तेज किया है। आपने शुरू में इस बात का जिक्र भी किया कि अब बैंक जो है घर पर आ गया है, क्योंकि मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, और मोबाइल तो अब सबके पास है, निम्न आय वर्ग के हों और जनधन आधार मोबाइल होने के नाते सबके पास एक नंबर होना तो जरूरी ही है। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, साइबर फ्रॉड और सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चुनौतियां भी कुछ सामने आई हैं। इससे निपटने के लिए आगे क्या कदम जरूरी है, या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है?
0: देखिए, मेरे हिसाब से एक चुनौती तो बहुत बड़ी है, खासतौर पे जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं, क्योंकि अचानक आपके पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि आपके बैंक के खाते में गड़बड़ी हुई है या आपका बैंक का खाता अभी कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। एक जो व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी घबरा जाते हैं। आपने देखा होगा डिजिटल फ्रॉड में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फंसे हैं।
1: जी,
0: तो वो घबराहट तो हो जाती है। अब हमारा काम क्या है, हमने उनको 5-4 प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं कि आपके पास कोई बैंक आपको फोन करता है तो बैंक आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगता, बैंक आपसे किसी तरह की जानकारी नहीं मांगता, वो सारी जानकारी एक गोपनीय जानकारी जो कि सिर्फ आपके पास होगी, और जब आप लॉग इन भी करते हैं या आपने अगर आप उसमें कहीं पे आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वो एस्टिक्स में होता है, यानी कई लोग देख भी नहीं सकते हैं कि आपने कौन सा उसमें नंबर डाला है। तो हमें इसमें सबसे बड़ी इस चुनौती से निपटने के लिए जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का मेल होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें ये बताना चाहिए उनको कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है उनको पता है
1: जी,
0: क्या नहीं करना है, अपने ओटीपी शेयर नहीं करना है। हम देखिए, आकाशवाणी पर रोज कई बार इस बात का प्रसारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपको अगर आपसे ओटीपी मांगे तो बिल्कुल ना दे। दूसरा उनको ये बताना है कि बैंक आपके लिए जो

0: सुविधाएं मुहैया करा रहा है उसकी लागत क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बार गड़बड़ियां होती हैं। कई लोग कहते हैं कि ये लागत है और इस तरह की लागत है। तीसरा, बैंक अगर वसूली करना चाहता है वहां पर किस तरीके से आपके पास व्यवस्था है, वहां पर कौन से चीजें आती हैं। तो वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अगर आपके पास होगी तो ये सारी योजनाएं जो हमने जिक्र की, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन की बात करें, पीएम स्वनिधि की बात करें, मुद्रा की बात करें, या ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की कामयाबी तभी हो सकती है जब सामने वाला व्यक्ति इस विश्वास के साथ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो।
1: अरोड़ा साहब, चलते चलते अब वक्त बहुत कम बचा है, संक्षेप में आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे?
2: पहली बात तो आपको प्रिकॉशन पूरी लेनी है, कोई आपको लिंक नहीं खोलना, अननोन लिंक, कोई ओटीपी नहीं देना, कोई पासवर्ड नहीं देना और पिन नहीं देना किसी को, और अगर मोबाइल चेंज किया है तो मोबाइल बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें, और फिर भी अगर फ्रॉड किसी वजह से हो गया है तो नेचुरल है आपके पास ये नंबर है 1930112, या आप रिपोर्टिंग पोर्टल है इनका, उसके ऊपर लॉगिन करें
0: और जल्द से जल्द करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल अब जनसेवा को दिए हैं और उनका अनुभव गवर्नेंस के तौर पर और विभिन्न योजनाओं के तौर पर देश के समक्ष है जिसका लाभ आम जनता उठा रही है। और अगर हम पिछले एक दशक की यात्रा को ही देखें तो वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज सामने आया है। शिशिर सिन्हा और अरोड़ा साहब, आप दोनों का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद,
0: धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।
4: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में अभी आप सुन रहे थे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
5: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। कार्यक्रम का विषय रहा वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा। अब आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म से अनुराधा पौडवाल की आवाज में। समीर के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 36 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल।

0: सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट किए जाएंगे।
0: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले दो दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
6: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम

0: क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
0: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है, आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी।

0: उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
1: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जैम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
2: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जैम पोर्टल जैम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जैम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
3: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार अपने पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जैम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जैम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके

0: ढाई करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award. Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Centre inks deals with 21 states and union territories for next phase of Uran scheme, aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking the medal tally to 7. Men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi assure country of more medals. President Draupadi Murmu today conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations

0: tackle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The women in blue reasserting its continental dominance by clinching a second successive gold medal at the Games, thrashed Sri Lanka by 147 runs in the final at Nisin. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat. The men's badminton team and Wushu star Roshi Bina Devi also assured the nation of at least a medal each at the Asian Games. Indian men's badminton team defeated host Japan in the quarterfinals. India will face defending champions China in the semifinals tomorrow. In Wushu, Roshi Bina Devi advanced to the semifinals of the women's 60-kilogram event. She secured a 5-0 win over Chu Man Sin of Macau in the quarterfinals. India's Aryan also moved to the quarterfinals as he fights for a medal. Indian boxer Jadumani Singh marched into the pre-quarters in the men's 55-kilogram preliminary round. Earlier, Sakshi Chaudhary entered the pre-quarters. In men's cricket, India narrowly avoided a historic upset, defeating host Japan by 2 runs in a rain-curtailed 5-overs aside one-off T20 international match at Sano today. Benchmark domestic equity indices ended 0.4% lower today. The Sensex lost 330 points to close at 74,529. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for the year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat. Honours veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saab Phalke Award. Yami Gautam, Karthik Aryan and Mammootty receive Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Centre inks deals with 21 states and union territories for next phase of Udaan scheme. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. And at the Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking medals tally to 7. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Adab. ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं माजिद अली। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूती को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुन्नार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। उसने इलाकाई अमनो इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तनकीद की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुनशियात के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 2029 तक भारत से मुनशियात की गैरकानूनी तजारत को खत्म कर देगी। मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड तामीर करने का हदफ रखा है। आइंदा 2 रोज के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साहली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई गेम्स में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने मुल्क का पहला सोने का तमगा जीता है, जिसके बाद तमगों की कुल तादाद 7 हो गई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर दिया है कि सिनेमा भारत की वसी सकाफती गुनागुनियत की अक्कासी करता है और यह मुख्तलिफ जबानों, इलाकाई नुक्ते नजर और जाम कौमी उमंगों को मरबूत करने के एक पुल के तौर पर काम करता है। गुजरात के एकता नगर में तारीखी 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने अवार्ड हासिल करने वाले फनकारों और फिल्म साजों को भारतीय सिनेमा में उनके गैर मामूली तख्लीकी तआवुन के लिए मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय सिनेमा मुल्क के मुश्तरक ख्वाबों और समाजी सफर के इजहार में एक कलीदी रोल अदा करता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारत की फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष से और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल

0: के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: तकलीरी सनत में ज्यादा से ज्यादा शमूलियत और नुमाइंदगी पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने फिल्मों की ज्यूरीज और फैसला साजी के इदारों में खवातीन की ज्यादा शिरकत की वकालत की। सदर जमहूरिया ने मेहनत करने वालों के वकार के तहफ्फुज़ और कैमरे के पीछे काम करने वाले अमले के साथ मुनासिब बर्ताव की अहमियत को भी उजागर किया, जो फिल्म प्रोडक्शन की असल बुनियाद हैं। बाअसर फिल्मी शख्सियात से अपनी समाजी जिम्मेदारी को तस्लीम करने पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देते हुए और नुकसानदेह अशिया के इशारात से गुरेज करते हुए उन्हें नौजवानों के लिए एक मुस्बत मिसाली किरदार के तौर पर खुद को पेश करने का मशवरा दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता किए, जिसमें साल 2024 के लिए सिनेमा में गना कदर खिदमात के लिए फनकारों को एजाजात से नवाजा गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुजरात के एकता नगर में मुजस्मा इत्तेहाद के अजीम शान पस मंजर में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क भर के कुल 92 अवार्ड याफ्तगान को एजाजात से नवाजा। सरकर्दा अदाकार अनंत नाग को 5 दहाइयों पर मबनी भारतीय सिनेमा में उनके गैर मामूली फिल्मी सफर के लिए 2024 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। फीचर फिल्म के जुमरे में आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल मिला। सरकर्दा अदाकार ममूती को ब्रह्मयुगम के लिए और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। गैर फीचर फिल्म जुमरे में मराठी फिल्म भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में नवे इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का इफ्तिताह किया। इस 5 रोजा तकरीब में आबो हवा के लिए पायदार पानी के बंदोबस्त के मौजू पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नेदरलैंड और जर्मनी इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 में शराकतदार ममालिक के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद बैनुल अक्वामी इश्तराक को फरोग देना और पानी के पायदार बंदोबस्त के सिलसिले में आलमी महारत के तबादले को यकीनी बनाना है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान खिताब में नायब सदर ने कहा कि पानी जिंदगी और तहजीबों की बुनियाद है और उन्होंने इसके मुनसिफाना इस्तेमाल, बचत और मुअसर बंदोबस्त की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई वाहिद इदारा, शोभा या सरकार अकेले पानी से मुतालिक चैलेंजों से निपट नहीं सकता और उन्होंने इस सिलसिले में ज्यादा इश्तराक और तालमेल पर मबनी तरीक़ेकार पर जोर दिया।
3: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर। दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: ने मजीद इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में कसीर फरीकी और कसीर रुखी तरीक़ेकार की जरूरत है, ताकि तकनीकी इख्तरा, माकूल पॉलिसी, साइंसी मालूमात, मकामी तजर्बात और कम्युनिटी की शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली के सबब बारिश की सूरत हाल ज़्यादा गैर यकीनी हो रही है और इसकी वजह से ज़्यादा बारिश और ज़्यादा तवील अरसे तक बिल्कुल भी बारिश ना होने से निपटने के लिए तरीक़ेकार की ज़रूरत पेश आ रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज करना, बारिश के पानी को ज़खीरा करना और मौसर आबपाशी की पानी की बचत के जामे तरीक़ेकार लाजमी तौर पर हिस्सा होने चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने पानी की बचत की अहमियत को उजागर किया और कहा कि हुकूमत मुल्क के हर शहरी को महफूज और माकूल पीने का पार साफ पानी फराहम करने के लिए अहदबस्ता है। उन्होंने कहा कि पानी एक मुश्तरका वसीला है, लिहाजा सबके लिए पानी की यकीनी फराहमी भी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बातचीत में भारत में नीदरलैंड की सफीर मारिसा गेरार्ड्स ने कहा कि पानी की बचत भारत नीदरलैंड कलीदी शराकतदारी का एक अहम सुतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए

0: अभी तक भारत ने कुल 7 तमगे जीते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर खवातीन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। भारत की मर्दों की बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान की टीम को हरा दिया और इस तरह उसने एक और तमगा यकीनी बना लिया है। भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम जुमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अदा किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूती को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। उसने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तनकीद की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मनुष्यात के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 2029 तक भारत से मनुष्यात की गैरकानूनी तजारत को खत्म कर देगी। मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड तामीर करने का हदफ रखा गया है। और एशियाई गेम्स में भारतीय ख्वातीन क्रिकेट टीम ने मुल्क का पहला सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

दफने विच मदीना हो म्या। बुल्ले शाह के मुर्शिद इनायत शाह थे, वो उच शहर के रहने वाले थे और बुल्ले शाह कसूर शहर के रहने वाले थे। इन दोनों शहरों को किस तरह बयान किया है बुल्ले शाह ने, पेश करती हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार, कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी,
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: जापान का शहर नागोया 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी करने के अलावा दो चीजों के लिए मशहूर है। पहले सामुराई, यानी जापान के वो पारंपरिक योद्धा जिनके शौर्य, शक्ति और संघर्ष की कहानियां इतिहास में दर्ज है, और आधुनिक जमाने में नागोया की विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां सटीकता के साथ हर नई तकनीक नई संभावनाओं का रास्ता खोल देती है। शौर्य, संघर्ष, शक्ति, सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में ये पांचों रंग दिखे। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी के मैदान में भारत ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो वहीं आज बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे मुक्केबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग, जहां सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन का सवाल है, वहां भारतीय खिलाड़ियों की सटीकता की परीक्षा हुई। तो एक्वेस्ट्रिन, फेंसिंग, ई स्पोर्ट्स, सेपेक टकराव और वुशु जैसे खेल जो अभी भी भारत में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, वहां नई संभावनाओं के द्वार खुले। पूरे दिन का लेखा जोखा ले मैं दर्पणती क्या आपके समक्ष मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिला क्रिकेट की, जिसने भारत को दिलाया है एशियन गेम्स 2026 में उसका पहला गोल्ड। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेट टीम से सिर्फ पोडियम फिनिश की नहीं, गोल्ड मेडल की ही उम्मीद थी। एनीथिंग लेस वुड हैव बीन एन अपसेट। लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है, और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा, आज नहीं, दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी, जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मानधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष, जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए, और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंका की पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।
5: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे

0: था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग, अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे रेडर्स ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
1: हॉकी की भी यही कहानी है, वहां गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
0: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हेवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला। यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया, जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
1: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं उनका वजन भी बढ़ गया है, लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास, लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया। शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादूमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड। जादूमणि डोमिनेटेड द फाइट एंड इवेंचुअली वॉज हेल्ड एज द बेटर बॉक्सर ऑन ऑल 5 कार्ड्स। He won his bout by a unanimous decision and made it to the pre-quarterfinals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की। भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशु में। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं। भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी। इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज़्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली। वुशु में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है। उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी। हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई। फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है।
0: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ। सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया, लेकिन

0: 8 से हार गए। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चुंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने एक एक यू को स्कोर किया, जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चुंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने एक एक यू को स्कोर किया, जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। लेकिन इसके बाद फैसला सेंशु से हुआ। सेंशु उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो। चुंग ने पहला स्कोर किया था, इसलिए टाई होने पर सेंशु के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली। अलीशा ने एक यू को स्कोर किया, जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यू को और एक इपोन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए। अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ। इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे, लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंशु का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा।
1: संघर्ष और सफलता का यह मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली, तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हरा कर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। द फर्स्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु and Akane Yamaguchi of Japan, where PV Sindhu, despite having won the first game, went on to lose the next two to Akane Yamaguchi. In the next match, Unnati Huda of India lost to Tomoka Miyazaki. The third match was played between Trisa Jolly and Gayatri Gopichand of India, who beat Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan. Yet, this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
1: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, their North Korea came in their way.
2: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jinepa Savitabu of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Orawan Paranang. And finally, Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
1: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है, जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
2: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैमीना टुक ऑन अरेन हुसैन इन मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान। जैमीना सिंपली वाज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान्स अरेन हुसैन। द इंडियन टुक द मैच अवे फ्रॉम हिम कंप्लीटली, फिनिशिंग द मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, देयरबाय कंप्लीटली आउट प्लेइंग हिज अपोनेंट।

0: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
1: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाथपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग जिंग वेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई। अब अगर चले मेंस फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरुमूव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई, लेकिन नूरुमूव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
0: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
2: Aryan Nehra was an action for India in the swimming competition in the men's 1500 meter freestyle final B. Aryan tried his best, strived hard, but unfortunately finished fourth and came so close in that men's competition. The Indian men's 4x100 meter medley relay team comprised of Utkarsh Patil, Danush Suresh, Benedict Beniston and Akash Mane. The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
0: फिर शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एला वलेन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रही।
2: द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ एला वलेन वलारीवन एंड पार्थ माने फिनिश्ड फोर्थ इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल एट द एशियन गेम्स 26 in Aichi Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parth Mane shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points, while Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile, in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals, led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in 3rd place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event, and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
0: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
1: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक्स रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम

0: ईगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा, लेकिन आशीष लिमायर का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन इक्वेस्ट्रियन कंटिजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के डीएनएस रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण टिकिया।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए चांदनी फिल्म से ये गीत श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाज़ है। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत शिव हरि का है।

दिन पूछे ये काम

अब सुनिए सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल को फिल्म तुम बिन से। फैज अनवर के लिखे बोलों को सजाया है संगीत से निखिल विनय ने।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कलाकार कृष्ण हंगल से सुनिए ख्याल गायन, राग है चंद्रकौंस।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
2: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से POJK में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा

मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात्रि के 11:10:20 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आकाशवाणी प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।